0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो।
1: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ
1: खड़े मिलाते चलिए, सुबह के ठीक 6 बज रहे हैं। समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम अभी के साथ है। संध्या नमस्कार आपको अभी।
2: नमस्कार रिया, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पर्यटन क्षेत्र के बारे में, जहां पर इस क्षेत्र की पूरी नीति बदलने के लिए 1 बिलियन रुपए निवेश किए जाएंगे। मॉरिशस अब सिर्फ रेत और समुद्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे प्रकृति, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक अनुभवों से जुड़ी जगह भी बनाया जाएगा। इससे कुछ नया करने और पर्यटन की चीज़ों में विविधता लाने में मदद मिलेगी। आगम का यह भी कहना है कि यह बजट वाकई उन चुनौतियों का सामना करता है जिनसे यह सेक्टर पिछले कई सालों से जूझ रहा है। कल बंदरगाह पर MSC वीगो नाम के एक मालवाहक जहाज से 3 किलो से ज्यादा गांजा जब्त किया गया। ये जहाज जर्मनी के झंडे तले चल रहा था और दक्षिण अफ्रीका के डर्बन शहर से आया था। जैसे ही हमारे समुद्री इलाके में आकर रुका, इसकी बारीकी से तलाशी ली गई। पुलिस की आजसू टीम और पुलिस की अन्य इकाइयों ने मिलकर ये ऑपरेशन चलाया, जिसमें उन्हें 3 संदिग्ध पैकेट मिले। जब्त किए गए इस ड्रग्स की कीमत लगभग 4.8 मिलियन रुपए की बताई जा रही है। हर वर्ष 21 जून को संगीत दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत सन 1982 में फ्रांस में हुई थी और आज यह दुनिया के अनेक देशों में मनाया जाता है। इस दिन पेशेवर और शौकिया संगीतकार सार्वजनिक स्थानों पर निःशुल्क प्रस्तुतियां देकर संगीत को सभी तक का पहुंचाने का संदेश देती है। विश्व संगीत दिवस का उद्देश्य संगीत के माध्यम से लोगों को जोड़ना, विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं के संगीत का सम्मान करना तथा नए एवं उभरते कलाकारों को मंच प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त आज विश्व योग दिवस भी मनाया जा रहा है। हजारों वर्ष पुरानी भारतीय ज्ञान परंपरा से निकला योग आज करोड़ों लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का संदेश देने वाले ये अभ्यास अब सीमाओं और संस्कृतियों से परे एक वैश्विक आंदोलन के रूप में ले चुका है। इस योग दिवस पर स्वस्थ और सक्रिय वृद्धावस्था यानी हेल्दी एजिंग के महत्व पर विशेष बल दिया जा रहा है। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि लेबनान पर इसराइल के हमले से नाराज होकर ईरान ने एक बार फिर से हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है। ईरान की जॉइंट मिलिट्री कमांड ने सरकारी टीवी पर इस बात का ऐलान किया और ये भी कहा कि ईरान ने अपनी सभी जिम्मेदारियां पूरी की हैं, परंतु अमेरिका इसराइल पर लगाम नहीं लगा पा रहा है। और अंत में मौसम का हाल। आम हालत, मॉरिशस में ऊंची लहरों के उठने की चेतावनी कल सोमवार रात के 10 बजे तक जारी की गई है, जबकि दूसरी ओर दक्षिण पश्चिम की ओर से एक जोरदार एंटीसाइक्लोन होने की वजह से

0: ठंड महसूस की जा रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह देश के दक्षिण ढलानों तथा सेंट्रल प्लेटू पर बादलों के घेराव के साथ बारिश होती रहेगी और दिन के दौरान मौसम में सुधार आएगा। दोपहर को मौसम सुहाना रहेगा। रात के दौरान ऊंचे इलाके पर थोड़े से बादल घिराएंगे और हल्की सी बरसात होगी। हवा दक्षिण पश्चिम की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के उस पार लगभग 4 मीटर वाली लहरें उठेंगी, अतः दूर समंदर खासकर दक्षिण पश्चिम लगुनों के उस पार न जाने की मांग की जाती है। मछुआरों, समुद्री गतिविधियों में संलग्न रहने वाले लोगों तथा जनता से दूर समंदर में न निकलने की मांग की जाती है। तापमान, सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्तीय इलाके पर न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज सूर्योदय लगभग 5:45 बजे जबकि सूर्यास्त शाम के 5:39 पर। तो देश विदेश की इन्हीं खबरों व मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। 6:30 बजे विस्तार के साथ प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन सुन पाएंगे। तब तक अभी को दीजिए इजाजत। नमस्कार और आदाब।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv.
2: On the hour, every hour, radio marches.

0: की बेला ताजगी भरी शुरुआत।
1: नमस्कार, सुबह की ये बेला है और हमारा आपका साथ। सुबह की ये बेला लेकर आई है नई उमंग, नई खुशियाँ। ये नया दिन है, नई सोच के साथ आया है, नए उत्साह के साथ आया है। बस आपके मन में ये उत्साह रहे, यही हमारी उम्मीद है। सुबह की ये बेला है और आज रविवार 21 जून की सभा में आपका हम दिल की गहराई से स्वागत करते हैं। आइए, आप लोगों के लिए प्रस्तुत करते हैं हम वैदिक वाणी कार्यक्रम। और वैदिक वाणी कार्यक्रम सुनिएगा आज प्रोफेसर धर्मेंद्र शास्त्री जी से।
2: लीजिए सुनिए आर्य सभा मॉरिशस द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम वैदिक वाणी।

प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानां आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। वैदिक वाणी इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सब आर्य सनातन भाई और बहनों का मैं हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आर्य सभा मॉरिशस के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हम सब लोग पवित्र वेद मंत्रों का उच्चारण सुन रहे हैं। वेद परमात्मा की अजर अमर वाणी हैं। पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति, देखो इस वेद का जो अमृत काव्य है वो इमॉर्टल है, अमृत है, अजर अमर है। यह मंत्र अथर्ववेद का है और इस सूक्त के अंदर यह एक ही मंत्र है। भगवान से प्रार्थना करते हैं। स्तुता

वेद माता, वेद माता की दृषि वस्ती, वेद माता कैसी है? हमने कहा भगवान कहते हैं स्तुता मया, मैंने ये प्रेजेंट की है, मैंने आप सब जीवों के कल्याण के लिए इस अमर अजर वाणी का आप सब के लिए उपदेश दिया है, इसलिए आप सब लोग इस वेद वाणी का श्रवण करो, मनन करो, चिंतन करो। कैसी है वरदा वेद माता? वरों को देने वाली है। मनुष्य जीवन के अंदर सबसे ज़्यादा उसकी इच्छा होती है कितने प्रकार के वर हैं, कितनी प्रकार की इच्छाएं मनुष्य करता है, इसका परिगणन किया है। पावमानित द्विजानाम, यह मनुष्य मात्र को पवित्र करने वाली है, ओजस्वी तेजस्वी वर्चस्वी बनाने वाली है, मनोर्भव का शिक्षा देने वाली है। मनुष्य बने तो पावमानित द्विजानाम, तो वेद माता के माध्यम से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें हे भगवान क्या क्या वर आप प्रदान करेंगे, क्या क्या आप हमको देंगे। तो भगवान कहते हैं देखो हर मनुष्य की जो इच्छा है वो इन्हीं वरों के अंतर्गत समाहित है। सबसे पहला जो वर है, सबसे पहले किसी भी मनुष्य मात्र की इच्छा होती है कि वह आयु को प्राप्त करें, इसलिए वेद मंत्र में कहा आयु हो। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि मैं इस संसार में लंबे से लंबे काल तक जीता रहूं। जीवन नरो भद्र शतानि पश्यति, मनुष्य लंबे दीर्घ काल तक जीता हुआ ही अनेकों भद्रों को देखता है, अनेकों कल्याणों को देखता है। वेद में प्रार्थना की गई है जीवेम शरदः शतम, शृणुयाम शरदः शतम, प्रब्रवाम शरदः शतम, भूयश्च शरदः शतात्। अर्थात हमारी जितनी आयु है उससे भी अधिक आयु को हम प्राप्त करें, लेकिन आयु की प्राप्ति करने के लिए हमें समय पर उठना, समय पर सारे काम करना, डिसिप्लिन में रहना, अच्छा खाना, सात्विक भोजन का सेवन करना। भगवान कृष्ण गीता में लिखते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हमारा आहार विहार युक्त हो, ठीक ठीक हो, तो सबसे पहली प्रार्थना आयु की प्रार्थना की गई है। ये वर मांगा गया है और आयु का संबंध प्राण से है। जो हम ऑक्सीजन प्राणायाम करते हैं, जितने अधिक ब्रीदिंग हमारे लंबे होंगे, दीर्घ होंगे, गहरे होंगे, उतना ही वो आयु के ऊपर प्रभाव डालता है। इसलिए ये जोड़े में प्रार्थना की गई है। आयु को यदि लंबी करना चाहते हैं तो हम प्रातःकाल उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आसन करें, प्राणायाम करें। वैसे भी 21 जून को योग दिवस, हम विश्व योग दिवस मनाने जा रहे हैं, तो जितना अच्छा प्राणायाम का अभ्यास हमारा होगा हमारी आयु भी उतनी ही अच्छी होगी। इसलिए इस वेद मंत्र में कहा आयु प्राणम। तीसरी जो सबकी इच्छा है वो है प्रजा, प्रौज नहीं, हमारे बच्चे अच्छे हों, हमारे बच्चों के विचार आचार व्यवहार उनके संस्कार बहुत अच्छे हों। इसके लिए कहा कि प्रजाम पशुम, पशुओं का हम पालन करें, गाय हैं, और उनका दुग्ध वगैरह बच्चों को पिलाएं, क्योंकि माता जैसे अपने बच्चों का ध्यान रखती है खिलाना पिलाना, ऐसे ही वेद माता भी हम सब मनुष्य मात्र के लिए बहुत ही सोचती है हम उसका स्वाध्याय करें। तो हमारी प्रजा कैसी हो, हमारे बच्चे कैसे हों, शुद्ध हों, सात्विक हों, उनके विचार आचार व्यवहार उनको अच्छे संस्कार दें, हम उनको बचपन में ही सिखाएं, बच्चों हम अपने माता पिता ज्येष्ठ गुरुजनों को नमस्ते करें। इसलिए कहा कि प्रजा को यदि अच्छा बनाना है, भगवान श्री रामचंद्र प्रजा के रूप में थे, योगेश्वर कृष्णचंद्र के जीवन को देखें, ये सब प्रातःकाल उठ करके अपने माता पिता गुरुजनों को नमस्ते किया करते थे। नमस्ते करने का मतलब है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारी तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। यदि बच्चे हमारे दीर्घायु को प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत स्कॉलर विद्वान बनना चाहते हैं, यश और बल की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो प्रजा हमारी ऐसी हो, शुद्ध हो, सात्विक हो, उनको हम बचपन से ही अच्छे अच्छे संस्कार दें। इसलिए महर्षि दयानंद ने भी लिखा है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये उल्लेख उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में किया है। मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद, प्रजा बनाने में बहुत संघर्ष, बड़ी मेहनत तपस्या करनी पड़ती है। इसलिए इस वेद मंत्र

में कहा, हर मनुष्य की इच्छा होती है प्रजा की प्राप्ति, पशु की प्राप्ति। पशु का मतलब धन धान्य से भी है। हमारे घरों में धन धान्य प्रचुर वैभव, किसी प्रकार की भी हमारे पास कोई कमी न हो। पहला वर है आयुः, प्राणम, प्रजाम, पशुम, और अगला वर मांगा गया है कीर्तिम। कीर्ति का मतलब है कि अच्छे कर्म, जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे सभी लोग प्रशंसक बनते हैं। और हमारे शास्त्रकार कहते हैं, कीर्तिर यस्य स जीवति, जिसकी कीर्ति है, फेम, यश, पताका समुज्ज्वल है, और कीर्ति बनेगी अच्छे कर्मों के करने से। इसलिए भगवान कहते हैं दो तरह के कर्म हैं, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। निष्काम कर्म को ही उन्होंने यज्ञ कहा गया है। गीता में जैसे लिखा है, यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। अर्थात हम जो भी काम करें यज्ञ के लिए करें। यज्ञ का मतलब केवल हवन कुंड में अग्नि हम स्थापित करने का ही नाम नहीं है। यज्ञ का मतलब है जो भी हम निष्काम भावना से समाज की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें, परिवार में रहते हैं तो परिवार के लोगों के लिए भी हमारा अच्छा सोचना हो, राष्ट्र के लिए भी अच्छा हो, तो यज्ञ का अर्थ है निष्काम भावना से जो काम किया जा रहा है। इसलिए यज्ञ के अंतिम में बोला जाता है ना स्वाहा। स्वाहा का मतलब है, स को यदि साइलेंट करके बोला जाए तो क्या बचता है, वाह बचता है। वाह का मतलब होता है एक्सीलेंट, बहुत अच्छे कर्म। और हम फिर बोलते हैं इदम अग्नि स्वाहा इदन्न मम, मिनिमम फॉर सेल्फ एंड मैक्सिमम फॉर अदर्स। ये इदन्न मम का अर्थ है, मेरे लिए बहुत कम हो और दुनिया के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हो। जितने हमारे महापुरुष हुए हैं उन्होंने हमको यही शिक्षा प्रेरणा दी कि तुम खुद के लिए न जियो, दूसरों के लिए भी जियो। तो कीर्ति उसी व्यक्ति की होती है जो केवल अपने लिए नहीं जीता, संसार के लोगों के लिए जीता है, राष्ट्र के लोगों की भलाई के लिए जीता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करता है, सर्वे संतु निरामयाः की भावना उसके मन में होता है। और यही नहीं, वो कहता है माँ कश्चित दुख भाग भवेत, हमारी प्रजा में कोई किसी को कष्ट न हो, कोई दुख न हो। प्रजाम कीर्तिम। अगली बात द्रविणम की कही है। द्रविण का अर्थ है धन धान्य वैभव प्रचुर मात्रा में हमारे पास में हो, लेकिन उस धन धान्य का उपयोग हम केवल अपने लिए न करें, समाज के लिए कोई गरीब दीन दुखिया मिलता है उसके लिए भी सोचें। कोई गरीब बच्चा है उसके लिए भी हमने यदि कोई पढ़ाई का उसका अच्छा मार्ग प्रशस्त कर दिया तो ये द्रविण का मतलब है बहता हुआ धन। संस्कृत में धन को द्रविण कहा गया है। तो द्रविणम कीर्तिम द्रविणम। और फिर कहते हैं अंतिम जो सबसे महत्वपूर्ण है वो हमारे लिए ब्रह्म वर्चसम है। ब्रह्म वर्चस का मतलब है हमें हे भगवान अपने इस वर से हमें मुक्त मत करना। ब्रह्मणा वर्चस, ईश्वर की जो आशीर्वाद है, जो साल्वेशन मुक्ति की प्रार्थना है। भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो ये द्रविण का अर्थ है कि हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी हों। हम वेद मंत्रों में बार बार प्रार्थना करते हैं, वयम श्याम पतयोरयीणाम, हम सब लोग धन ऐश्वर्य के स्वामी बने, मालिक बने। लेकिन उसका उपयोग भी हम समाज के लिए करें, परिवार के लिए करें, किसी दीन दुखियों के लिए। अपने लिए जीना भी क्या जीना है। जीना सफल वही है जग में, परहित में जो जीना, परहित मरना परहित करना, ये कर्तव्य हमारा। ऊपर को उठ उठ कर अग्नि करती हमें इशारा, जीवन में ऊपर को उठना है कर्तव्य हमारा। इसीलिए ये जो वर मांगे गए हैं इन वरों की प्राप्ति हम करें। और लास्ट में कहा मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ब्रह्मलोक को हर व्यक्ति जाना चाहता है, मोक्ष को हर व्यक्ति जाना चाहता है, जहाँ न जन्म है न मरण है, केवल परमात्मा के आनंद में ही विचरण करता है। इसलिए श्रोताओं, हमारा जीवन कैसा हो, वैदिक पद्धति के अनुकूल हो। कितना बढ़िया मंत्र है, इसको हम गाते रहें, स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम। और वरों की
अब इसमें गणना की गई है, ये सब हमको चाहिए कि नहीं।

0: आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। आप सबका जीवन वेदमय हो, यज्ञमय हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना वेद के अंदर की गई है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं प्रोफेसर धर्मेंद्र शास्त्री आपका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। ओम शांति शांति शांति।
1: अभी आप सुन रहे थे आर्य सभा मॉरिशस द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम वैदिक वाणी।
2: Radio 24 hours a day.
3: इस समय सुबह के 6:19 हुए हैं। कुछ विज्ञप्तियां हैं सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से, हम आपके लिए पढ़ते हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड साइडसन रोड फिनिक्स के निवासियों को सूचित करता है कि इंपीरियल गार्डन कॉन्डोस लेजर पार्क एवेन्यू फिनिक्स हाइट्स अपार्टमेंट हिलक्रेस्ट अपार्टमेंट फिनिक्स रेजिडेंस अपार्टमेंट मोसलमान सोसाइटी पार्क लेन जे एन जे ऑडिटोरियम पेट कंसर्न गिब्स ऑटो सिटी का शोरूम प्रीमियम केयर क्लिनिक जेसन नेटवर्क लिमिटेड सोकोता फिनिशिया कावेंडिश इंस्टीट्यूट और आसपास के इलाकों में आज रविवार 21 जून को सुबह 8:30 से शाम के 4:00 तक मरम्मत कार्य होंगे और इस वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाकवा के निवासियों को सूचित करता है कि ओली खुद नंबर 1 खुद कैंस काउंटो नंबर 2 के एक भाग में, खुद दिव्यक के एक भाग में, खुद लामारी के एक भाग में, खुद बैग खुद बनफें शमे रिजर्वर डूडी लेन शमेलासूस मुटू लेन और आसपास के इलाकों में अगले रविवार 28 जून को सुबह 8:00 से शाम के 4:00 तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। फिर सीबी बेज तोंबो के निवासियों को सूचित करता है कि मोसिलमो फनसिंग मोसिलमो स्वान डॉकर्स विलेज स्कूल लेन और गुदकोचिया के एक भाग में आज रविवार 21 जून को सुबह 8:30 से दिन के 3:00 तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर इन सभी इलाकों में बिना पहले से सूचना दिए ही काटी हुई बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और उनसे मांग करती है कि वे अपना इंतजाम अवश्य कर लें। तो बस चलिए हम आप लोगों के लिए प्रस्तुत करते हैं इस बार सत्यार्थ प्रकाश के पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम और ये कार्यक्रम सुनिएगा गहलोत राजपूत महासभा की पंडिता नौबत जी से।
4: सत्यार्थ प्रकाश के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।

वक्तारम अवतु अवतु माम अवतु वक्तारम। ओम शांति शांति शांति। ही सभी आदरणीय श्रोताओं को पंडिता सुमति बंधन नौबत की ओर से सादर सप्रेम नमस्ते। और आज का विशेष कार्यक्रम में आप सभी जनों का

हार्दिक स्वागत। आर्य जगत में हर वर्ष हम जून महीने में सत्यार्थ प्रकाश मास मनाते हैं। सत्यार्थ प्रकाश का लेखन कार्य 12 जून 1874 यानी 1874 को महर्षि दयानंद सरस्वती ने नौलखा महल गुलाब बाग महाराणा प्रताप की नगरी उदयपुर में प्रारंभ किया था। पुस्तक की भूमिका में स्वामी जी लिखते हैं, मेरा इस ग्रंथ के बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश करना है, अर्थात जो सत्य है उसको सत्य और जो मिथ्या है उसको मिथ्या ही प्रतिपादन करना सत्य अर्थ का प्रकाश समझा है। सत्यार्थ प्रकाश एक धार्मिक विश्वकोश है। इस ग्रंथ रत्न में सभी धर्म तत्वों का तथा मत मतांतरों का समीक्षा भी पढ़ने को मिलता है। इस पुस्तक के प्रथम भाग पूर्वार्ध में 10 अध्याय है, जिसमें वैदिक साहित्य एवं दर्शन का और उत्तरार्ध के 4 समुलासों में विभिन्न भारतीय तथा अन्य मजहबों पर एक तर्कात्मक अध्ययन है। सत्यार्थ प्रकाश के दोनों भागों को पढ़ने से और समझकर हृदयंगम करने से मनुष्य में वह भावना आ जाती है जिसे आर्य भावना श्रेष्ठ माननीय भावना कहते हैं। इतिहास साक्षी है कि सत्यार्थ प्रकाश को पढ़कर आर्य भावना को प्राप्त करूं। कितने आर्य वीर स्त्री पुरुष संसार में बड़े से बड़े कार्यों के करने के योग्य हो जाते हैं। सत्यार्थ प्रकाश ने भारत तथा संसार के अन्य भागों में देशों में एक नई क्रांति को जन्म दिया है। इसने अंध श्रद्धा के स्थान पर बुद्धिवाद और तर्क को प्रतिष्ठित किया है। इस ग्रंथ से स्वतंत्र बुद्धि से सोचने और विचारने की परंपरा को चलाया है। व्यक्ति की पूजा की जगह सिद्धांत और आदर्श की पूजा प्रचलित है। सत्यार्थ प्रकाश ने मुख्यतः भारत के लोगों में आत्मविश्वास को उत्पन्न किया और सोते राष्ट्र की गहरी निद्रा को दूर करके महान राष्ट्र के सृजन में विशेष योगदान दिया है। देश के स्वतंत्र करने में तथा विदेशों में भी स्वतंत्रता की ज्योति फैलाने में सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका रही है। श्रोताओं, महर्षि दयानंद जी महाराज ने इस ग्रंथ की रचना किसी देश विशेष के लिए नहीं अपितु विश्व भर के लोगों के कल्याण के लिए की थी। यह ग्रंथ सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह ऋषि के संपूर्ण मंतव्यों सिद्धांतों और उपदेशों का सार है। इस पुस्तक में एक ऊंच दिव्य मानव सभ्यता का दिग्दर्शन कराया गया है। एक ऐसी सभ्यता जिसका आधार वेद अर्थात सत विद्या और सत कर्म है। ईश्वर के गुण कर्म और स्वभाव का ज्ञान वेद और सृष्टिक्रम से होता है। वेद समस्त जो स्वतः प्रमाण है जिसे ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं, जिसे आप पुरुष सभी मानवों के लिए कल्याणकारी मानते हैं और उस पर चलना हमारा कर्तव्य है। सत्यार्थ प्रकाश के अंत में स्वामी जी लिखते हैं कि न ही सत्यात् परो धर्म नान ऋतम पातकम परम, अर्थात सत्य से बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। इसीलिए वे कहते हैं कि सत्य के ग्रहण करने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। जहाँ सत्य है वहाँ ही ईश्वर है और जहाँ सत्य नहीं वहाँ अज्ञान है, अंध परंपरा है, अंधविश्वास है। ऋषि महर्षि लोग दर्शाते हैं कि दुख का कारण अविद्या है, अज्ञान है। ऋषि महर्षियों के विचारों को पुनः सुनाते हुए स्वामी जी कहते हैं कि विद्या का वृद्धि और अविद्या का नाश करना ही चाहिए। अंध परंपरा, अंधविश्वास, कुरीतियों, गलत मान्यताएं आदि दुख के कारण होते हैं। प्रगति, उन्नति, समृद्धि, विकास सब रुक जाते हैं, इसीलिए इन सब का खंडन

खंडन आवश्यक है। अविद्या का नाश ही खंडन है, जो हम सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ते हैं। जब कोई अज्ञानवश कोई गलत काम करता है तो कह देना, बतला देना न्याय संगत ही नहीं है अपितु परोपकार भी है।

0: सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय से करोड़ों के जीवन बदल गए, धर्म पथ के राही बन गए। कितनों के परिवार गृहस्थ आश्रम में आदर्शों के पालन करने में लग गए। अच्छे परिवार आदर्श समाज और उन्नतिशील तथा संगठित राष्ट्र के लिए सत्यार्थ प्रकाश मार्ग दर्शन कराता है। महर्षि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश में मानव जाति के उच्चतम आदर्शों और मानव की व्यक्तिगत उन्नति एवं सदाचार के नियमों का प्रतिपादन किया गया है। महर्षि दयानंद ने जहाँ पर भी सुधार की बात की, उनमें विद्वानों से संगठित होने के लिए कहा। सत्यार्थ प्रकाश के छठे समुलास में चयन प्रणाली के माध्यम से विद्या, धर्म और राजा के लिए सभा का होना बताया है, जिसमें योग्य व्यक्ति अर्थात धार्मिक वैदिक विद्वान, पक्षपात रहित, पराक्रमी, ओजस्वी, प्रजा का पुत्रवत पालन करने वालों को ही उच्च नेतृत्व दिया जाना बतलाया है। मानव का धर्म एक ही होता है, दो नहीं हो सकते, और धर्म जो सभी को माननीय हो वह अपनाया जा सकता है। महर्षि दयानंद ने इसे सत्य सनातन वैदिक धर्म के नाम से संबोधित किया है, अर्थात वेद सम्मत जो स्वतः प्रमाण है, जिसे ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं, वही सभी मानवों के कल्याण के लिए सृष्टि सम्मत ज्ञान विज्ञान सम्मत प्रमाणों से युक्त है, जिसे आप्त पुरुष सभी मानवों के लिए कल्याणकारी मानते हैं और इस पर चलना अपना कर्तव्य समझते हैं। ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश लिखकर न केवल भारतीय समाज को उसका गौरवशाली अतीत से प्रचलित करवाया, अपितु व्याप्त बुराइयों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। सत्यार्थ प्रकाश का जीवन में श्रद्धा से जिसने पाठ किया, सत पथ पर आगे बढ़ता गया और जग को आगे राह दिखाता गया। स्वामी जी का संदेश, अन्यायकारी बलवान से भी न डरो, न्यायकारी निर्बलों का भी साथ दो। अमर रहे सत्यार्थ प्रकाश। ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांतिश शांतिश शांति ही।
1: सत्यार्थ प्रकाश के संदर्भ में अभी आपने सुना यह विशेष कार्यक्रम।
2: अपनी घड़ी में ला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 6:32 हो गई हैं। रविवार 21 जून 2026 संगीत एवं योग दिवस के इस प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन में स्वागत है। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पर्यटन क्षेत्र की नीति को पूरी तरह से बदलने के लिए 1 बिलियन रुपए निवेश किए जाएंगे, बजट भाषण में इस बात का किया गया है ऐलान। मॉरिशस अब सिर्फ रेत और समुद्र तक सीमित नहीं रहेगा, अपितु इसे प्रकृति, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक अनुभवों से जुड़ी जगह भी बनाया जाएगा। आने वाले महीनों में शिक्षा मंत्रालय शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने की दिशा में एक ब्लूप्रिंट तैयार करने का इरादा रखता है। बजट 2026-2027 में शिक्षा के क्षेत्र में 2.6 बिलियन रुपए का है प्रावधान। जेंडर लिंक्स की तरफ से अनुष्का वासोमी ने बजट 2026-2027 पर अपनी संतुष्टि जताई। उनका मानना है कि महिलाओं के कल्याण में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, खासकर आबादी में वृद्धजनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मैटरनिटी लीव की अवधि को भी बढ़ा दिया गया है। आज विश्व भर में संगीत दिवस और योग दिवस मनाया जा रहा है, उनके महत्व पर प्रकाश डालते हुए इस बुलेटिन में पेश की जाएगी खास रिपोर्ट। और विदेश में जर्मनी के म्यूनिख शहर में शनिवार को एक बड़ा रेल हादसा हो गया जिसमें एक ओवरब्रिज पर दो मालगाड़ियां आपस में जा

0: टकराई, इसमें एक व्यक्ति की हो गई है मौत। नमस्कार और आदाब, प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ और समाचारों को देते हैं विस्तार। जिस तरह से हम सुर्खियों में इस बात की चर्चा कर रहे थे कि पर्यटन क्षेत्र की नीति को पूरी तरह से बदलने की दिशा में 1 बिलियन रुपए निवेश किए जाएंगे, बजट भाषण में इस बात का किया गया है ऐलान। मॉरिशस अब सिर्फ रेत और समुद्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे प्रकृति, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक अनुभवों से जुड़ी जगह भी बनाया जाएगा। इससे कुछ नया करने और पर्यटन की चीजों में विविधता लाने में मदद मिलेगी। इस नए बदलाव का होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन दिल खोलकर स्वागत कर रही है। आगम का यह कहना है कि यह बजट वाकई उन चुनौतियों का सामना करता है जिनसे यह सेक्टर पिछले सालों से जूझ रहा है। आस्था गोबिंद की रिपोर्ट।
1: पर्यटन सेक्टर में भर्ती करना लगातार कठिन होता जा रहा है। आगिम के अध्यक्ष स्टेफान पुपिनी ड्युवालों से का कहना है कि सर गायतों ड्युवाल होटल स्कूल के प्रस्तावित पुनर्गठन और विदेशी कामगारों के लिए एक समग्र नीति तैयार किए जाने से इस समस्या को कुछ हद तक कम करने में मदद मिलेगी। पर्यटन सेक्टर में विविधता लाने के प्रयासों के बावजूद मॉरिशस के समुद्र तट अब भी देश की सबसे बड़ी पहचान बने हुए हैं। यही कारण है कि अगिम ने तटीय कटाव से निपटने के लिए घोषित कोस्टल इरोजन अडेप्टेशन प्रोग्राम का स्वागत किया है। अगिम के अध्यक्ष ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्धारित 14.2 बिलियन रुपए का भी स्वागत किया। उनका कहना है कि इससे मॉरिशस एक और सुरक्षित पर्यटन गंतव्य के रूप में उभरेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हवाई अड्डे पर डिजिटल सीमा नियंत्रण प्रणाली लागू होने से यात्रियों का प्रतीक्षा समय कम होगा और उनकी यात्रा का अनुभव बेहतर बनेगा।
0: और जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि आने वाले महीनों में शिक्षा मंत्रालय शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने की दिशा में एक ब्लूप्रिंट तैयार करने का इरादा रखता है। हालांकि बजट में इस बात को लेकर ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है कि इस रोडमैप में क्या होगा और इसके लिए लक्ष्य क्या होंगे। बजट में कुछ रास्तों का उल्लेख जरूर किया है, जैसे कि तकनीकी शिक्षा को मजबूत करना, परंतु इस सुधार के कई पहलू अभी भी धुंधले हैं, जैसे कि नेशनल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन की परीक्षाओं के बिना नए सिस्टम में कैसे बदलाव होगा। क्षेत्रीय कॉलेजों और राष्ट्रीय कॉलेजों का भविष्य क्या होगा, ये कुछ ऐसी बिंदु हैं जिन्हें बजट में विस्तार से नहीं समझाया गया है। इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय को 2.6 बिलियन रुपए का बजट एलोकेशन का प्रावधान है। अब देखना यह है कि घोषित किए गए अलग अलग सुधारों को सच करने के लिए इन पैसों का इस्तेमाल कैसे किए जाएंगे। शिक्षा विशेषज्ञ रितेश राव पुलिया के बयान पर आस्था गोबिंद का विवरण।
2: Dans les mois à venir, le ministère de l'Éducation parle vers ce qu'ils appellent le blueprint.
1: आने वाले महीनों के दौरान शिक्षा मंत्रालय द्वारा नया ब्लूप्रिंट अपनाया जाएगा। क्या बजट में सीधे तौर पर इसमें शामिल कदमों का प्रावधान है? हम सोचते हैं कि बुनियादी तौर पर उल्लेख हुआ है, पर सीधे तौर पर एनसीए को हटाए जाने की बात नहीं है। रीजनल कॉलेजों का क्या होगा और नेशनल कॉलेजों की क्या भूमिका रहेगी? शिक्षा मंत्रालय का बजट 2.6 बिलियन रुपए का है। अब इंतजार है कि शिक्षा मंत्री क्या रुख अपनाएंगे और कैसे वे ऐलान किए गए कदमों को लागू करेंगे।
2: Comment les pousser à dépenser 6 billions rupees qu'une fin donne à ce ministère? Comment les pour appliquer? Là, la mot pense nous caragain un peu plus l'idée.
0: जेंडर लिंक्स की तरफ से अनुष्का वारास्वामी ने बजट 2026-2027 पर अपनी संतुष्टि जताई है। उनका मानना है कि महिलाओं के कल्याण में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, खासकर आबादी में वृद्धजनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मैटरनिटी लीव की अवधि को बढ़ाना, वहां महिलाओं को आसानी से लोन मिलने की भी सुविधाओं और अलग अलग क्षेत्रों में उनकी भागीदारी को बढ़ाने वाली पहलों की भी सराहना करती हैं। आस्था गोबिन
3: Avec ma situation, qu'il y en a qui nous connaît et qui, tu peux dire, un business, un PCS, j'y attire, m'ont trouvé beaucoup de jolies affaires là, dans nos business là et qui m'ont envie féliciter le Premier ministre pour ça. Et sur l'équipe. Quand nous payons une aging population aujourd'hui, et ça qui nous fait bien comprendre, c'est qu'il peut faire mourir une un peu une caring population. Donc, beaucoup plus de soins à manier, dis-moi. Parmi ça, nous pouvons beaucoup plus de opportunités pour gagner ma formation. Quand nous payons maternité libre, il veut dire qu'il nous peut encourager, nous manions, 15 enfants, parce que je t'en viens dans la vie professionnelle en même temps, et que donne ça sens pour quand même rester avec les babas pendant un moment de temps. Donc, ça, c'est une affaire positive qui aussi pour amène à aide nous ban vieux dimon et aussi hopefully pour en moins sa brain drain à Don Maurice. Ban madame pour capable le prendre clone tranquille sans qu'il besoin s'y attirer de mari. Je trouve ça extraordinaire parce qu'il depuis bien bien longtemps d'une la guerre pour les faire.
0: और जिस तरह से हम सुर्खियों में इस बात की चर्चा कर रहे थे कि हर वर्ष 21 जून को संगीत दिवस मनाया जाता है, इसकी शुरुआत सन 1982 में फ्रांस में हुई थी और आज ये दुनिया के अनेक देशों में मनाया जाता है। इस दिन पेशेवर तथा शौकिया संगीतकार सार्वजनिक स्थानों पर निःशुल्क प्रस्तुतियां देकर संगीत को सभी तक पहुंचाने का संदेश देते हैं। विश्व संगीत दिवस का उद्देश्य संगीत के माध्यम से लोगों को जोड़ना, विभिन्न संस्कृतियों तथा परंपराओं के संगीत का सम्मान करना, नए और उभरते कलाकारों को मंच प्रदान करना, संगीत को सभी के लिए सुलभ बनाना और सामाजिक सद्भाव, रचनात्मकता और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना। इस वर्ष का व्यापक संदेश यही है कि संगीत सीमाओं, भाषाओं और संस्कृतियों से परे लोगों को एक साथ लाने की शक्ति रखता है। दुनिया भर में 21 जून को खुले मंचों, सड़कों, पार्कों एवं सांस्कृतिक केंद्रों में संगीत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। संगीत जो केवल सुरों और तालों का मेल नहीं बल्कि आत्मा की अनकही भाषा भी है, एक ऐसी दिव्य अनुभूति जो शब्दों से परे जाकर दिलों को जोड़ती है। यह वह शक्ति है जो सीमाओं, भाषाओं और समय की दीवारों को लांघकर सीधे मन के सबसे कोमल कोनों तक पहुंच जाती है। विश्व संगीत दिवस के इस विशेष अवसर पर हम आपको मिलवाते हैं दो ऐसे युवा कलाकारों को जो अपनी साधना, प्रतिभा एवं समर्पण के माध्यम से संगीत की इस अमूल्य विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचा रही है।
4: सारंगी भारतीय शास्त्रीय संगीत की आत्मा कही जाने वाली वह अद्भुत वाद्य ध्वनि जिसकी करुण, मधुर और भावपूर्ण स्वर लहरियां सुनकर मानो समय स्वयं ठहर जाता है। युवा सारंगी वादक हंसले अश्विन वेलियन इसी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को अपने सुरों के माध्यम से जीवंत बनाए हुए हैं। उनकी उंगलियों से निकलने वाली हर धुन केवल संगीत नहीं रचती बल्कि भावनाओं की एक ऐसी यात्रा पर ले जाती है जहां शब्दों की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। इसकी प्रत्येक तार जैसे मानवीय भावनाओं के अनगिनत रंगों को अपने भीतर समेटे हुए है, कभी विरह, कभी प्रेम, कभी शांति और कभी भक्ति।
5: सौरंग sans couleur, sans rendez-vous, mais un peu, from beginning to end.
6: सौरंग यानी सौ रंगों वाला। शुरुआत में इस वाद्य में 100 तार हुआ करते थे, पर समय के साथ इसको 39 तारों के साथ बनाया गया। इन्हीं तारों के माध्यम से हम उन 100 रंगों तक पहुंचते हैं। गायन व मनुष्यवाणी के सबसे करीब केवल सारंगी वाद्य ही है। बहुत धैर्य तथा रियाज के साथ ये वाद्य बजाना सीखा जाता है और जिस प्रकार से आप इन तारों को छेड़ते हैं, आप किसी को रुला भी सकते हैं और हंसा भी सकते हैं। यही तो है इस वाद्य का सौंदर्य।
5: फासों की उपेज वेली मुकाफेलियन स्टील की काफे उगी Mais comment si mon vieux aussi, mon café, vous pleurez avec lui. Okay. Ça, c'est ça même sur boutique qui est là.

जहाँ एक ओर सारंगी के सुर आत्मा को स्पर्श करते हैं, वहीं दूसरी ओर भक्ति संगीत मनुष्य को ईश्वर से जोड़ने का माध्यम बनता है। केवल 16 वर्ष की छोटी सी आयु में तविश शर्मा देवी देन अपने भजनों के माध्यम से वैष्णव परंपरा, आध्यात्मिक मूल्यों और सनातन संस्कृति का संदेश जन जन तक पहुंचा रही हैं।

0: विचारों में अद्भुत परिपक्वता। तविश के लिए संगीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि भक्ति का मार्ग है। उनके भजनों में श्रद्धा की मिठास, संस्कृति की सुगंध और आध्यात्मिकता की गहराई की अनुभूति की जाती है।
1: Comment Krishna il commence jouer ce flûte. Tu vas gau mata, il commence à approcher. Tu vas sakis, tu vas gopis.
2: जिसे श्री कृष्ण बंसी बजाना शुरू करते हैं, गौ माताएं, सखियां तथा गोपियां सभी मग्न होकर कृष्ण के चारों ओर रास लीला में झूम उठते हैं। अति मनभावन रूप से ये वर्णित भी है कि हमारे जीवन में भक्ति व संगीत का कितना महत्व है। संगीत केवल कला नहीं बल्कि तनाव को दूर करने का माध्यम है तथा आत्मा का परमात्मा से मिलने का एक साधन है।

0: एक ओर सारंगी के शाश्वत स्वर, दूसरी ओर भक्ति की मधुर स्वर लहरियां। दोनों कलाकार अलग अलग माध्यमों से एक ही संदेश दे रहे हैं। संगीत केवल सुना नहीं जाता, उसे महसूस किया जाता है। संगीत केवल कला नहीं बल्कि आत्मा का उत्सव है।
1: और इस संगीत दिवस पर कलाकारों के पास खुश होने की एक और बड़ी वजह है बजट 2026-2027 में सांस्कृतिक क्षेत्र को बढ़ावा देने की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। सरकार रचनात्मक और सांस्कृतिक उद्योग को एक नई गति देना चाहती है, और क्योंकि इसे निवेश और आर्थिक विकास के लिए एक बेहतरीन क्षेत्र माना जा रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अब कानून में कुछ बदलाव लाए जाएंगे, जिससे कलाकारों को आधिकारिक तौर पर सांस्कृतिक कार्यकर्ता का दर्जा मिलेगा और उन्हें बेहतर पहचान मिलेगी। संगीतकार निखिल शिवनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की।
2: कलाकार होने के नाते आई थिंक म्यूजिक इज मींस अ वर्ल्ड टू मी, और ये बस बोलने के लिए नहीं है। म्यूजिक में हमें मैथमेटिक्स भी मिल जाता है, इमोशनल इंटेलिजेंस भी मिल जाता है, साइकोलॉजी भी मिल जाता है, बहुत सारी बारीकियां होती हैं उसमें, फिजिक्स भी आ जाता है, बहुत सारी बारीकियां होती हैं जो अगर आप म्यूजिक में उतर कर देखोगे तो वो अन्य क्षेत्रों में, आपके जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी अप्लाई होता है। वही सेम रूल्स अप्लाई होते हैं, वही सेम कंसिडरेशन अप्लाई होते हैं। तो म्यूजिक मेरे लिए एक अलग दुनिया भी है और इस दुनिया का एक इंटेग्रल पार्ट भी है। और अगर मॉरिशस में कलाकारों की बात करें, देन आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स टू बी एन आर्टिस्ट, स्पेशली इन मॉरिशस राइट नाउ, क्योंकि हमारे पास अभी इंटरनेट के जरिए हम खुद अपना गाना प्रोड्यूस कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और मॉरिशस की खासियत ये है कि हम जैसे इमिग्रेंट सोसाइटीज़ में बहुत सारे म्यूजिकल इन्फ्लुएंसेस हैं, यानी कि जो फ्यूजन्स यहाँ पर हो सकते हैं वो शायद ही दुनिया में कहीं और हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स टू बी एन आर्टिस्ट इन मॉरिशस, और सभी कलाकारों से कहूँगा वेरी हैप्पी म्यूजिक डे, और बस आगे बढ़ते रहिए।
1: आज विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया, हजारों वर्ष पुरानी ज्ञान परंपरा से निकला योग आज करोड़ों लोगों की जीवन

0: जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का संदेश देने वाला ये अभ्यास अब सीमाओं और संस्कृतियों से परे एक वैश्विक आंदोलन का रूप ले चुका है। इस योग दिवस पर स्वस्थ और सक्रिय वृद्धावस्था यानी हेल्दी एजिंग के महत्व पर विशेष बल दिया जा रहा है। महर्षि पतंजलि की शिक्षाओं से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक इस ऐतिहासिक यात्रा में योग ने विश्व को स्वास्थ्य, अनुशासन और आंतरिक शांति का मार्ग दिखाया है। ज्यादा विस्तार आस्था गोबिंद के साथ।
1: विश्व को स्वास्थ्य संतुलन और आत्मानुशासन का संदेश देने वाली भारत की प्राचीन योग परंपरा आज मानवता की साझा धरोहर बन चुकी है। प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस केवल एक आयोजन नहीं बल्कि उस ज्ञान परंपरा का उत्सव है जिसने शताब्दियों से मानव जीवन को शरीर, मन और चेतना के स्तर पर दिशा प्रदान की है। योग की उत्पत्ति भारतीय सभ्यता के आदि स्रोतों में निहित है। ऋग्वेद, उपनिषदों, भगवद गीता तथा विभिन्न दार्शनिक परंपराओं में योग का उल्लेख मिलता है, किंतु योग को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय महर्षि पतंजलि को जाता है। उनके द्वारा रचित योग सूत्र आज भी योग दर्शन का आधार ग्रंथ माना जाता है। महर्षि पतंजलि ने योग को चिद्वृत्ति निरोध अर्थात मन की चंचल प्रवृत्तियों के नियंत्रण का विज्ञान बताया था। आधुनिक युग में योग ने एक नई वैश्विक पहचान तब प्राप्त की जब वर्ष 2014 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। इस पहल को अभूतपूर्व समर्थन मिला और 177 देशों ने इसका सह प्रायोजन किया। संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया और वर्ष 2015 में पहली बार इसे विश्व स्तर पर मनाया गया। ये संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में सबसे व्यापक समर्थन प्राप्त प्रस्तावों में से एक माना जाता है। पिछले एक दशक में योग ने सीमाओं, भाषाओं और संस्कृतियों की बाधाओं को पार करते हुए विश्वव्यापी स्वरूप ग्रहण किया है। आज अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अनेक देशों में लाखों लोग नियमित रूप से योगाभ्यास करते हैं। स्कूलों, यूनिवर्सिटियों, चिकित्सा संस्थानों, खेल एकेडमियों और कॉर्पोरेट जगत में भी योग को स्वस्थ जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग माना जा रहा है। इस वर्ष योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ एवं सक्रिय वृद्धावस्था अर्थात हेल्दी एजिंग के महत्व पर विशेष बल दिया जा रहा है। बढ़ती आयु के साथ साथ शारीरिक सक्रियता, मानसिक संतुलन और भावनात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखने में योग की भूमिका को विश्व भर में स्वीकार किया जा रहा है। विभिन्न अध्ययनों के अनुसार योग तनाव, अनिद्रा, उच्च रक्तचाप तथा जीवन शैली से जुड़ी अनेक समस्याओं को नियंत्रित करने में सहायक सिद्ध हुआ है। आज जब विश्व मानसिक तनाव, असंतुलित जीवन शैली और स्वास्थ्य संबंधी नई चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब योग केवल व्यायाम की पद्धति नहीं बल्कि जीवन जीने की एक समग्र दृष्टि के रूप में उभर रहा है। भारत की ये अमूल्य विरासत अब संपूर्ण मानवता को ये संदेश दे रही है कि स्वस्थ शरीर, शांत मन और संतुलित जीवन ही वास्तविक समृद्धि का आधार है।
0: बढ़ती उम्र के साथ शरीर की जरूरतें बदलती हैं। जोरों में दर्द, चलने फिरने में कठिनाई, तनाव, नींद की समस्या और कई अन्य स्वास्थ्य चुनौतियां वरिष्ठ नागरिकों के सामने आती हैं। ऐसे में योग एक सरल और प्रभावी उपाय के रूप में उभरता है। यही कारण है कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हेल्दी एजिंग यानी कि स्वस्थ और सक्रिय वृद्धावस्था के विषय पर विशेष जोर दिया जा रहा है। डॉक्टर राधा किशन को सुनते हैं।
2: इस साल का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो मुख्य विषय है वह है किस तरह से वृद्ध अवस्था में हम योग के सेवन करने से रोग रहित रहें। योग में बताए हुए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग मनुष्य को स्वस्थ रखता है तथा आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य का पालन करने से हम वृद्ध अवस्था में निरोग होते हैं।
0: दुनिया की आबादी तेजी से उम्र दराज हो रही है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार आने वाले वर्षों में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। ऐसे में केवल लंबा जीवन ही नहीं बल्कि स्वस्थ, सक्रिय और सम्मानजनक जीवन भी एक महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया है। माना जाता है कि योग बढ़ती उम्र के साथ लोगों को सक्रिय, आत्मनिर्भर और समाज से जुड़ा रहने में मदद कर सकता है।

0: Yost, Master Yoga, Mohini, पर्व को सुनते हैं।
1: आज के युग में हर व्यक्ति स्वास्थ्य और सक्रिय जीवन जीना चाहता है। बेटर एजिंग के लिए योग एक सरल और प्रभावी उपाय है। नियमित योग से शरीर लचीला बनता है, जोड़ों की तकलीफ कम होती है और संतुलन बना रहता है। प्राणायाम और ध्यान मानसिक तनाव को कम करते हैं, मन को शांत रखते हैं और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं। हर दिन कुछ मिनट योग के लिए निकालें और कुशल और गरिमामय वृद्धावस्था की ओर बढ़ें।
0: आज के समय में अनेक युवा तनाव और एंजाइटी तथा मानसिक दबाव का सामना कर रहे हैं। पढ़ाई की प्रतिस्पर्धा, कैरियर की चिंता, सोशल मीडिया का प्रभाव और बदलती जीवन शैली कई बार उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। कुछ युवा गलत संगत और नशे की ओर भी आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे में योग एक सकारात्मक विकल्प के रूप में सामने आता है। विश्व योग दिवस के अवसर पर युवाओं के जीवन में योग की बढ़ती भूमिका पर सुनते हैं योग प्रशिक्षक प्रवीण कुमार को।
2: आज के समय में हमारा नवजवान की जिंदगी पहले के जैसा नहीं है। स्कूल का प्रेशर, करियर की टेंशन, सोशल मीडिया, पूरा समय पर हम लोग ऑनलाइन में रहते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ पर असर डाल सकते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा समय में योगा बहुत जरूरी है और अपना मन पर ध्यान देना, इसको कैसे कंट्रोल करना, यही सीखते हो योगा। हमारा नवजवान के साथ बहुत एंग्जाइटी है, स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस है, इसका वजह से हम सिगरेट, दारू, ड्रग्स, योगा को छोड़ के यही समय पर हम योगा सीखना चाहिए। योगा सिर्फ बॉडी पोस्चर नहीं है, ये फोकस बदलता है, कॉन्फिडेंस देता है और मन को मजबूत बनाता है। जब मन मजबूत होता है तब सही डिसीजन लेना आसान हो जाता है। 10 to 15 minutes, 15 minutes सिर्फ स्ट्रेचिंग कर दो, कॉन्सेंट्रेशन, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो, यही योगा है। सो आई विश यू अ वंडरफुल योगा डे।
0: समाचारों को बढ़ाते हैं। कल बंदरगाह पर एमएससी वीगो नाम के एक मालवाहक जहाज से 3 किलो से ज्यादा गांजा जब्त किया गया। ये जहाज जर्मनी के झंडे तले चल रहा था और दक्षिण अफ्रीका के डर्बन शहर से आया था। जैसे ही यह हमारे समुद्री इलाके में आकर रुका, इसकी बारीकी से तलाशी ली गई। पुलिस की आजसू टीम और पुलिस की अन्य इकाइयों ने मिलकर ये ऑपरेशन चलाया, जिसमें उन्हें 3 संदिग्ध पैकेट्स मिले। जब्त किए गए ड्रग्स की कीमत लगभग 4.8 मिलियन रुपए की बताई जा रही है। नशे के खिलाफ एकजुट, ऑनसॉम कॉन्ट्र ला ड्रोग, इसी विषय पर इस रविवार को त्वाबुचिक में एक शांति मार्च का आयोजन किया जा रहा है। इसका मकसद है लोगों, खासकर युवाओं को नशे के नुकसान के बारे में जागरूक कराना और एक सुरक्षित और स्वस्थ माहौल को बढ़ावा देना। यह मार्च आज सुबह 8:30 बजे से मोसेलमा ले पालमिये से शुरू होगा और करीब 9:30 बजे विलेज हॉल पर समाप्त होगा। इस मौके पर एक पुरस्कार वितरण समारोह भी होगा। इसमें जागरूकता से जुड़े ड्राइंग्स और स्लोगन प्रतियोगिता के श्रेष्ठ 5 प्रतिभागियों को इनाम दिया जाएगा। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि लेबनान पर इसराइल के हमले से नाराज होकर ईरान ने एक बार फिर से हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है। ईरान की जूं मिलिट्री कमांड ने सरकारी टीवी पर इस बात का ऐलान किया है और ये भी कहा है कि ईरान ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की हैं, परंतु अमेरिका इसराइल पर लगाम नहीं पा रही है। वैश्विक स्तर पर वित्तीय अनियमितताएं, खासकर मनी लॉन्डरिंग, आतंकवाद, वित्त पोषण जैसे मामले पर नजर रखने वाली एजेंसी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ईरान व म्यांमार जैसे देशों को काली सूची में डाल दिया है। मेक्सिको के नेतृत्व में गत 19-20 जून को पेरिस में आतंकवाद फंडिंग और अन्य वित्तीय लेनदेन पर चर्चा के लिए फतेह की बैठक बुलाई गई थी, जहां पर विभिन्न देशों से होने वाली फंडिंग और अनियमितता पर रिपोर्ट सौंपी गई। उधर यूक्रेन ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने बताया है कि

0: कि ड्रोन रूस के एक तेल रिफाइनरी पर पहुंच गया और उस पर हमला किया। ये जगह यूक्रेन की सीमा से 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। इसके साथ ही जेलेंस्की ने यह भी कहा कि अब उनके पास एक नई ड्रोन है जो 3000 किलोमीटर तक जा सकते हैं। और अंत में मौसम का हाल। आम हालत, मॉरिशस में ऊंची लहरों के उठने की चेतावनी जारी है जो कल सोमवार 22 जून 2026 रात के 10 बजे तक जारी रहेगी। जबकि दूसरी ओर दक्षिण पश्चिम की ओर से एक जोरदार एंटीसाइक्लोन होने की वजह से ठंड महसूस की जाएगी। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह देश के दक्षिण ढलानों तथा सेंट्रल प्लेटों पर बादलों के घेराव के साथ बारिश होगी और दिन के दौरान मौसम में सुधार आएगा और दोपहर को मौसम सुहाना रहेगा। रात के दौरान ऊंचे इलाके पर थोड़े से बादल घेराएंगे और हल्की सी बरसात होगी। हवा दक्षिण पश्चिम की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी जिसके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के उस पार लगभग 4 मीटर वाली लहरें उठेंगी, अतः दूर समंदर में खासकर दक्षिण पश्चिम लगूनों के उस पार न जाने की मांग की जाती है। मछुआरों, समुद्री गतिविधियों में संलग्न रहने वाले लोगों तथा जनता से दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। तापमान, सेंट्रल प्लेटों पर न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय लगभग 6:15 बजे जबकि सूर्यास्त शाम के 5:39 पर। चलिए आखिर में फिर से डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। पर्यटन क्षेत्र की नीति को पूरी तरह बदलने की दिशा में 1 बिलियन रुपए निवेश किए जाएंगे, बजट भाषण में इस बात का किया गया है ऐलान। मॉरिशस अब सिर्फ रेत और समुद्र तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि इसे प्रकृति, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक अनुभवों से जुड़ी जगह भी बनाया जाएगा। आने वाले महीनों में शिक्षा मंत्रालय शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने की दिशा में एक ब्लूप्रिंट तैयार करने का इरादा रखता है। बजट 2026-2027 में शिक्षा क्षेत्र के लिए 2.6 बिलियन रुपए का है प्रावधान। जेंडर लिंक्स की तरफ से अनुष्का वारास्वामी ने बजट 2026-2027 पर अपनी संतुष्टि जताई। उनका मानना है कि महिलाओं के कल्याण में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। आज विश्व भर में संगीत दिवस तथा योग दिवस मनाया जा रहा है। और विदेश में जर्मनी के म्यूनिख शहर में शनिवार को एक बड़ा हादसा, रेल हादसा हो गया जिसमें एक ओवरब्रिज पर दो मालगाड़ियां आपस में जा टकराई, इसमें एक व्यक्ति की हो गई है मौत। तो देश विदेश की इन्हीं खबरों व मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही यह प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। तकनीकी मदद के लिए हम फैजान को धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: आइए शोक समाचार सुनते हैं। पिची वियजे सेंट पियर बोआशेरिमे, पिची वियजे सेंट पियर बोआशेरिमे 77 साल की, 77 years old की कुमारी सीता देवी सिरोज, कुमारी सीता देवी सिरोज जिन्हें सब लोग कमला के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 10:30 बजे, आज दिन के 10:30 बजे उनके भाई श्री चंद्र स्वराज सिरोज के घर पेची वियजे सेंट पियर बोआशेरी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकों सौंस की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10:30 AM। टेम्पल रोड रिवे जुरांपा में, टेम्पल रोड रिवे जुरांपा में 70 साल के, 70 years old के श्री कांता प्यासादा दुता, श्री कांता प्यासादा दुता जिन्हें सब लोग सिकाओ के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के

दस बजे आज दिन के 10:30 बजे उनकी पत्नी श्रीमती माला दुता के घर टेम्पल रोड रिवेज रॉम्पॉ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए उत्तरी रिवेज रॉम्पॉ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10:30 AM। डिस्पेंसरी रोड ग्रांड सैबल में 61 साल के श्री अजय कुमार दुखी जिन्हें सब लोग अनुद शुफ़ टैक्सी के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनके अर्थे आज दिन के 11 बजे उनके बेटे श्री योगेश दुखी के घर डिस्पेंसरी रोड घोंसाबले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। मेजोनेट रोड रिवे दिस ऑन गीमे 95 साल की 95 years old की श्रीमती अच्छामा गंगना पैदाशी नाम जुका कन्या और जिन्हें सब लोग सीता के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उनके बेटे श्री सिरामा गंगाना के घर मेजोनेट रोड रिवेडिजोंगी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तयाक की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 1 PM। वुडू लेन थ्रियोले में 81 साल की 81 years old की श्रीमती यशवंती बिसेसा पैदाशी नाम चमन और जिन्हें सब लोग बिंदु के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उनके भांजे श्री ऋषि सिंह बिसेसा के घर वुडू लेन थ्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए SSS Lane Thriole की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। मोसेलमो तानाकोडी सुरीनाम में 89 साल की 89 years old की श्रीमती राधिका सिउदेन पैदाशी नाम बुद्राम और जिन्हें सब लोग प्रभा सिउदेन के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर के दो बजे उनके बेटे श्री मोहनलाल सिउदेन के घर मोसेलमो तानाकोडी सुरीनाम से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। जवाहरलाल नेहरू रोड जुबॉय में 44 साल की 49 years old की श्रीमती हेमा बहादुर पैदाइशी नाम इरामन और जिन्हें सब लोग रेशमा के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर के दो बजे उनके पति श्री रवि बहादुर के घर जवाहरलाल नेहरू रोड जुबॉय से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए जुबॉय की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। दलवा रोड बेलिया रिवेशस में 82 साल की 82 years old के श्री प्रेमचंद नारुआ जिन्हें सब लोग प्रेम के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर के दो बजे उनके बेटे श्री संजीव नारुआ के घर दलवा रोड बेलिया रिवेशस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दुफ्रया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन दिस आफ्टरनून एट 2। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।

0: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
1: रविवार 21 जून को सुबह 8:30 बजे हाइलैंड्स राजपूत बाल शिक्षा मंदिर नादेस रोड हाइलैंड्स फिनिक्स में यज्ञ का आयोजन किया गया है। सत्यार्थ प्रकाश मास के संदर्भ में रविवार 21 जून को गहलोत राजपूत महासभा के तत्वावधान में दिन के 10 बजे अपडागुचिया गहलोत राजपूत समाज शाखा नंबर 53 और सैपिया गहलोत राजपूत समाज शाखा नंबर 40 राजपूत मंदिर दागुचिया में एक महायज्ञ का आयोजन कर रहा है।

0: रविवार 21 जून को सुबह 8 बजे मिडलैंड्स के श्री जगदीश्वरनाथ शिवाला द्वारा काली पूजा का आयोजन किया गया है। सत्यार प्रकाश मास के उपलक्ष में आर्य सभा मॉरिशस रविवार 21 जून को मेबग आर्य समाज लालमाची आर्य समाज में सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, जिसमें भारत से आए हुए प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार शास्त्री सत्यार प्रकाश पर प्रवचन देंगे।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: सुबह के 7:10 हुए हैं।
3: स्पोर्ट्स न्यूज़,
2: सुनने वाले को विकास रामधनी का प्यार भरा नमस्कार व आदाब। खेल समाचारों में आपका स्वागत है। वर्तमान वर्ल्ड कप अपना सेंचुरी पूरा कर चुका है, यानी केवल 33 मैचों में 125 गोल स्कोर कर ये इस प्रतियोगिता के इतिहास का सबसे तेज यानी फास्टेस्ट वर्ल्ड कप बन गया है। 125 गोल बनाया नेदरलैंड्स के कोडी गैकपो ने, जबकि केप वर्दे और कैटाओ के बाद क्यूरासाओ ने भी आज सुबह अपना पहला वर्ल्ड कप अंक हासिल किया। नतीजे सुनिए, आज सुबह जो मैच समाप्त हुआ उसमें इक्वाडो और क्यूरासाओ के बीच कोई भी गोल न बना, यानी इक्वाडो 0 क्यूरासाओ 0। क्यूरासाओ के 37 वर्षीय 37-year-old गोलकीपर एलॉय रूम ने इस बार अपने रूम में किसी को घुसने नहीं दिया। 27 अटेम्प्ट्स के बावजूद इक्वाडो उसे तोड़ नहीं पाया, यानी अब यदि नॉकआउट चरण में पहुंचना है तो इक्वाडो को अपने आखिरी मैच में जर्मनी को हराना ही पड़ेगा। इक्वाडो 0 क्यूरासाओ 0। इसी ग्रुप में कल रात जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को ऐन मौके पे 2-1 से परास्त किया। खेल के 30वें मिनट पर ही आइवरी कोस्ट के कप्तान फ्रांक केसिये ने अपनी टीम को आगे किया और 68वें मिनट पर ही जाकर जब डेनिस उंडव मैदान पे उतरा तब उसने एक पहला इक्वलाइजर किया। पिछले मैच में भी उसने एक गोल स्कोर किया था, सो एक पहला गोल उसने 68वें मिनट पर इक्वलाइज किया। और इंजरी टाइम के 4th मिनट पर यानी 94th मिनट पर जाकर इसी डेनिस उंडव ने एक और गोल स्कोर किया। सो जर्मनी 2 आइवरी कोस्ट 1। कुल मिलाकर डेनिस उंडव ने अब तक वर्ल्ड कप में 3 गोल स्कोर किए हैं। उसकी कहानी भी अलग थलग है। बंदा 29 साल का है और हर बार वो शुरू से खेलना चाहता है, लेकिन कोच के साथ पंगा भी हो गया था और वो खेलने की कगार पे नहीं था, यानी खेल भी नहीं सकता था। फिर भी जब जब आया तब तब उसने अपनी टीम को बचाया। अब एक आखिरी मुकाबले में इक्वाडो के खिलाफ शायद वो शुरू से खेल पाए। डेनिस उंडव 2 आइवरी कोस्ट 1। कल जो मैच रात को खेला गया, कल उसमें नेदरलैंड्स ने स्वीडन को 5-1 से शर्मिंदा किया। शर्मनाक हार स्वीडन के लिए कह सकते हैं। नेदरलैंड्स 5-1। ये 5 गोल स्वीडन के नेदरलैंड्स की ओर से प्रीमियर लीग के खिलाड़ियों ने ही स्कोर किए। संदलन के ब्रायन ब्रॉबी ने 2 गोल बनाए, प्रथम 2 गोल। फिर लिवरपूल के कोडी गैकपो ने भी 2 गोल स्कोर किए, जिनमें से एक उस इस टूर्नामेंट का 125 गोल भी रहा। और आखिर में सब्स्टिट्यूट वेस्टहैम यूनाइटेड के 20 वर्षीय क्रिसेंशियो समरविल ने 5वां गोल स्कोर करके नेदरलैंड को 5-1 से जितवाया। अभी भी पिक्चर बाकी है, स्वीडन और जापान के बीच अभी भी खेलना बाकी है। और इसमें मैथमेटिकली कह सकते हैं कि नेदरलैंड्स शायद वो आगे बढ़ पाया है, लेकिन अभी भी एक आखिरी मैच खेलना बाकी है। कोडी गैकपो ने इस वर्ल्ड कप का 125 गोल बनाया, यानी 33 मैचों के बाद इस वर्ल्ड कप में 100 गोल बने। इससे पहले वर्ल्ड कप 2014 में 36 मैचों के बाद ये पड़ाव पूरा किया गया था, इतने गोल बने थे। सो आज भी गोल निस्संदेह बरसेंगे। आज सुबह 8 बजे चुनिजिया का मुकाबला जापान से है, फिर रात 8 बजे स्पेन वर्सेस सऊदी अरब, रात 11 बजे बेल्जियम का मुकाबला ईरान से, और कल तड़के कल एकदम सुबह 2 बजे यूरुग्वे टक्कर लेगी केप वर्दे से। एक बार फिर केप वर्दे को हार्दिक बधाई यहां तक पहुंचने के लिए, प्रथम मैच में ड्रॉ करने के बाद वो भी

0: इनके साथ ड्रॉ करने के बाद क्या यूरुग्वे को वो लुढ़काएगा। यूरुग्वे वर्सेस केप वर्दे आज तड़के, कल तड़के 2 बजे और कल ही सुबह 5 बजे न्यूजीलैंड का मुकाबला इजिप्ट से होगा। इसलिए देखते रहिए और सुनते रहिए। क्रिकेट में भारतीय टीम ने अपना मैच जीत लिया अफगानिस्तान के विरुद्ध। ये तीसरा चौथा मैच भी, यानी कल 9 विकेट से भारत ने अफगानिस्तान को अपने दूसरे और आखिरी वनडे मुकाबले में हराया। अफगानिस्तान ने अपनी पारी में 218 रन बनाए, 44वें ओवर्स में ऑल आउट हो गए, तो भारतीय टीम ने जवाब के तौर पर केवल 1 विकेट के नुकसान पर और केवल 28 ओवर में ही ये लक्ष्य पूरा किया। यशस्वी जायसवाल ने 110 रन बनाए और नॉट आउट भी रहा। रोहित शर्मा 79 पर नॉट आउट रहा। क्षेत्रीय स्तर पर रिव्या जोंगपा जिला परिषद की ओर से आज शाम 4 बजे से एक फैमिली फन डे और स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया गया है, जबकि रोशनवा में प्राइज गिविंग डे या पुरस्कार वितरण समारोह के साथ संगीत दिवस भी मनाया जाएगा आज ही। और पोम्पली मुसेस जिला परिषद की ओर से भी आज कालबास में एक इंटर विलेज पेटोंक टूर्नामेंट निर्धारित है। सुनते रहिए और हमें आज्ञा दीजिए। बता दें कि आज सुबह 8 बजे चुनिजा का मुकाबला जापान से है।
1: KHz ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: ऑन द आवर एवरी आवर रेडियो मॉरिशस।
3: हर पल का साथी, हर दिल की आवाज, खुशियों का रंग और यादों का साज, हंसी हो या गम ये रहता है साथ। संगीत से ही महकती है जीवन की हर एक बात। हैप्पी म्यूजिक डे फ्रॉम MBC रेडियो।
4: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।
5: इस समय सुबह के 7:17 हुए हैं। आप सुन रहे थे आज का स्पोर्ट्स रिव्यू, जिसे पेश कर रहे थे विकास रामधनी जी, और हमारा आपका साथ रेडियो मॉरिशस पर बहुत प्यार से, बहुत ही खुशी के साथ है। चलिए, आप लोगों के लिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं कुछ विज्ञप्तियां सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से।
6: MBC रेडियो 24 आवर्स अ डे।
5: सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि खान खुरखत और बुनाकई में पोस्ट ऑफिस और SSS के आसपास के इलाकों में तथा जिमनास के आसपास के इलाकों में, स्कन में और साचुकुलेन रोड के एक भाग में और आसपास के इलाकों में आज रविवार 21 जून को सुबह 8:15 से शाम के 4 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। और लावेनिया के निवासियों को CB सूचित करता है कि मोसेलमो फ्रांगीपेन, मोसेलमो ब्लूप्रिंट, मोसेलमो आजाली, स्कूल लेन, सिमेट्री रोड और VRS लावेनिया में आज रविवार 21 जून को सुबह 8:30 से दिन के 3:30 तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। कथबोन के निवासियों को CB सूचित करता है कि एवेन्यू बाउंड्री, कोटडेलिस, रोबर्ट एडवर्ड हर्ट, डॉक्टर रस और डॉक्टर फेयर तथा हिचकॉक इलाकों में आज रविवार 21 जून को सुबह 9:00 से दिन के 2:00 तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। बबासेंग के निवासियों को CB सूचित करता है डॉक्टर लेजुआ, कोडाबकस लेन, फिलिप राउल एवेन्यू, मुडाव एवेन्यू, ट्रिम प्राइस बबासेंग, रेजिडेंस विल में, NHDC विल में, डॉक्टर रेड, महादेव बिल्टू, जुपेरे और शातोनेफ तथा आसपास के इलाकों में आज

रविवार 21 जून को सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे तक, फिर दोबारा 2 बजे से 2:30 बजे तक यानी कि 2:00 से 2:30 तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर इन सभी इलाकों में बिना पहले से सूचना दिए ही ये काटी हुई बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। इस वजह से सीबी अपने इन ग्राहकों से मांग करता है कि वे अपना इंतजाम अवश्य कर लें। तो ये थी विज्ञप्तियां सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से। चलिए, हमारा सुबह का नजराना कार्यक्रम शुरू हो चुका है और सुबह का नजराना कार्यक्रम में आप लोगों के लिए हम एक प्यारा सा मुस्कुराता हुआ सा गाना पेश करते हैं। आप भी मुस्कुराइए, आप भी गुनगुनाइए। वैसे भी आज तो बहुत ही महान पल गुजरने वाले हैं। आज है म्यूज़िक डे, सो म्यूज़िक डे और योग डे भी है। योग दिवस और संगीत दिवस की मंगल कामनाओं के साथ ये गाना हम प्रस्तुत करते हैं। बस आपके मन में मुस्कुराहट रहे, आपके होठों पे मुस्कुराहट रहे और संगीत का महत्व आप हमेशा पहचानते रहे। संगीत के बीच में और योग के बीच में आप हमेशा हमेशा मुस्कुराहट का स्वागत किया।

प्रिय श्रोताओं, सादर नमस्ते। संसार का हर व्यक्ति शक्तिशाली बनना चाहता है। वह तरह तरह के उपाय करके अपने शरीर और बुद्धि की शक्ति को बढ़ाता है। अपनी आर्थिक और आत्मिक शक्ति को भी बढ़ाने की कोशिश करता है। परंतु क्या वह अपनी शक्तियों का प्रयोग सही ढंग से कर पाता है?

0: आइए विचार करें। एक जंगल में एक हत्यारा रहता था। जो भी व्यक्ति उस हत्यारे के पास आता था वह उसे मार देता था। एक दिन एक साधु उसके पास पहुंचा। साधु को देखते ही हत्यारे ने कहा, रुक जाओ, मैं एक हत्यारा हूँ, मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। साधु ने कहा, ठीक है, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मरने से पहले मेरी एक अंतिम इच्छा है, क्या तुम उस इच्छा को पूर्ण करोगे? हत्यारे ने कहा, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, मैं उसको पूरा करूँगा। साधु ने उत्तर दिया, तुम्हारे पास जो पेड़ हैं उस पेड़ से एक डाली काट कर दे दो। हत्यारे ने अपनी तलवार चलाई और पेड़ से एक डाली कट कर उसके हाथ में आ गिरी। साधु ने कहा, बस एक काम और कर दो, इस कटी हुई डाली को वापस पेड़ पर जोड़ दो। हत्यारे ने कहा, भला एक कटी हुई डाली पेड़ से वापस कैसे जुड़ सकती है? साधु ने कहा, अगर तुम में इतनी भी शक्ति नहीं कि तुम इस कटी हुई डाली को वापस पेड़ से जोड़ सको, तो फिर तुमने डाली को काटा ही क्यों? हत्यारा इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। श्रोताओं, असली शक्ति काटने में नहीं अपितु जोड़ने में होती है। कभी कभी मनुष्य स्वयं आगे बढ़ने के लिए दूसरे को काट देता है, स्वयं ऊपर उठने के लिए दूसरे को नीचे गिराता है, अपने ही सपने साकार करने के लिए दूसरे के सपनों को कुचलता है, अपना अहंकार सिद्ध करने के लिए दूसरे को नीचा दिखाता है। इन बुराइयों से मनुष्य की शक्ति की नहीं अपितु उसकी कमजोरी का परिचय मिलता है। 6 अगस्त 1947 को जापान के हिरोशिमा नगर में बम गिराया गया, जिससे पल भर में 1,00,000 जापानियों की मृत्यु हो गई और सैकड़ों लोग जीवन भर के लिए अपाहिज हो गए। भारी विनाश करने वाले इस बम को बनाने के लिए मनुष्य ने कई वर्षों तक अपनी बुद्धि की शक्ति लगाई होगी। अगर एक शहर को बर्बाद करने के लिए अपनी बौद्धिक शक्ति लगाई जाए, तो इसका मतलब मनुष्य सृजन करने के लिए नहीं अपितु विनाश करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। धिक्कार है ऐसी शक्ति पर जो दूसरों को हानि पहुंचाने का काम आए। दुनिया के कुछ देशों के पास आर्थिक शक्ति होती है और ये देश अपना धन मिसाइल बनाने में खर्च करते हैं। इतना सारा धन अगर वे गौ पालन में लगाएं और दूध, मक्खन, दही आदि का उत्पादन करें, तो संसार का कोई भी बच्चा भूखा नहीं रहेगा। संसार के हजारों लोग नौकरी के लिए नहीं भटकेंगे। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में कहा गया है, यस्यामानं कृष्टयः संबभ्रीवहु यस्यामिदं जीवन्ति प्राणदेजत। इस मंत्र का अर्थ है, पृथ्वी में अनाज उत्पन्न करने की शक्ति होती है। पृथ्वी पेड़ पौधों को जीवन देने और उन्हें पुष्ट करने की क्षमता रखती है, इसीलिए पृथ्वी की पूजा की जाती है। संसार में पूजनीय और सम्माननीय वही व्यक्ति होता है जो उत्पादन करने में, सृजन करने में और समाज का भला करने में अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। हम अपनी शारीरिक, बौद्धिक, आर्थिक और आत्मिक शक्तियों को सही दिशा में ले जाएं, स्वयं संतोष प्राप्त करेंगे और दूसरों को भी सुख देंगे। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे मंगल विचार डॉक्टर माधुरी रामधारी जी से।

0: आइए जानते हैं एमबीसी प्ले पर न्यू वर्ल्ड स्पोर्ट्स पैक में सब्सक्राइब करने का तरीका। स्टेप वन, सब्सक्राइबर को पहले एमबीसी प्ले ऐप खोलना होगा और जाना होगा टीवी सेक्शन में। अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर मिप्स पेमेंट पोर्टल। स्टेप टू, अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस। एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा। ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी। यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे। और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं, सो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड, यानी कि OTP SMS या ईमेल द्वारा। ये OTP आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन। तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या OTP के द्वारा, तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द एमबीसी प्ले एप्लीकेशन। अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा एमबीसी प्ले होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स। ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 433-3135 या 433-2871 या 433-3145 या 433-2905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800।
1: सुबह का नजराना लाए खुशियां हजार, रेडियो मॉरिशस पर।

चलिए जरा 7:38 हुए हैं, बढ़ते हैं हम हमारे रेडियो के प्रोग्रामों की डिटेल के बारे में। अभी तो सुबह का नजराना हम पेश कर रहे हैं आपके लिए और 8 बजे आप भोजपुरी समाचार सुन पाएंगे, जिसके फौरन बाद लेकर आएंगे हम आपके लिए पैगाम आपके नाम, और पैगाम आपके नाम में आपके संदेश से आपके अपनों तक पहुंचाएंगे। 9 बजे संक्षिप्त समाचार, उसके बाद मंगल आचरण कार्यक्रम वेदिता से सुनिएगा। 10 बजे संक्षिप्त समाचारों के बाद उर्दू प्रोग्राम होगा निसार की प्रस्तुति में। फिर 11 बजे के संक्षिप्त समाचारों के बाद सुंदरम पेश करेंगे आज का तमिल प्रोग्राम, और राजेंद्र तेलुगु प्रोग्राम लेकर आएंगे दिन के 12 बजे। मराठी प्रोग्राम 1 बजे होगा सीताबाई दरमिया की प्रस्तुति में। 2 बजे चाइनीज प्रोग्राम जिन पेश करेंगे। 3:30 बजे आज का और गुजराती कार्यक्रम रंगारंग रत्ना पेश करेंगी। फिर 4 बजे आप और हम कार्यक्रम सुनिएगा पूजा से। 5 बजे पूजा से ही आज का त्योहर पसीन कार्यक्रम सुनिएगा। 6 बजे समाचार बुलेटिन होगा और 6:30 बजे चाइनीज प्रोग्राम होंग होंग पेश करेंगी। फिर आप सुनिएगा 7 बजे शाम को आज का तमिल प्रोग्राम पुवाना की प्रस्तुति में। शाम के 7:30 बजे आप सुनिएगा वंदना की प्रस्तुति में आज का तेलुगु प्रोग्राम, और शीर्ष लेकर आएंगे आज का मराठी प्रोग्राम गीत गंगा 7:50 पर। रोशनी लेकर आएंगे आज का भजले प्रभु का नाम प्रोग्राम रात्रि के 8:10 पर और

0: बजकर 40 मिनट पर सुनिएगा आज का महफिल शब कार्यक्रम उर्दू भाषा में, जिसे पेश करेंगे समीर और प्रताप। लेकर आएंगे आज का हमारा भोजपुरी तड़का रात्रि के 9 बजे से 11 बजे तक, और 11 से 12 बजे तक रात्रि में आज का सुनहरे पल कार्यक्रम आप गिनी शाह की प्रस्तुति में सुनिएगा। तो बस साथ देते रहिएगा, रेडियो मॉरिशस आपके साथ है। चलिए जरा हम संगीत दिवस और योग दिवस पर थोड़ी बातें करें। वैसे संगीत दिवस और योग दिवस आज हम मना रहे हैं, इसकी मंगल कामनाएं आपके लिए। योग वह प्रकाश है जो एक बार जला दिया जाए तो कभी कम नहीं होता। जितना अच्छा आप अभ्यास करेंगे उतनी ही ये लौ जो है उज्जवल होती जाएगी। और संगीत तो उसका क्या कहना, जहाँ शब्द असफल हो जाते हैं वहाँ संगीत अपना जलवा दिखा जाता है। भाषा समझ में आए न आए, किसी भी संस्कृति का संगीत बड़े चाव से सुनता है जमाना।
1: Dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda din

0: प्रोग्राम्स की झलकियाँ।
1: ये मेरे डैडी का घर है, इसको मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता इसको मुझसे।
2: बाबूजी चले गए, ये घर भी चला गया और अब तुम भी जा रही हो।
1: काका अपने घर को छोड़ के जाने का किसका दिल करता है, लेकिन जब ये घर ही नहीं रहा तो।
3: आप जो मेरे लील न होते।
0: रविवार 21 जून को म्यूजिक डे के उप

0: लक्ष्मी NBC 3 पर दिन के 12 बजे हिंदी फीचर फिल्म गीत 1992 की ये मूवी दिव्या भारती और अविनाश वधावन पर फिल्माई गई गीत
1: जीवन है क्या गीत बिना जीवन है क्या गीत बिना
0: NBC TV रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
2: सर ये गाड़ी आप यहाँ पार्क नहीं कर सकते सर।
3: ओए कूल इट ब्रदर है।
2: अरे सुनिए
4: हाउडी सर।
3: सब भला चंगा है ना मैम?
5: अजी सब चंगा ही चंगा है सर। मीट सैम हिंदुस्तान पहला जलंधरी काउबॉय।
3: हाउडी।
6: जब से ये आपकी गाड़ी चलाते हैं आपको घोड़े पे बैठने की ख्वाहिश तो नहीं होती
3: होगी? कैसे जी वैन पंजाबी ड्राइव से गड्डी फ्लाई।
0: रविवार 21 जून को NBC 4 पर शाम के 6:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म जिंदगी रॉक्स 1996 की ये मूवी सुष्मिता सेन और शाइनी आहूजा पर फिल्माई गई जिंदगी रॉक्स।

तो इस समय 7:46 हुए हैं। आज हम दो महत्वपूर्ण इवेंट्स मना रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और विश्व संगीत दिवस। आपको इन दोनों अवसरों की मंगल कामनाएं। योग और संगीत दोनों हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं, हमारे मन को शांति और खुशी प्रदान करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का लक्ष्य है योग के प्रति सबके मन में जागरूकता उत्पन्न करना। जहां योग साधना सारी दुनिया को एकजुट बनाती है, वहीं पर संगीत भी अलग अलग देशों, जातियों तथा संस्कृतियों में एकता लाता है। तो आइए मिलकर हम योग दिवस और संगीत दिवस का आनंद उठाएं और इन्हें मिलजुल कर मनाएं।

चलिए जरा हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और विश्व संगीत दिवस उत्सवों के इतिहास की चर्चा करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत साल 2015 से हुई थी। दरअसल साल 2014 के सितंबर महीने में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र सभा में योग दिवस का प्रस्ताव रखा। इसके बाद 11 दिसंबर 2014 को इस प्रस्ताव को सर्वसहमति मिली। तभी 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। और अगर संगीत दिवस की बात करें तो विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाने की परंपरा फ्रांस में शुरू हुई और ऐसा हुआ साल 1982 में, यानी 1982 में। फ्रांस के उस समय के संस्कृति मंत्री यानी कि मिनिस्टर ऑफ कल्चर जैक लंग और रेडियो निर्माता मोरिस फ्लोरे ने विश्व संगीत दिवस मनाने की कल्पना की और लोगों से संगीत बजवाकर उस दिन का आरंभ किया। तब से फ्रांस में संगीत दिवस मनाया जाने लगा।

0: सुबह का नजराना रेडियो मॉरिशस।
1: आइए जरा एक नजर दौड़ाएं हम संगीत दिवस और योग दिवस के लक्ष्य पर। योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से सेहत को कई सारे फायदे मिलते हैं। योग से होने वाले इन्हीं लाभों के प्रति जागरूकता फैलाने के मकसद से यह दिवस मनाया जाता है। योग एक प्राचीन अभ्यास है जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई, पर अपने शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक लाभों के लिए दुनिया भर में लोकप्रियता प्राप्त की है योग ने। जहाँ सेहतमंद रहने के लिए योग की महत्ता असीमित है, वहाँ संगीत का महत्व भी पीछे नहीं हटता। योग और संगीत दोनों से मनुष्य को खुशी महसूस होती है। आज का युग कंपटीशन का युग है। हर कोई सफलता के पीछे भाग रहा है। असफलता पाकर जहाँ व्यक्ति निराश पड़ जाता है, वहीं पर योगासन और संगीत अपनी अपनी जगह पर मनुष्य को शांत करने का कर्तव्य निभाते हैं। यहाँ तक कि साइकोलॉजिस्ट मरीजों को संगीत थेरेपी देकर ठीक करते हैं, जिससे उनको अब बहुत सारे फायदे मिलते हैं। रिसर्च से ये भी पता चला है कि पेड़ पौधे उस जगह अधिक स्वस्थ रूप से उगते हैं और बढ़ते हैं जहाँ पर संगीत का माहौल रहता है। बस थोड़ी ही देर में, अभी 7:57 हुए हैं, थोड़ी ही देर में आप भोजपुरी समाचार सुनिएगा अभी से।

0: मॉरिशस
1: अपन घड़ी मिला ले जाए इ बखत फजर के 8 बजल बा। सब कोई की नमस्ते और आदाब। फजर के 8 बजे के भोजपुरी समाचार सुना जा। आव 2-3 महीना में शिक्षा मंत्र प्रणाली में तनिकुन सुधार लाए खातिर शिक्षा मंत्रालय के बगल से एगो ब्लूप्रिंट तैयार करल जाए। बजट 2026-2027 में शिक्षा के क्षेत्र खातिर 2.6 बिलियन रुपया के प्रावधान बाते। जनरल लिंक्स के बगल से अनुष्का वासोमी बजट 2026-2027 पर अपन संतुष्टि जतैलन। उनकर अनुसार महिला के कल्याण में कई गो महत्वपूर्ण कदम उठावल गल, खासकर मैटरनिटी लीव के अवधि बढ़ावे के बात सामने आला। तो दूसर देने में पर्यटन के क्षेत्र के नीति में बदलाव लाए खातिर बजट भाषण में 1 बिलियन रुपया निवेश करे के ऐलान करल गल। आरिम ई बोलन की बजट वाके उन सब चुनौती के सामना करता जिमें इस सेक्टर गल कईन बरिस से जूझता। हर बरिस 21 जून के संगीत दिवस मनावल जाला। एकर शुरुआत सन 1982 में फ्रांस में हो रहल विश्व संगीत दिवस के उद्देश्य है संगीत के माध्यम से ढेरों जना के जोड़े के कई गो संस्कृति और परंपरा के संगीत के सम्मान करे के नवा और उभरे होला कलाकार के एगो मंच प्रदान करे के। संगीत दिवस पर कलाकार लोगन के आर जस्ती खुश हवन जा कहे कि बजट 2026-2027 में सांस्कृतिक क्षेत्र के बढ़ावा देवे खातिर कई गो कदम के बारे में बतावल गल। आज भर्ती दुनिया में योग दिवस भी मनावल जात बा। हजारन बरिस अगारी वे से भारतीय ज्ञान परंपरा से निकलल योग आज करोड़ लोगन के जीवन शैली के अहम हिस्सा बन गल बाते। हमनी के दै मन और आत्मा के संतुलन के संदेश देवे होला ई अभ्यास। अब सीमा और संस्कृति से परे एगो वैश्विक आंदोलन के रूप धर ले ली बाते। ई बरिस योग दिवस के विषय है स्वस्थ और सक्रिय वृद्धावस्था माने हेल्दी एजिंग। तो दूसर देश में जर्मनी के म्यूनिक शहर में काल सामदी के फजेरे फजेरे एगो बड़का रेल हादसा भल जिमें एगो ओवरब्रिज पर दूगो मालगाड़ी आपस में टकरा गल। इक्कस के टक्कर होल कि मालगाड़ी के दूगो डिब्बा पतरी से उतर के सीधा सड़क पर जा गिरल। इ दर्दनाक हादसा में एक जना के मौत हो गल आर 2-3 आदमी के कस के घाव लग गल बाते। तेकरे संगे हमनी के भोजपुरी समाचार समाप्त भल। ध्यान खातिर धन्यवाद। नमस्ते और आदाब।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
1: आवा मरनी का कवर सुना जा। पेची व्याजे सैंपिया बुआशेरी में 3 कोरी 17 बरिस के 77 सेतों के श्रीमती कुमारी क्षमा करे कुमारी सीता देवी सरोज जिनकरा सब लोग कमला के नाम से जस्सी जाना थलन जा उनकर मृत्यु हो गल बाते। उनकर माटी आज दिन की दस बज के आधा उनकर भाई श्री चंद्र स्वराज सरोज के घरे पिछव्याजे सैंपिया बुआशेरी से उठा के करिया करम खाती सैकोस्तांस के शमशान भूमि ले चावल जाए। क्रमेशन टुडे एट 10:30 AM Temple Road Rivet du Rempart में तीन कोरी 10 बरिस के उम्र में 70 ओं के श्री कांता प्रसाद दुता जिनकरा सब लोग सिकाओ के नाम से जस्ती जाना थलन जा उनकर मृत्यु हो गल बाते। उनकर माटी आज दिन के दस बज के आधा उनकर पत्नी श्रीमती मीला दुता के घरे टेम्पल रोड रिवेज रॉपा से उठा के क्रिया करम खातिर उत्तरी रिवेज रॉपा के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 10:30 AM डिस्पेंसरी रोड ग्रांड साब में 3 कोरी 1 बरिस के 61 ओं के श्री अजय कुमार दुखी जिनकरा सब लोग अनुज शोफिया टैक्सी के नाम से जस्सी जाना थलन जा उनकर मृत्यु हो गल बाती। उनकर माटी आज दिन के 11 बजे आज

0: दिन के 11 बजे उनका बेटा श्री योगेश ढुकी के घरे डिस्पेंसरी रोड गांव साबल से उठा के क्रियाक्रम खातिर बुशों की शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM मेजोनेट रोड रिवे डिज ऑंगी में मेजोनेट रोड रिवे डिज ऑंगी में 4 करी 15 बरिस के 95 अंक के श्रीमती अचामा गंगाना श्रीमती अचामा गंगाना जिन पैदाइशी नाम जुका कनिया और जिनका सब लोग सीता के नाम से जस्सी जाना थलंजा उनकर मृत्यु हो गल बाते। उनकर माटी आज दिन के एक बजे उनकर बेटा श्री सिरामा गंगाना के घरे मेजोनेट रोड रिवेदिजोंगी से उठा के क्रियाक्रम खातिर तायक की शमशान भूमि ले जावल जाए। फ्यूनरल टुडे एट 1 PM वुडू लेन थ्रियोली में 4 करी 1 बरिस की 91 अंक की श्रीमती यशवंती बिसेसा श्रीमती यशवंती बिसेसा पैदाशी नाम चमन और जिनके रहा सब लोग बिंदु के नाम से जैसी जाना थलंजा उनकर मृत्यु हो गल बाते। उनकर माटी आज दिन के एक बजे उनकर भगिना श्री ऋषि सिंह बिसेसा के घरे वुडू लेन थ्रियोली से उठा के क्रियाक्रम खातिर SSS लेन थ्रियोली की शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM मोसेलमो तानाकोडी सुरीनाम में 4 करी 9 बरिस के 89 अंक के श्रीमती राधिका सिउदीन पैदाशी नाम बुतराम और जिनका सब लोग प्रभा सिउदीन के नाम से जस्सी जाना थलन जा उनकर मृत्यु हो गल बाते। उनकर माटी आज दोपहर के दो बजे उनकर बेटा श्री मोहन लाल सिउदीन के घरे मोसेलमो तानाकोडी सुरीनाम से उठा के क्रियाक्रम खातिर सुया की शमशान भूमि ले जावल जाए। फ्यूनरल क्रिमेशन टुडे एट 2 PM जवाहरलाल नेहरू रोड जुबगई में 2 करी 4 बरिस के 44 अंक की श्रीमती हेमा बहादुर पैदाशी नाम हिरामन और जिनका सब लोग रेशमा के नाम से जस्सी जाना थलंजा उनकर मृत्यु हो गल बाटी। उनकर माटी आज दोपहर के दो बजे उनकर पति श्री रवि बहादुर के घरे जवाहरलाल नेहरू रोड जुबगई से उठा के क्रियाक्रम खातिर हौजवे की शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM डालवा रोड बेलेरिवेशस में 4 करी 2 बरिस के 92 अंक के श्री प्रेमचंद नागवा जिनका सब लोग प्रेम के नाम से जस्सी जाना था रंजा उनकर मृत्यु हो गल बाती। उनकर माटी आज दोपहर के दो बजे उनकर बेटा श्री संजीव नागवा के घरे डालवो रोड बेलेरिवेशस से उठा के क्रियाक्रम खातिर देफ्रेया की शमशान भूमि ले जावल जाए। फ्यूनरल टुडे एट 2 PM तो जितना जिन परिवार दुख में हवन जा दुख के ई घड़ी में MBC के बगल से सब कोई की हमनी सहानुभूति प्रकट करत है सब।
1: KHz ये है रेडियो मॉरिशस
2: 819 KHz पर रेडियो मॉरिशस।
3: आइए जानते हैं MBC प्ले पर न्यू वर्ल्ड स्पोर्ट्स पैक में सब्सक्राइब करने का तरीका। स्टेप 1, सब्सक्राइबर को पहले MBC प्ले ऐप खोलना होगा और जाना होगा TV सेक्शन में। अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर MIPS पेमेंट पोर्टल। स्टेप 2, अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस। एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा। ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी। यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे। और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं सो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड, यानी कि OTP SMS या ईमेल द्वारा। ये OTP आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन। तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या ओटीपी के द्वारा, तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द एमबीसी प्ले एप्लीकेशन। अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा एमबीसी प्ले होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स। ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 433-3135 या 433-2871 या 433-3145 या 433-2905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800। हर पल का साथी, हर दिल की आवाज, खुशियों का रंग और यादों का साज, हंसी हो या गम ये रहता है साथ, संगीत से ही महकती है जीवन की हर एक बात। हैप्पी म्यूजिक डे फ्रॉम एमबीसी रेडियो।

इस समय 8:11 हुए हैं। आज रविवार 21 जून का पैगाम आपके नाम कार्यक्रम आपके नाम करते हैं। आज संगीत दिवस और योग दिवस, और इस अवसर पर आप लोगों को मंगल कामनाएं हम दे रहे हैं। आपकी सेहत बहुत अच्छी रहे, आप योग का अभ्यास हमेशा करते रहें, और संगीत तो आपका साथी है, हर पल का साथी है, पल पल का की यारी है संगीत के साथ। इस संगीत से आप लोगों का मन हमेशा आनंदमय रहे। पैगाम आपके नाम कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हुए आपको याद दिला देते हैं कि इसमें आप अपने अपनों के नाम अपने मैसेजेस भेज सकते हैं। कोई भी इवेंट हो, बर्थडे हो, शादी की सालगिरह हो, मंगनी हो, या सफलता का कोई राज हो, सब आप उन सब के लिए आप अपने अपनों को मैसेजेस भेजिएगा और बताइएगा उनको कि आपके दिल में कितनी खुशियां हैं, कितनी दुआएं हैं उनके लिए। सो आपके नाम करते हैं पैगाम आपके नाम, और आज तो हम सबसे पहले आपको मंगल कामनाएं देते हैं संगीत दिवस की और योग दिवस की। और इन हमारे साथ साथ बहुत से हमारे श्रोता हैं जिन्होंने म्यूज़िक डे के लिए आप लोगों को मंगल कामनाएं भेजी हैं। विश्वानी दुमन फ्रॉम वाकवा, आप सभी को हैप्पी संडे और हैप्पी म्यूज़िक डे विश कर रहे हैं। उन्होंने तो हमें चाय पर भी बुलाया है, चलिए साथ मिलकर चलते हैं हम विश्वानी जी के घर। तो चलिए, इधर है हैप्पी म्यूजिक डे विश करने वाली हमारी श्रोता पेचित खैत से माला झरी जी। उन्होंने हमारी पूरी टीम को, हमारे सभी श्रोताओं को संगीत दिवस की मंगल कामनाएं भेजी हैं, और साथ ही साथ हमारा साथ दे रहे हैं सूरज शर्मा सजादा जी। और आप सभी को एक बहुत अच्छा दिन मिले, आज का दिन आपके लिए ब्लेस्ड रहे, यही उनकी उम्मीद है। चलिए ज़रा हम आगे बढ़ते हैं, और म्यूज़िक का ये जो साथ है हमारा, ये साथ हम मिलकर निभाते हैं।

साथ हमारा मिल के दे रहे हैं हमारे श्रोता, इनमें शामिल है माला सुमागु जी का, तोबों से बड़े प्यारे प्यारे शब्द लिखे हैं, बहुत प्यारी प्यारी बातें की हैं उन्होंने अपने मैसेजेस में, और हमारे सभी श्रोताओं को मंगल कामनाएं भेजी हैं योग दिवस और म्यूजिक डे के लिए। साथ हमारा फ्लिकॉन्फ्लाक की अनीता जी भी निभा रही हैं। अनीता जी ने अपने पूरे परिवार को, अपने सभी दोस्तों को बहुत सारी मंगल कामनाएं दी हैं। संगीत दिवस उनके जीवन में हमेशा हमेशा लय बनाए रखे, और योग दिवस उन लोगों के जीवन में हमेशा योग की भावना रखे, और जो आनंद मिलता है योग से वो आप सभी के हृदय में बरकरार रहे। यही हमारी पूरी टीम की और अनीता जी की मंगल कामना है। संजय सिगोबिन, माफ कीजिए, लक्ष्मण सिगोबिन जी ने हमें मैसेजेस भेजे हैं। उनका मैसेज ये है कि जो आज मिला है उसे बीते समय के ग्रज क्रोध में मत गवाइए, दोस्तों परिवारों में प्रेम आनंद मुस्कुराहट हंसी फैलाइए, खुल के जिए, सही समय का इंतज़ार मत कीजिए, सही समय कब आए न आए अभी के अभी जीवन का आनंद लेना शुरू कीजिए, म्यूज़िक से जो प्रेम आप बांट सकते हैं वो ज़रूर बांटिए, और म्यूज़िक तो वैसे ही आपके अंदर प्रेम पैदा करता ही है। म्यूज़िक डे और योग दिवस की मंगल कामनाएं हमारे श्रोता लक्ष्मण सिगोबिन जी ने वाकवा से हमारे सभी श्रोताओं के नाम की है।

हर पल का साथी, हर दिल की आवाज, खुशियों का रंग और यादों का साज, हंसी हो या गम ये रहता है साथ। संगीत से ही महकती है जीवन की हर एक बात। हैप्पी म्यूजिक डे फ्रॉम MBC रेडियो।

आज बर्थडे मना रहे हैं भैया जी। इनफैक्ट नाम तो बताया नहीं है हमको, फिर भी हम ढूंढने की कोशिश करेंगे आपके प्रोफाइल पर। आपके भैया जी को आपने बहुत सारी शुभकामनाएं भेजी है, हेल्दी मॉर्निंग कहा है हमारे सभी श्रोताओं को, और हेल्दीएस्ट बर्थडे अपने भैया को भेजा है सभी बहनों ने मिलकर, बोबासे की सभी बहनों की तरफ से, और फैमिली, पूरी फैमिली जो उनको बहुत सारी दुआएं दे रही हैं, उनको बहुत सारा प्यार दे रही हैं। क्यूपी और बाबा सिंह की बहनों की तरफ से आपको बहुत सारी मंगल कामनाएं। और वैसे भी हमने प्रोफाइल में चेक किया तो शकुन जी ने ये मैसेज भेजा है, शकुन जी के भैया को हमारी पूरी टीम की तरफ से वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, बहुत मंगल कामनाएं हमारी पूरी टीम की।

मंगल कामनाएं हम दे रहे हैं शकुन जी की तरफ से और उनकी सभी बहनों की तरफ से, पूरी फैमिली की तरफ से, उनके भैया को। और हमारा साथ देने वालों में तो हमारे बहुत से श्रोता शामिल हैं, शीला बिनाना जी हैं, सांता पालू जी हैं, फिर फातिमा जी हैं न्यू ग्रोव से। हमारे सभी श्रोताओं को मंगल कामनाएं भेजी हैं म्यूजिक डे की, और जिनका जन्मदिन है आज उन्हें बहुत सारी बधाइयां भी भेजी हैं। और माला झड़ी जी हैप्पी म्यूजिक डे सभी श्रोताओं को दे रही हैं अपनी बेटी रीमा और बेटे दीपक तथा पति ईश्वर के साथ मिलकर।

हमारा आपका साथ है, म्यूजिकल साथ है। आप जो मैसेजेस भेजना चाहते हैं उसके बारे में हमारा आपका बहुत ही अच्छा सहयोग है। चलिए, ज़रा आपके सहयोग के लिए धन्यवाद तो ज़रूर देंगे हम। आप हैं तो हमारा आपका रिश्ता बहुत ही गहरा है, और ये तो रिश्ता काफ़ी म्यूजिकल ही कहेंगे हम, क्योंकि म्यूज़िक ही हमें साथ में बांधता है, रेडियो हमें साथ में बांधता है। चलिए ज़रा

हम आपको कमला जी का मैसेज पढ़ के सुनाते हैं। कमला जी ने मौताबा से भेजा है ये मैसेज। कहा है कि संगीत के बिन निरस जीवन हमारा, सरगम के सुर बिन सूना आंगन हमारा, हवाओं की लहर में बारिश के पहर में संगीत है कण कण में। हैप्पी म्यूजिक डे एंड योगा डे टू ऑल आवर लिसनर्स। कमला जी की तरफ से मौताबा की कमला दीनू जी। साथ हमारे हैं आशा जानू जी भी कोटेज से। आशा जानू जी ने कोटेज से सभी हमारे श्रोताओं को, म्यूजिक लिसनर्स को बहुत सारी शुभकामनाएं भेजी हैं। म्यूजिक के प्रति लव रखना बहुत ही पवित्र बात है अपने आप में। तो चलिए हम आशा जी की तरफ से ममा कुमारी, नेफ्यूज़ शुभम, ऋषभ, दीदी आरती, जीजू राज और पूरे जानू परिवार को बहुत सारा प्यार भेजते हैं, बहुत सारी मंगल कामनाएं संगीत दिवस की भेजते हैं।

आशा जी का मैसेज ये है कि जीवन का सच्चा मीत है संगीत, और पल हर पल जो साथ निभाए वही होता है संगीत।

आज योग दिवस है और म्यूजिक डे है, संगीत दिवस है। योग और संगीत दोनों हमारे जीवन की बहुत महत्वपूर्ण रास्ते हैं, बहुत महत्वपूर्ण राहें हैं जो हमें बहुत ही अच्छी सेहत की ओर ले जाती हैं, जो हमें खुशियों की ओर ले जाती है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन। योग वह साधन है जिससे दोनों मिल जाते हैं। संगीत दुनिया को आत्मा देता है, मन को पंख देता है, कल्पना और जीवन को उड़ान देता है। तो बस योग और संगीत को आप अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखिएगा ताकि आपके जीवन में उड़ान बहुत अच्छी, प्यारी और बहुत ही हेल्दी रहे। इधर देवी जी ने हमें मैसेज भेजा है, हैप्पी म्यूजिक डे और हैप्पी योगा डे की का संदेश भेजा है हमारे सभी श्रोताओं के लिए। संगीत सिर्फ शांति और खुशी नहीं देती, उनका ये कहना है, उनका कहना है कि वो तो तनाव को भी दूर भगाती है। तो देवी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके विचारों के लिए। इधर माला खाम सामी जी हैं जो पालमा काथोबोन से हमारा साथ दे रही है और हैप्पी म्यूजिक डे कह रही हैं। हमारे पूरे स्टाफ को बहुत बहुत शुक्रिया और उन्होंने हमारे सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत मंगल कामनाएँ भेजी हैं, अपने फ्रेंड्स को हैप्पी म्यूजिक डे, हैप्पी योगा डे कहा है। इधर हमारा साथ दे रही हैं यूनियन पॉक की विद्या जी। विद्या जी ने हैप्पी बर्थडे कहा है दिव्या इंदु जी को, जो नुवेल फ्रांस की रहने वाली हैं। दिव्या जी को बर्थडे की मंगल कामनाएं उनकी मामा इंदिरा की तरफ से, पापा प्रेम की तरफ से, विक्की, विमल, काव्या, लीना, जेविका, इशिका और पूरे नोवेल फ्रांस के इंदु फैमिली की तरफ से अ वेरी वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। हमारी पूरी टीम की तरफ से भी विद्या जी आपको मंगल का

सो पैगाम है मीला राम स्वामी जी की तरफ से पलमा कथोबोन की। मीला राम स्वामी जी ने अपने सभी फ्रेंड्स को बहुत बहुत मंगल कामनाएं म्यूजिक डे और योगा डे की भेजी है। म्यूजिक डे की मंगल कामनाएं आकाश चेतन मनसुख जी की तरफ से। बहुत बहुत प्यारा सा ये दिन रहे, बहुत म्यूजिकल ये दिन रहे, बहुत ही लय भरा रहे आपके जीवन में, ये हमारी उम्मीद है। और आकाश चेतन मनसुख जी की तरफ से हम उनकी मामा प्रीति, पापा क्रिस, उनकी दो बहनों को उर्वशी और विश्नी, जीजा विनेश को, नेफ्यू केहान को और उनके दोनों दोस्तों को युदीन और दिशाल को, पूरे मनसुख परिवार को जो बॉम्बे के रहने वाले हैं, मंगल कामनाएं देते हैं म्यूजिक डे की। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां, बहुत सारा म्यूजिक रहे, यही हमारी दुआ है।

संगीत दिवस और योगा दिवस की मंगल कामनाओं के साथ हम समाप्त करते हैं आज का हमारा ये प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम पैगाम आपके नाम, आप लोगों ने इसमें साथ दिया हमारा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस अंत में हम दुआएं देते हैं अरविंद और शिखा जी को, जिनकी आज शादी हो रही है, और शादी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं उनको दे रहे हैं उनके पूरे परिवार के सदस्य, ख़ास तौर पर उनकी तीनों बहनें, उनकी बहनें सीमा, मेधा और वाहिनी, इन सब की तरफ से आपको मंगल कामनाएं अरविंद जी और शिखा जी। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां रहे, यही उम्मीद है उनकी, आपके पूरे परिवार की और हमारी पूरी टीम की। तो बस यहीं पर समाप्त करते हैं दुआओं के साथ ये प्रोग्राम पैगाम आपके नाम। ठीक 9 बजे आप सुन पाएंगे आज के संक्षिप्त समाचार, उसके बाद आज का मंगलाचरण कार्यक्रम आप सुनिएगा, जिसे प्रस्तुत करेंगी फेदिता हमारी, माफ कीजिए, जिसे प्रस्तुत करेंगी नीतोषा हमारी। आपकी मुलाकात अगली बार होगी, तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहेंगे। शुभ दिन, शुभ संडे, शुभ म्यूजिक डे, शुभ योगा डे। नमस्कार।

0: 819 किलोहर्ट्ज ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: के लिए संक्षिप्त समाचार आपके साथ अभ्युदय। नमस्कार आपको।
2: नमस्कार मनीषमा, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हर वर्ष 21 जून को संगीत दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत सन 1982 में फ्रांस में हुई थी और आज ये दुनिया के अनेक देशों में मनाया जाता है। इस दिन पेशेवरों और शौकिया संगीतकार सार्वजनिक स्थानों पर निःशुल्क प्रस्तुतियां देकर

संगीत को सभी तक पहुंचाने का संदेश देते हैं। इस दिवस का उद्देश्य है संगीत के माध्यम से लोगों को जोड़ना, विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं के संगीत का सम्मान करना, नए तथा उभरते कलाकारों को मंच प्रदान करना और संगीत के लिए सभी के लिए सुलभ करना। इस वर्ष का व्यापक संदेश यही है कि संगीत सीमाओं, भाषाओं और संस्कृतियों से परे लोगों को एक साथ लाने की शक्ति रखता है। आज विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। हजारों वर्ष पुरानी भारतीय ज्ञान परंपरा से निकला योग आज करोड़ों लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का संदेश देने वाला ये अभ्यास अब सीमाओं और संस्कृतियों से परे एक वैश्विक आंदोलन का रूप ले चुका है। इस साल का विषय रखा गया है हेल्दी एजिंग, यानी कि स्वस्थ एवं सक्रिय वृद्धावस्था। कल बंदरगाह पर एमएससी वीगो नाम के एक मालवाहक जहाज से 3 किलो से ज्यादा गांजा जब्त किया गया। ये जहाज जर्मनी के झंडे तले चल रहा था और दक्षिण अफ्रीका के डर्बन शहर से आया था। जैसे ही हमारे समुद्री इलाके में आकर रुका, इसकी बारीकी से तलाशी ली गई। पुलिस की आजसू टीम और पुलिस की अन्य इकाइयों ने मिलकर ये ऑपरेशन चलाया, जिसमें उन्हें 3 संदिग्ध पैकेट प्राप्त हुए। जब्त किए गए ड्रग्स की कीमत लगभग 4.8 मिलियन रुपए की बताई जा रही है। नशे के खिलाफ एकजुट, एंसेम्बल कॉन्ट्र ला ड्रग, इसी विषय पर इस रविवार को त्वाबुचिक में एक शांति मार्च का आयोजन किया जा रहा है। इसका मकसद है लोगों, खासकर युवाओं को नशे के नुकसान के बारे में जागरूक कराना और एक सुरक्षित और स्वस्थ माहौल को बढ़ावा देना। ये मार्च आज सुबह 8:30 बजे मोसेलमो ले पालमिये से शुरू हो गया है और सुबह करीब 9:30 बजे तक विलेज हॉल पर समाप्त होगा। इस मौके पर एक पुरस्कार वितरण समारोह भी आयोजित किया जाएगा। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि यूक्रेन ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने बताया कि उनके ड्रोन रूस के एक तेल रिफाइनरी तक पहुंच गया है और उस पर हमला किया है। ये जगह यूक्रेन की सीमा से 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। इसके साथ ही ज़ेलेंस्की ने यह भी बताया कि अब उनके पास नए ड्रोन हैं जो 3000 किलोमीटर तक जा सकते हैं। तो ये थी अब तक की खबरें। ध्यान देने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार। नंबर 5 हुसैन अलाम स्ट्रीट सैंक्वा में, नंबर 5 हुसैन अलाम स्ट्रीट सैंक्वा में 35 साल के 35 years old के श्री देवेश विनय प्रकाश पदारत, श्री देवेश विनय प्रकाश पदारत, जिन्हें सब लोग विनय के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन की 11 बजे उन्हीं के घर नंबर 5 हुसैन अलाम स्ट्रीट सैंक्वा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही ब्रूले वाले दे प्रेट के शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। पेटी व्याजे सेंट पियर बोआशेरी में, पेटी व्याजे सेंट पियर बोआशेरी में 77 साल की 77 years old की कुमारी सीता देवी सिरोज, कुमारी सीता देवी सिरोज, जिन्हें सब लोग कमला के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े दस बजे उनके भाई श्री चंद्र स्वराज सिरोज के घर पिछिव्याजे सैंपिया बुआशरी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकुंस्तांस की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10:30 AM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

मंगलाचरण समस्त श्रोताओं को नीतुषा का करजोर प्रणाम। सत्यार्थ प्रकाश मास के संदर्भ में आज का यह कार्यक्रम

0: आर्य सभा मॉरिशस के तत्वधान में प्रस्तुत किया जा रहा है। और श्रोताओं, आज स्टूडियो में उपस्थित हैं आचार्य डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार शास्त्री जी, जो दिल्ली से हैं। साथ में हैं श्रीमान हरिदेव रामधनी जी, मंत्री वेद प्रचार समिति, और पंडित श्याम देबू जी। सम्मान्य अतिथिगण, सादर नमस्ते।
1: नमस्ते।
2: ओम सन्नो मित्र संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णु रुद्रक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम अवतु तद्वक्तारम अवतु अवतु माम अवतु वक्तारम। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय श्रोतागण, मंगलाचरण की मंगल बेला में सबका स्वागत है। आज सत्यार प्रकाश जयंती के पुनीत अवसर पर, जो मास चल रहा है पूरे विश्व में, जहाँ जहाँ पर हमारे आर्य हिंदू सनातन धर्मी बसे हैं, समस्त संसार में सत्यार प्रकाश जयंती अर्थात उनकी जय जयकार मनाई जा रही है। सत्यार प्रकाश क्या है, क्यों लिखा गया, उनके अंदर क्या मर्म है, इन तमाम बातों को आज उजागर करने के लिए वेद प्रचार समिति के मंत्री श्री हरिदेव रामधनी जी आर्य रत्न और हमारे डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार आर्य जी, जो दिल्ली से आए हुए हैं, प्रोफेसर है, शास्त्री है और अनेक विषयों के निष्णात विद्वान है, बहुसंपन्न विषयों पर अधिकार जमा कर भारत में और भारत से बाहर अन्य देशों में वैदिक धर्म का, सच्चार प्रकाश का, आर्य समाज का प्रचार कर रहे हैं, उनका स्वागत है, मंत्री जी का स्वागत है। हम आगे बढ़ते हैं। सच्चार प्रकाश महर्षि दयानंद सरस्वती का अमूल्य ग्रंथ है। इस ग्रंथ में ज्ञान के अमूल्य रत्न विद्यमान है और जिसे पढ़कर अनेक व्यक्तियों का जीवन बदल गया। देश की स्वाधीनता के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले अनेक देशभक्त पैदा किए, क्रांतिकारियों को जन्म दिया। और महर्षि दयानंद ने उस युग की समस्त बीमारियों को देखकर परख कर उन्होंने गांव-गांव में जाकर सभी समस्याओं का को देखा और सत्यार्थ प्रकाश ऐसा ग्रंथ लिखा जिसको सत्यार्थ प्रकाश कहते हैं। सत्यस्य अर्थस्य प्रकाशः, सत्य प्रकाश वेद को कहते हैं, ईश्वर का दिया हुआ अमोघ और ज्ञान जिसमें बदली नहीं होती है, रीत ज्ञान। अर्थात उस ज्ञान को विस्तार पूर्वक समझाने के लिए, क्योंकि वो क्लिष्ट है, वैदिक भाषा में है, संस्कृत भाषा में है, इसलिए ऋषि दयानंद ने उसको सरल से सरलतम बनाकर एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। वैसे तो महर्षि दयानंद ने तीन ग्रंथों को लिखा है जिसको ग्रंथ त्रयी बोलते हैं, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका जिसको पढ़ने से वेदों का ज्ञान, वेदों में प्रवेश करने का रास्ता देता है, संस्कार विधि सभी संस्कारों को संपन्न करने के लिए, संस्कार उस समय समाप्त हो गया था, हर एक गांव अपने अपने ढंग से कुछ न कुछ करते जा रहे थे, ऋषि दयानंद आइए, उन्होंने संस्कार को देखा, वेदों को देखा, अन्य शास्त्रों को देखा, उपनिषदों को देखा और उसने संस्कार विधि नाम की एक पुस्तक लिखी जिसमें संस्कारों का ज्ञान भरा पड़ा है, कर्म कैसे करते हैं। और उसने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, एकता को पैदा करने के लिए ढोंग गंवार शूद्र पशुनार पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी, नारी को कुछ समझा नहीं जाता था, वो पशु से भी नीचे उनकी मान्यता थी, ऋषि दयानंद ने वेदों और मनुस्मृति के अनुसार कहा नार्यास्तु रमन्ते पूजवन्ते तत्र देवता। उन्होंने सच्चार प्रकाश में बच्चों की शिक्षा, भगवान की जो समस्या है, हर एक गांव का एक भगवान है, उसने ओम बताया, ओंकार ओंकारनाथ ईश्वर को बताया जो सर्वव्यापक है, सृष्टिकर्ता है, इस बात को प्रथम समुलास में सुनाया, दूसरे समुलास में बच्चों का संस्कार, तीसरे समुलास में ब्रह्मचर्य की महिमा, उसके बाद गृहस्थ आश्रम आदि सभी जो पड़ाव है अपने जीवन में, जो 16 संस्कार उन्हें लिख दिया, 16 संस्कारों के अंतर्गत हमें क्या करना चाहिए, वेद क्या है, सृष्टि उत्पत्ति कैसी हुई, भक्ष्य भक्ष्य क्या है, इन तमाम बातों को ऋषि दयानंद ने सरलतम भाषा में सत्यार्थ प्रकाश में लिख कर हमें दे दिया, जिससे हमारा मनुष्य जीवन सफलता की ओर अग्रसर हो सके, जात पात ऊंच नीच का भेदभाव हटाकर सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ना चाहिए, उसको

0: पढ़ने से जीवन में रास्ता मिलेगा प्रगति करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। भारत प्रथम देश हुआ जिसको स्वतंत्रता मिली, और स्वतंत्रता के मूल मंत्र को समझाने वाला ऋषि दयानंद थे सत्यार प्रकाश के अंदर। उसने स्वाधीनता, राजा कैसे होना चाहिए, प्रजा कैसे होनी चाहिए, इन तमाम बातों पर प्रकाश डाला। इसलिए महर्षि दयानंद के सत्यार प्रकाश को बोलने के लिए समय बहुत कम है, वो तो जीवन बीत जाता है समझाने के लिए। इसलिए ऋषि दयानंद का गुणगान करते हैं रात दिन, उनके नाम, उनके कर्मों को, उनके आदेशों को, उनके निर्देशों को जीवन में लाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारे मध्य में वेद प्रचार समिति के मंत्री आए हुए हैं श्री हरिदेव रामधनी जी। मैं उनसे आग्रह करूंगा, क्योंकि आज्ञा नहीं दे सकते, आग्रह करते हैं जिज्ञासा भाव से, शिष्य भाव से, कि कृपया महर्षि दयानंद के जीवन पर कुछ सुनाएं, और साथ साथ आचार्य जी से कुछ प्रश्न करें जिसे आचार्य जी इसका खुलासा कर सके। धन्यवाद
1: पंडित जी। धन्यवाद। हम मॉरिशस में बसे आर्य समाज जी, या हम कहें भारतीय मूल के जो हैं, हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात हुई कि 1857 में, 1897 में श्री एक सैनिक थे, भारतीय सैनिक बंगाल से, भोलानाथ तिवारी, वे सत्यार प्रकाश लेकर और संस्कार विधि के साथ मॉरिशस आए थे। उनके टू ऑफ ड्यूटी समाप्त होने पर जब वो वापस जा रहे थे तो ये पुस्तकें उन्होंने छोड़ दी, और उसी सत्यार प्रकाश के माध्यम से मॉरिशस में पहला आर्य समाज 1903 में स्थापित हुआ, मतलब कि आर्य समाज की जो बीज है अंकुरित हुई। तो हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है, और ये जून मास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 12 जून 1874 में महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार प्रकाश को लिखने का कार्य प्रारंभ किया था, और 3.5 महीने में उन्होंने इसको पूरा कर दिया, इतने बड़े महाग्रंथ को। तो इसलिए मॉरिशस ही नहीं, पूरे विश्व में, भारत में सर्वत्र जून महीने को बड़े महत्व के साथ सत्यार प्रकाश की चर्चा सर्वत्र करते हैं। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, आचार्य जी दिल्ली से, भारत से बहुत ही पहुँचे हुए विद्वान, वैदिक दर्शन में और संस्कृत के प्रोफेसर हैं, तो हम उनसे आग्रह करेंगे कि इसमें गहराई से हमें कुछ समझाने का प्रयत्न करेंगे।
2: अवश्य, और हमारा भी सौभाग्य है कि आज आप जैसे सम्मान या अतिथिगण हमारे स्टूडियो में आए हैं और सत्यार प्रकाश मास के संदर्भ में सबको उजागर करें। अगर देखा जाए, कम शब्दों में कह सकते हैं कि सत्यार प्रकाश जो है जीवन का सार, इसको जीवन का सार भी कह सकते हैं, और जितनी भी कुरीतियाँ थी उनका खंडन किया गया, जैसे कि महिलाओं को, बच्चों के बारे में, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो एक बार फिर हमारे अतिथिगण का स्वागत है, खासतौर से विशेषकर आचार्य डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार शास्त्री जी जो दिल्ली से आए हैं, और ये हमारे सम्मान की बात है कि हम आपसे कुछ प्रश्न कर पा रहे हैं, आपसे कुछ प्रश्न और आपके मुख से कुछ जवाब भी मिलेंगे, और जितने भी हमारे श्रोता हैं आपको सुनेंगे अभी, उनका मार्गदर्शन होगा। तो कृपया हमें बताएं आचार्य जी, हम सत्यार प्रकाश की बात कर रही है, महर्षि दयानंद जी का कालजयी ग्रंथ माना जाता है, क्यों?
3: आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। कालजयी का मतलब है काल से परे जो ग्रंथ है, उसके लिए भूत, वर्तमान और भविष्यत कुछ भी नहीं है। काल का मतलब है समय, वो पहले भी था प्रासंगिक, अब भी है और आगे भी रहेगा। स्वामी जी ने इतनी मेहनत की है, सारे ग्रंथों को उन्होंने पढ़ा है, लगभग 3-4 हज़ार ग्रंथों को उन्होंने देखा है, उसमें से जो सार सार था, जो सत्य बात थी, उस सत्य बात को स्वामी जी ने रखा, और वो भी सृष्टि के अनुकूल लॉजिक, तर्क दिया है स्वामी जी ने। जैसे 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं, 3 और 2 मिलकर 5 होते हैं, तो अपनी बात उन्होंने कोई बात नहीं कही, जो हमारे ऋषियों ने पहली बातें कही है और जो वेद के अनुकूल है, सृष्टि के अनुकूल है, उन बातों को स्वामी जी ने रखने का भरसक प्रयत्न किया है। उन्होंने जो भी बातें लिखी है उसमें सारे ग्रंथों के प्रमाण दिए हैं
2: जी।
3: वो कहते मेरा अपना कुछ नहीं है, अपितु ब्रह्मा से लेकर जैमिनी ऋषि पर्यंत, एक जो ऋषियों की परंपरा है, उन ऋषियों ने जो सत्य बातें बताई है, उन बातों का जिक्र मैं सत्यार्थ प्रकाश में करता हूँ। स्वामी जी का ये मानना है कि मैं

0: स्वयं सत्य को ग्रहण करता हूँ, असत्य को छोड़ता हूँ। और मेरा ये मानना है कि सत्य को मानना और मनवाना, असत्य को छोड़ना और छोड़वाना, ये स्वामी जी कहते हैं मेरा अभीष्ट है। और इसीलिए ये कालजयी ग्रंथ है, क्योंकि ये सारे देशों में एप्लीकेबल होता है। इसमें किसी धर्म की आलोचना नहीं, इसमें किसी असत्य वाली बात नहीं बताई है स्वामी जी ने। स्वामी जी ने जो भी बात कही है वो बिल्कुल दार्शनिक धरातल पर कही है
1: जी।
0: जैसे मैं आपको यदि कहूँ ट्रिनिटी का सिद्धांत है, ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये एक बहुत बड़ा महर्षि दयानंद का योगदान है। यदि हम इसके बारे में गहराई से चिंतन करें तो स्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या नहीं, ईश्वर है और हम लोग भी हैं, जीव भी हैं और प्रकृति भी है। ये जो त्रैतवाद का सिद्धांत है, मैं समझता हूँ स्वामी दयानंद का बहुत बड़ा एक दार्शनिक चिंतन है। और उन्होंने ये चिंतन अपने आप नहीं प्रस्तुत किया, उन्होंने ये वेद के मंत्र दिए। मैं समझता हूँ ऋग्वेद का एक मंत्र बड़ा प्रसिद्ध है जो दार्शनिक चिंतन प्रस्तुत करता है, और उसको सब लोगों को स्वीकार करना भी चाहिए। जिस मैटर में, प्रकृति में हम रहते हैं, मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड और बी डिस्ट्रॉयड, अर्थात जो मूल अवस्था है संसार की, उसको सारे वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है, हमारे ऋषियों ने भी स्वीकार किया है। इसलिए स्वामी जी सांख्य दर्शन की फिलॉसफी को बताते हुए कहते हैं सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, जिसको आज के वैज्ञानिक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की परिभाषा में लाते हैं, उसी को हमारे ऋषियों ने कहा कि वो सत्व रजस तमस की साम्यावस्था प्रकृति है। उसके अंदर जो विक्षोभ होता है, जो ईक्षण होता है, वो किसके द्वारा होता है? वो ईश्वर के द्वारा होता है। और किसके लिए सृष्टि का उपयोग होता है? तो सारे संसार के जीव मात्र के लिए। इसलिए उन्होंने अनेक दर्शनों का प्रमाण दिया है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्वामी जी ने जो ऋग्वेद का ये मंत्र कोट किया है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिषस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वाद्वत्यनश्नन्यो अभिचाकशीति, इसका मतलब ये है कि एक वृक्ष के ऊपर दो पक्षी बैठे हुए हैं। एक पक्षी जो है वो फल खा रहा है, दूसरा पक्षी केवल देख रहा है। और किसके फल खा रहा है? तो कहते हैं जिस वृक्ष पर बैठा है उस वृक्ष के फल खा रहा है। तो जो नहीं चखने वाला है वो कौन है? वो ईश्वर है। इसलिए कहते हैं द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। ये स्वामी जी ने मंत्र कोट किया है, ऋग्वेद के प्रथम मंडल का ये मंत्र है। और बड़ा ही दार्शनिक चिंतन इस मंत्र के अंदर किया गया है। दो पक्षी कैसे बैठे हैं? तो अलंकार के माध्यम से बताया उन्होंने कि वो साथ साथ रहने वाले हैं, सुपर्णा अच्छे पंख जिनके हैं, और सयुजा दो साथ में रहने वाले, सखाया दोनों भिन्न, दोनों मित्र हैं, फास्ट फ्रेंड जिसको हम कहते हैं। और कहते हैं वो एक ही वृक्ष के ऊपर दोनों बैठे हुए हैं, वो दोनों पक्षी कौन से हैं? तो स्वामी जी कहते हैं एक ईश्वर है और दूसरा जीव है। ईश्वर एक है, सच्चिदानंद स्वरूप, कॉन्शसनेस, चेतना हम जिसको कहते हैं। और स्वामी जी ने ये प्रमाण दिया कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, गॉड इज ओनली वन, वी कॉल हिम बाई डिफरेंट नेम्स सच एज अग्नि, यम, मातरिश्वा। तो स्वामी जी का ये मंतव्य है, ये त्रैतवाद का जो सिद्धांत है कि वो दो पक्षी, एक ईश्वर है और एक जीवात्मा है। तो जीवात्मा तो संख्या में असंख्य है, पता नहीं इस दुनिया में कितने लोग होंगे, जीव जंतु पशु पक्षी, और ईश्वर तो केवल एक है। तो ये अलंकार के माध्यम से, और इस मंत्र का उदाहरण सारे दुनिया के लोगों ने किया, जितने वैज्ञानिक लोग हैं वो भी ये मानते हैं कि हाँ कोई ना कोई ताकत है, कोई ना कोई शक्ति है जो इस पूरे यूनिवर्स को बनाने वाली है। तो स्वामी जी ने ये जो अनेक मंत्र कोट किए हैं और उन मंत्रों के माध्यम से जो सत्य अर्थ है उसका उन्होंने प्रकाश करने का भरसक प्रयत्न किया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो ग्रंथ है वो रीत नियमों के आधार पर है, इसको दुनिया का कोई भी व्यक्ति काट नहीं सकता है। जो जो दुनिया में सत्य नियम है, ट्रुथ है, उसको कोई झुटला नहीं सकता है
1: जी।
0: अब इसी जैसे थ्योरी को यदि मैं कहूँ कि ये त्रैतवाद का सिद्धांत कितना गजब का सिद्धांत है, ईश्वर के बारे में, जीव के बारे में, प्रकृति मैटर के बारे में जितना गंभीर विवेचन, जितना दार्शनिक विवेचन महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समुल्लास में, 8वें समुल्लास में और 9वें समुल्लास में किया है, वो मैं समझता हूँ ये काल से परे हैं, अर्थात हम इसको सारे कालों में लागू कर सकते हैं।

0: क्या हमारे जीवन का पर्पज है, क्या हमारे जीवन का लक्ष्य है, क्या हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। यदि मैं मुक्ति की बात करूं, साल्वेशन की बात करूं, तो दुनिया का ऐसा कौन सा संप्रदाय है, कोई उसको स्वर्ग कहता है, कोई उसको और कुछ नाम देता है, लेकिन स्वामी जी ने ये कहा कि स्वर्ग क्या है, मुक्ति क्या है, और उसका इतना बढ़िया विवेचन सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में किया है, वो देखते ही बनता है कि हमारे सारे जीवों का पर्पज, मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो क्या है। तो स्वामी जी ने कहा, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धिर भवेन्ना।
1: जी, बहुत अच्छे तरीके से आप समझा रहे हैं आचार्य जी।
0: जी,
1: और श्रोताओं, आप इस समय मंगलाचरण कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। जब सत्यार्थ प्रकाश के बारे में हम सोचते हैं, बात करते हैं, तो उसका उद्देश्य, स्वामी दयानंद का उद्देश्य लोगों को वेदों की ओर लौटने के लिए प्रेरित करना था। उनका मानना था कि वेद ही सच्चे ज्ञान का स्रोत है, और समाज में फैली जैसे अंधविश्वास, जो कुरीतियाँ हैं, जो पाखंड हैं, उनको दूर करना आवश्यक है। तो कृपया आप हमें बताएं कि महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में बच्चों के निर्माण पर क्या क्या बताई है बातें।
0: आपने जो प्रश्न किया है बहुत अच्छा किया है, समसामयिक है प्रश्न
1: जी,
0: कि आज के बच्चों के लिए स्वामी जी ने क्या लिखा है, युवाओं के लिए, युवतियों के लिए। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, स्वामी जी ने एक चैप्टर ही सत्यार्थ प्रकाश का दिया है, दूसरा समोल्लास, उसमें बच्चों को कैसे व्यवहार करना है, अपने माता पिता के साथ कैसे व्यवहार करना है, माता पिता को बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करना है। और इसलिए उन्होंने एक शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का वचन दिया है, बड़ा प्यारा वचन दिया है, और उसी की उन्होंने व्याख्या की है उसके अंदर, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। दुनिया में सौभाग्यशाली बच्चे कौन से हैं, बेटे हों, बेटियां हों, पुत्र पुत्रियां, तो कहते हैं जिनके माता पिता आचार्य संस्कारवान हैं, पढ़े लिखे हों, पढ़े लिखे तो सारे हैं, लेकिन स्वामी जी ये कहते हैं प्रशस्ता धार्मिकी माता विद्यते यस्य स मातृमान। ये जो शब्द उन्होंने जोड़ा वो उनकी अपनी व्याख्या है कि जो धार्मिक है, प्रशस्त है, श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभाव वाली है, ऐसे ही पिता भी स्कॉलर तो हैं, विद्वान तो हैं, पढ़े लिखे तो सब हैं, लेकिन स्वामी जी कहते हैं उसके साथ यदि धार्मिकता हो तो वो सोने में सुहागा है। और आचार्य भी बाई चांस बहुत अच्छे किसी को मिल गए तो समझ लेना बच्चे बड़े सौभाग्यशाली है। एक बात हमको और ध्यान रखना चाहिए कि स्वामी जी ने ये नहीं कहा कि जो बच्चे बहुत धनाढ्य घर में पैदा होते हैं वो बड़े सौभाग्यशाली हैं। तो कहते हैं धार्मिकता जरूरी है, इसलिए हमारे यहाँ पर स्वामी जी ने इसमें एक लास्ट में जो श्लोक दिया है, कहते हैं वो माता पिता अपने बच्चों के शत्रु हैं, वैरी हैं, जिन माता पिताओं ने अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं। तो हमने पूछा स्वामी जी पढ़ाते तो सभी हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो स्वामी जी कहते हैं कि जिन माता पिताओं ने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए, यदि हम बचपन में ही, हमारे मनोवैज्ञानिक आज के ये कहते हैं कि बचपन में 7 साल तक जो संस्कार आप दे दोगे, नमस्ते करना सिखा दोगे, है ना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सिखा दोगे, तो वो संस्कार कभी मिटते नहीं हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। इसलिए हमारे जितने भी शिक्षा ग्रंथ हैं वो यही कहते हैं कि भाई माता का, पिता का, आचार्य का सम्मान करो यदि जीवन में आगे बढ़ना है, आयु प्राप्त करना, विद्या यश बल की प्राप्ति करना है। तो प्रत्येक विद्यार्थी को ये चाहिए कि वो अपने बुजुर्गों का, अपने माता पिता का, गुरुजनों का सम्मान करें। तो स्वामी जी ने इसके अंदर डिटेल में सारी बात कही, और उनका मानना ये था कि आचार्य जो टीचर होते हैं पढ़ाने वाले, वो पहला गुरु नहीं है। स्वामी जी ने ये कहा कि सबसे पहले मानव के निर्माण में गुरु यदि कोई है तो माँ ही है
1: जी,
0: मदर है, और दूसरे फिर पिता है, तीसरा नंबर आचार्य का दिया है
1: जी।
0: तो ये भूल हमको नहीं करनी चाहिए कि स्कूल में हमारा बेटा जाएगा तभी वो स्कॉलर बनेगा, तभी विद्यावान बनेगा वो। हाँ, विद्यावान बन सकता है, पढ़ा लिखा हो सकता है, परंतु जो संस्कार हैं
1: वो
0: संस्कार
1: वो,
0: हाँ, जब तक वो, और संस्कार कहाँ से शुरू होते हैं, माता के गोद से शुरू होते हैं। माँ जैसे अपने बच्चे को बनाना चाहे वैसे बना सकती है। तो इसलिए स्वामी जी ने बहुत ही समोल्लास में बड़े विशेष संदर्भों को देते हुए बहुत अच्छी बातें लिखी स्वामी जी ने इसके अंदर। और मैं अपने सारे युवाओं को ये भी कहना चाहता हूँ, भाई कम से कम आप ज़्यादा नहीं पढ़ सको तो सेकंड चैप्टर जो दूसरा समोल्लास है उसको तो पढ़ने का जरूर जरूर प्रयास करना चाहिए सब लोगों को, श्रोताओं को।
1: तो आचार्य जी, अगर बात ही कर रही है युवाओं की, तो अभी हमें जैसे कहते हैं ज़माना बदल गया है
0: जी, जी।
1: तो वर्तमान के इस वैज्ञानिक और विकसित युग में क्या सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना आवश्यक है?
0: बहुत

0: अच्छा प्रश्न किया, वैज्ञानिक युग है और बच्चे जो हैं अपने लॉजिक बुद्धि से समझते हैं, तो स्वामी जी का तो ये मानना था। स्वामी जी कहते हैं मैं अपनी बात कुछ भी नहीं कहता हूँ, यस तर्केण अनुसंधत्ते स धर्मम वेद नेतर, जो लॉजिक तर्क की कसौटी पर कसकर खड़ा होता है उसी को मैं धर्म मानता हूँ
1: जी,
0: मैं किसी भी बात को धर्म नहीं मानता। स्वामी जी कहते हैं जैसे दो और दो मिलकर चार होते हैं, तीन और दो मिलकर पांच होते हैं, तो स्वामी जी कहते हैं मैं ये सारी बात कहता हूँ, ये इसलिए मत मानो स्वामी जी कहते हैं कि मैं कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मेरी अपनी कोई बात नहीं है। अभी मैंने पहले आपको बताया था उनका ये कहना है, वो तो कहते हैं सृष्टि के आदि ब्रह्मा से लेकर के और अभी तक जितने ऋषि महर्षि हुए उनकी जो अच्छी बातें हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। स्वामी जी कहते हैं इसलिए आप जो भी बात करो वो विज्ञान के आधार पर करो, और स्वामी जी की एक एक बात विज्ञान के आधार पर सटीक उतरती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो हैं जितने हमारे श्रोता भाई हैं वो सत्यात प्रकाश जब पढ़ेंगे तो उनको नई नई चीज़ें मिलेगी
1: जी,
0: जो पहले भी थी अब भी हैं और आगे भी रहेगी। उसके अंदर साइंस है, उसके अंदर जीवन जीव विज्ञान है, उसके अंदर भौतिकी शास्त्र है, सृष्टि विद्या कॉस्मोलॉजी क्या नहीं है उसके अंदर, गणित है, सारे विषय उसके अंदर स्वामी जी ने दिए हैं। और खास करके विद्या और अविद्या का जो विस्तार से वर्णन किया है तो वो बिल्कुल सटीक है। विद्या कितने प्रकार की होती है, इग्नोरेंस अज्ञान कितने प्रकार का होता है, वो सारी बात उन्होंने ऋषियों के ग्रंथों के आधार पर की है।
1: जी रामधनी जी,
2: आचार्य जी से बस कुछ खुलासा चाहेंगे। आचार्य जी, जिस तरह अभी वर्तमान में हम देखते हैं
0: जी
2: कि पढ़े लिखे लोगों का दर जो है का बहुत ऊंचा है, बहुत सब लोग पढ़े लिखे हैं
0: जी,
2: और वैज्ञानिक विज्ञान की ओर इस तरह दौड़ जो पड़ी हुई है
0: जी,
2: तो इस पढ़े लिखे लोगों के बीच में भी आज हम महसूस करते हैं कि अंधविश्वास अंध परंपरा एकदम फैले हुए हैं, अभी भी वो बादल छाए हुए हैं
0: जी,
2: कैसे इसको समझाएंगे और क्या ये एक विडंबना जो है और कैसे दूर करेंगे?
0: हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि आज बहुत तरह जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके अंदर भी अंधविश्वास है, उनकी भी ये मान्यता है कि क्या वेदों में ये सब बातें लिखी है, क्या भूत प्रेत है, अंधविश्वास है, झूठ बोलना है या और जितने भी गलत काम हैं। तो स्वामी जी ने ये कहा कि नहीं, स्वामी जी ये बिल्कुल कहना चाहते हैं कि युवाओं के लिए भी कि जो भाई सत्य बात है वो सब स्वीकार करो। स्वामी जी ने जितने भी समुल्लास लिखे हैं इस सत्यार्थ प्रकाश के अंदर, वो खास करके मैं समझता हूँ युवाओं को तो ज़रूर पढ़ना चाहिए जितने भी समुल्लास स्वामी जी ने लिखे हैं। और हमारे जीवन का पर्पज क्या है, जैसे हम जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में चार आश्रम माने गए हैं, अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो आजकल वानप्रस्थ और संन्यास तो कोई नहीं लेता, लेकिन ब्रह्मचर्य और गृहस्थ तो सबका है। तो ब्रह्मचारी माने विद्यार्थी को, स्टूडेंट्स को कैसा होना चाहिए, और गृहस्थ में यदि हम प्रवेश कर रहे हैं तो हमारा वहाँ पर क्या लक्ष्य और क्या उद्देश्य होना चाहिए।
1: तो यहाँ पर आचार्य जी आप कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स कैसे होने चाहिए, लेकिन अभी बात इस युग की हो रही है तो शिक्षक को कैसे होने चाहिए?
0: हाँ, ये बात तो आपने बहुत ही बढ़िया कही,
2: बहुत बढ़िया है।
0: शिक्षक को तो स्वामी जी ने आचार्य कहा है
1: जी,
0: देखिए, और आचार्य शब्द जो है शिक्षक के लिए बहुत पुराना है। मैं तो समझता हूँ वेद से लेकर के, वेद में भी ये आता है कि टीचर के लिए, शिक्षक के लिए, गुरु के लिए वेद में आचार्य शब्द का प्रयोग किया है
1: जी।
0: और मैं आपको क्या बताऊं, इतनी महत्ता उसकी गाई है कि एक सूक्त आता है वेद में, उसमें ये मंत्र आता, आचार्य उपनय मानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भ मंत्र। जो आचार्य टीचर है उसकी कितना बड़ा उसका इम्पोर्टेंस है, कितनी बड़ी उसकी महत्ता है, मानो वो अपने स्टूडेंट्स को अपने गर्भ में रखता है।
1: तो आजकल ऐसा जमाना है, ऐसा जीवन चल रहा है कि हर कोई अपने आप को आचार्य मानता है।
0: जी जी हाँ, ये भी बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जो पढ़ाने वाले हैं, जो टीचर शब्द का प्रयोग करते हैं, गुरु शब्द का प्रयोग हम करते हैं, उनको हम आचार्य इसलिए कहते हैं। स्वामी जी ने किसी ग्रंथ की परिभाषा दी, बड़ी सुंदर दी है कि आचार्य हर कोई नहीं हो सकता
1: जी।
0: आचार्य अकस्मात, आचार्य को आचार्य क्यों कहते हैं, टीचर को टीचर क्यों कहते हैं, गुरु को गुरु क्यों कहते हैं? तो कहते हैं, उसकी पहली डेफिनेशन उन्होंने दी है, आचारम ग्राहयति, जो कैरेक्टर बिल्डिंग को सबसे ज़्यादा महत्व देता है। वो नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे जो है झूठ बोलें, मेरे बच्चे कोई गलत काम करें, मेरे बच्चे जो है वो असत्य की तरफ जाएं। हर टीचर का ये एक नियम होना चाहिए कि जो विद्या

या आप पढ़ा रहे हैं, गणित पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, उसके साथ साथ उसके पूरे कैरेक्टर का उसका डेवलपमेंट करना है। उसके वाणी में यदि कोई दोष है, उसके शरीर में यदि कोई दोष है, तो मतलब आचार्य तो उसको अपने गर्भ में 3 रात तक रखता है। वेद में ये लिखा है, 3 रात तक रखने का मतलब यह है कि जब तक वो ज्ञानवान नहीं बनता, जब तक वो

0: विद्या देना भी आचार्य का, गुरु का काम है, और इसीलिए बच्चों का निर्माण करने के साथ साथ आचार्य की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है।
1: तो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं रामधनी जी की, हाँ। जो हमारे सबसे पहले आचार्य हमारे माता पिता है।
2: मैं यही कहने जा रहा था, आचार्य जी इस पर स्पष्ट करते
0: जी,
2: आज तो गुरुकुल की परंपरा नहीं है जैसे मॉरिशस में, बिल्कुल नहीं है
0: जी, जी,
2: ये जिम्मेदारी घर के लोगों पर, माता पिता दादा दादी इन पर।
0: हाँ जी जी जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने।
2: क्या वे अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, क्योंकि बच्चे गुमराह होते चले जा रहे हैं।
0: हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, गुरुकुल परंपरा तो अब भारत में भी बहुत कम बची है, बहुत थोड़े से गुरुकुल होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि जितने भी गवर्नमेंट्स हैं, सरकारें हैं, चाहे देश में हो विदेश में हो, उनका पर्पस तो यही है ना, जो विद्यालय है मैं तो उसी को गुरुकुल समझता हूँ, और वहाँ जो पढ़ाने वाले हैं वो आचार्य लोग हैं। पर उससे पहले स्वामी दयानंद ये कहते हैं आचार्य को तो तीसरी जगह रखा है, पहले तो माँ को रखा है, दूसरे पिता को रखा है, और तीसरे आचार्य को रखा है। तो स्वामी जी बार बार लिखते हैं कि जो माँ है वो गर्भावस्था से ही बच्चों को ऐसी बढ़िया शिक्षा दे, अच्छा जिस भी भाषा के वर्ण का उच्चारण कैसे होता है वो शिक्षा दे माँ। दूसरे विदेशी भाषाओं की स्वामी जी ने आलोचना नहीं की, कहते हैं कि माँ का कर्तव्य है कि अपनी भाषा तो जरूर सिखाएं, साथ साथ दूसरी भाषाओं का भी जान अक्षर अभ्यास माता स्वयं कराएं, मतलब माता को भी इतना पढ़ा हुआ होना चाहिए। इसलिए स्वामी दयानंद ने स्त्रियों के पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा जोर दिया है। तो मैं कहता हूँ पहला स्थान तो स्वामी जी ने माँ को ही दिया है, दूसरा पिता को दिया, और तीसरी जिम्मेवारी अब आचार्य की आती है।
2: आचार्य जी, जब महिला के बारे में आप बात कर रहे हैं
0: जी,
2: तो हम जानते हैं कि इस आधुनिक युग में
0: जी,
2: मॉडर्न एज में,
0: हाँ जी,
2: महर्षि दयानंद सरस्वती ने महिलाओं के लिए जितना उपकार किया, उद्धार किया,
0: जी,
2: शायद किसी ने किया होगा
0: जी जी,
2: इस पर आप क्या?
0: हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। स्वामी जी ने महिलाओं को पुरुषों के बराबर ही स्थान दिया, मैं तो कहता हूँ ज्यादा स्थान दिया है। देखिए ना, हर जगह कहीं ना कहीं एक पंक्ति महिलाओं के बारे में स्वामी जी ने जरूर दी है। सत्यात प्रकाश के चौथे समोल्लास में देखेंगे तो उन्होंने महर्षि मनु को कोट किया और बहुत सुंदर बात कही कि जिन परिवारों में, जिस राष्ट्र में, जिस देश के अंदर महिलाओं को प्रथम दर्जा दिया जाता है, उस घर में, उस परिवार में, उस राष्ट्र में सब प्रकार का कल्याण होता है। और स्वामी जी ने उसमें श्लोक दिया है महर्षि मनु का, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वा तत्रा फलाक्रिया, कि जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ पर सारे देवताओं का मानव वास होता है, और जहाँ इनको परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है दहेज के कारण और लोभ के कारण, तो कहते हैं सब कुछ कर लो लेकिन सारी क्रियाएं वहाँ पर निष्फल हो जाती है। इसलिए स्वामी जी ने तो ये कहा, यथे माम वाचम कल्याणीम आवदानी जनेभ्य। लोगों ने पूछा कि क्या स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार है, तो स्वामी जी कहते क्यों नहीं, जैसे सूरज का प्रकाश सबके लिए है, वहाँ कोई भेदभाव नहीं, कोई भी हो, विश्व का कोई भी आदमी हो, किसी भी संप्रदाय का हो, तो स्वामी जी कहते हैं फिर महिलाओं को क्यों नहीं पढ़ने का स्थान देना चाहिए। तो मैं तो कहता हूँ स्वामी दयानंद एक ऐसे समाज सुधारक हुए हैं स्त्रियों के कल्याण के लिए, उन्होंने जितनी बातें कही है, चाहे आप संस्कार विधि देखो, चाहे आप सत्यार्थ प्रकाश देखो, जगह जगह सत्यार्थ प्रकाश का चौथा समोल्लास तो महिलाओं के लिए दिया है, तीसरा समोल्लास में भी बहुत ज़्यादा बातें आई हैं, तो उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट दिया। और मैं तो कहता हूँ भारतीय समाज जो है उसमें जो अब महिलाओं के प्रति गुरुकुलों में शिक्षा कर रही है अपनी हमारी देवियाँ बेटियाँ, तो ये सब स्वामी जी का बहुत बड़ा उपकार पूरे आर्य जाति पर, पूरे सनातन आर्य संस्कृति के ऊपर महर्षि दयानंद का बहुत बहुत, उनका बहुत बहुत हम जितना धन्यवाद कर सकें माताएँ बहनें उतना कम है।
2: मैं एक बात यहाँ संकेत करना चाहूँगा
0: जी,
2: पिछले नवंबर में दिल्ली में बहुत ही विशाल सम्मेलन,
0: आर्य
2: महासम्मेलन लगा हुआ था
0: जी जी,
2: आर्य समाज के 150 वर्ष के अवसर पर, आचार्य जी भी वहाँ पर थे।
0: हाँ, हाँ, मैं भी था।
2: गुरुकुल से, कन्या गुरुकुल से इतने वो ब्रह्मचारिणी लोग आए और मंत्र पाठ वेदों का जिस तरह उन्होंने किया,
0: हाँ जी हाँ जी,
2: तो देखकर महर्षि दयानंद के सामने एकदम नमन करना
0: बिल्कुल बिल्कुल
2: कर्तव्य बनता है।
0: बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है। वहाँ पर जितने भी हमारी गुरुकुल की ब्रह्मचारिणियाँ आई थी उन्होंने इतना सस्वर वेद पाठ किया, आप तो प्रत्यक्ष प्रमाण थे उसके अंदर, तो ऐसा लगता है कि मानो ऋषियों का युग लौट करके आया है अब। तो ये सब स्वामी दयानंद के कारण ही संभव। उन्होंने जैसे बच्चों के लिए ब्रह्मचारियों के लिए गुरुकुल खुलवाने का एक

0: प्रयास करवाया। ऐसे ही ब्रह्मचारिणी माने लड़कियों को पढ़ने के लिए, आज भारत के अंदर बहुत सारी ऐसी ब्रह्मचारिणियां हैं जो सस्वर वेद का पाठ करती है
1: जी,
0: और उनके वेद पाठ को सुनकर आपको ऐसा लगता है जैसे वेदों की जितनी भी ऋषिकाएं हुई हैं, गार्गी है, सावित्री है, जब ये सारी ऐसा लगता है कि अब उतर करके आ गई हो यहाँ पर। मतलब इतना जोर दिया स्वामी जी ने महिलाओं की शिक्षा के लिए कि प्राचीन शिक्षा के साथ साथ उनको आधुनिक शिक्षा भी महिलाओं को देना चाहिए, और उनको ब्रह्मचारिणी शब्द का प्रयोग स्वामी जी ने किया है। आज भी भारत के अंदर महिलाओं के लिए, ब्रह्मचारिणियों के लिए अनेक गुरुकुल है जहाँ पर भौतिक विद्या के साथ साथ प्राचीन विद्या हमारी महिलाएं बहनें पढ़ रही हैं, कर रही हैं काम
1: जी। यहाँ पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगी रामधनी जी, क्योंकि हम बात कर रहे थे पहले बैठकाएँ हुआ करती थी, हम लोग जाकर पढ़ते थे, आजकल जैसे कह रहे हम भौतिकता की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, तो आर्य सभा मॉरिशस की ओर से कुछ, जैसे हम गुरुकुल की बात कर रही हैं, जो कन्याएँ हैं, लड़के लड़कियाँ जितने भी हमारे शिष्य हैं, जो हमारे विद्यार्थीगण हैं, उनके लिए क्या किया जा रहा है?
2: नितुषा जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस पर स्पष्टीकरण देने के लिए, आर्य सभा वह संस्था है मॉरिशस में जो अभी भी इस कठिन परिस्थिति क्यों मैं कह रहा हूँ कि एक दौड़ है, कंपटीशन, लोग अपने बच्चों को ट्यूशन भेजना, ये करना वो करना। हमारे समय में हम पाँचों दिन पाठशाला 3 बजे समाप्त होते थे, तो उसके बाद 4 बजे हम बैठका में होते थे
1: जी।
2: अब तो नहीं, अब वो एनहांसमेंट प्रोग्राम जब से आया तो इन सब में एक इम्बैलेंस हो गया। तो फिर भी आर्य सभा प्रयत्न कर रही है, हमारे 170 सायंकालिक पाठशालाएँ चलती है, तो इन पाठशालाओं में कुछ ऐसे अभी भी सचेत परिवार लोग हैं जो अपने बच्चों को भेजते हैं, जहाँ पर हिंदी मंत्र पाठ, संध्या, ये सब सीखते हैं। और अभी अभी कुछ दिनों से हम उसमें संस्कृत और भोजपुरी ये भी जोड़ दिए हैं, क्योंकि जब वो बच्चे आते हैं तो दोनों इन सब पर भी हम जोर लगाते हैं
1: जी। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो संस्कृति, हमारी भाषा, हमारी जो परंपराएं हैं, उनको जीवित रखना बहुत ही ज़रूरी है ना?
2: एकदम एकदम। अब इसको एक अच्छे स्तर देने के लिए, आप जानते हैं पाई में हमारा ODI है, ऋषि दयानंद इंस्टीट्यूट, वहाँ पर डिप्लोमा और डिग्री लेवल पर तक ये वैदिक फिलोसफी पर और अन्य विषयों पर, धार्मिक विषयों पर वहाँ पाठ दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ ही इतना ही तक सीमित नहीं, अब जब जब हमारे भारत से बड़े बड़े विद्वान आते हैं, जैसे अभी आचार्य जी हैं, हर शनिवार को ODI में वहाँ पर प्रशिक्षण देते हैं।
1: अच्छा।
2: हमारे पुरोहित पुरोहिताएँ और जो जिज्ञासु लोग हैं आते हैं, प्रश्नोत्तर करते हैं और अपने ज्ञान को और अधिक विकसित करते हैं। तो इस तरह हमारा प्रयत्न है और भविष्य में हम प्रयत्न कर रहे हैं कि यदि मॉरिशस में हमारे अपने परिप्रेक्ष्य में, भारत की तरह तो नहीं कर सकते, भारत में लोग अपने बच्चे को मतलब कि दान कर देते हैं धर्म के लिए, आकर धर्म ही सीखते हैं, यहाँ इस तरह हमने प्रयत्न किया, वो सफल नहीं हुआ, लेकिन अब हम प्रयत्न कर रहे हैं कि मॉरिशस के परिप्रेक्ष्य में गुरुकुल हम खोलेंगे और बहुत जल्द ही, और इस तरह एक पायलट प्रोजेक्ट लेकर हम आगे बढ़ेंगे और इसको तब फिर सर्वत्र फैलाएंगे।
1: आपके देखने से क्या हमारी जो विद्यालय हैं वहाँ से शुरुआत हो सकती है?
2: वहाँ पर हमारी, आप तो जानते हैं, विद्यालय जो है मॉरिशस में, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, तो वहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जो पद्धति है उसके खिलाफ जा नहीं सकते। कोई विषय आप लेकर पढ़ाएंगे तो वो बोलेंगे कि ये रिलीजियस है, वो भी आएगा अपने रिलीजन लेकर, वो लेकर आएगा, तो सिर्फ भाषा सिखाते हैं, साहित्य सिखाते हैं, तो वहाँ पर ये रुकावटें हैं। तो इसलिए आर्य सभा प्रयत्न करती है कि वो बाहर अपनी पाठशालाओं में इसको आगे ले चलने का प्रयत्न करें
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद

0: सत्यार्थ प्रकाश।
1: आचार्य जी,
2: जी
1: आज जहां भौतिकवाद बढ़ रहा है, फिर भी संपन्नता के होते हुए भी परिवारों में समस्याएं अधिक बढ़ती जा रही है, इस पर सत्यार्थ प्रकाश का क्या मार्गदर्शन है?
2: बहुत अच्छा। आधुनिक युग में भौतिकता निश्चित रूप से बढ़ रही है, लोगों के पास अथाह साधन हो गए, संपत्ति आ गई है, पर हमारे स्वामी दयानंद ने इसके लिए ये कहा कि देखो, दुनिया में दो मार्ग हैं, और यदि उनका नाम स्वामी जी ने दिया श्रेय और प्रेय मार्ग। ये उपनिषदों में भी चर्चा आती है कि प्रेय मार्ग बहुत आकर्षण लगता है, उसके अंदर कोई अच्छी चीज़ है तो तुरंत हमारे युवा युवक सब लोग उसी की तरफ भागते हैं, पर स्वामी जी कहते हैं इससे तुम्हें क्षणिक सुख तो मिल सकता है
1: जी,
2: लेकिन तुम ये चाहो कि मेरे जीवन में शांति हो, मेरे जीवन में आनंद हो, मेरे जीवन में पीस हो, प्रॉस्पेरिटी हो, तो उसके लिए क्या करना है? तो स्वामी जी कहते हैं उसके लिए दूसरा जो मार्ग है वो श्रेय का मार्ग है
1: जी,
2: अर्थात कल्याण का मार्ग है। तो स्पिरिचुअलिटी को भी जीवन में अपनाना बहुत ज़रूरी है। मटेरियलिज्म तो ठीक है, भौतिकवाद तो बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा, और हर समय था ये, ऐसा नहीं है कि भौतिकवाद अभी बढ़ रहा है। क्या महाभारत के समय में हमारे यहाँ बड़े बड़े शस्त्र अस्त्र नहीं थे? सब थे। रामायण काल में क्या नहीं थे? सारे समय में, और आज के युग में भी है। तो मेरा मानना ये है कि स्वामी जी ये कहते हैं कि

0: जीवन को दो तरह से जीवो, एक श्रेय की तरफ से, दूसरा प्रेय। दोनों जरूरी हैं। प्रेय का मतलब है जीवन को जीने के लिए भौतिक साधन तो आवश्यक हैं, धन भी चाहिए, संपत्ति भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, पर उसी को हम सर्वस्व समझ करके ना बैठें। हमारे जीवन का कुछ और भी पर्पज है, हमें अध्यात्म अपनी तरफ भी, कभी योग भी करना चाहिए, कभी मेडिटेशन भी करना चाहिए। ये सब हमको वो भौतिकता के सुख को और आगे बढ़ा सकता है। ये नहीं है कि केवल पैसा पैसा, तो उसके साथ साथ में स्वामी जी का ये मानना है कि दोनों विधाओं को अपनाओ जीवन में, भौतिकता भी साथ में हो लेकिन उसके साथ साथ आध्यात्मिकता को हमें नहीं भूलना चाहिए।
1: जी रामधनी जी, आप हमें बताएं कि मॉरिशस में आर्य सभा मॉरिशस द्वारा सत्यार्थ प्रकाश मास के चलते कौन कौन सी गतिविधियाँ आयोजित की गई हैं?
2: धन्यवाद। हमारे लिए बड़े ये सुअवसर होता है
1: जी,
2: हमारे लिए एक सुअवसर होता है जून महीना
1: जी।
2: और इस महीने में हम पूरे मॉरिशस में जैसे एक क्रांति जैसी मचा देते हैं, सर्वत्र हर समाज में सत्यार्थ प्रकाश पर प्रवचन होता है। हमारे पंडित पंडिता और आचार्य वृंद जो है वो सर्वत्र सत्यार्थ प्रकाश को लेकर, इनके विभिन्न समुलासों को लेकर वो समझाते हैं
1: जी,
2: सिखाते हैं। और विशेषकर भारत से हर वर्ष हम प्रयत्न करते हैं एक आचार्य आए, और अभी आचार्य जी का टाइम टेबल जो है इतना भर गया है, सर्वत्र वो जा रहे हैं और सर्वत्र उनका बहुत ही महत्वपूर्ण इम्प्रेसिव प्रवचन हो रहा है। तो इस तरह हम प्रयत्न कर रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश का जो संदेश है जन जन तक पहुँचे, इसके साथ ही आपके रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से भी हमारे कितने कार्यक्रम चल रहे हैं। प्रतिदिन लगभग 6:20 पर एक कार्यक्रम चलता है जहाँ पर हमारे पंडित पंडिता लोग आकर अपने किसी विषय को लेकर सुनाते हैं। तो इस तरह हमारा प्रयत्न है और हम आशा करते हैं कि लोग, हम इस पर जोर देते हैं, सभी लोगों से मांग करते हैं कि स्वाध्याय जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे ऋषियों ने कहा कि प्रतिदिन कम से कम धार्मिक ग्रंथ जो है हमें पढ़ना है, और विशेषकर ये जो सत्यार्थ प्रकाश है ये हमारा मार्गदर्शन करता है। तभी आचार्य जी ने एक बात कही कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो सत्य के विरुद्ध, मतलब कि लॉजिक के विरुद्ध में है, हर जो बात है वो लॉजिक के साथ होता है। तो इस तरह की इस ग्रंथ को जब हम प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो हमारा ज्ञान का जो विकास होगा, हमारे देखने की दृष्टि जो है वो एकदम बदल जाएगी
1: जी।
2: एक व्यक्ति को का यहाँ पर मैं चर्चा करना चाहूँगा, महर्षि दयानंद के अनन्य भक्त पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी
1: जी,
2: बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे और आर्य समाज के वे एक बहुत ही अच्छे योद्धा बन गए, प्रचार करते थे। उन्होंने अपने जीवन में, अपने जो बायोग्राफी में लिखा है कि उन्होंने इस पुस्तक को 17 बार आदि उपांत पढ़ा।
1: अच्छा।
2: और कहते हैं कि हर बार जब मैं पढ़ता हूँ तो इसमें से नई नई बातें मुझे और सीखने को मिलती है
1: जी।
2: जब ऐसे विद्वान लोग इतने बार, तो कम से कम हमें प्रयत्न करना है, एक बार तो हमें पढ़ना है।
1: आज तो ये तो मुश्किल की बात है ना,
2: यही मुश्किल है।
1: जी तो आपने बिल्कुल सही कहा है रामधनी जी। अच्छा, हम जब इस पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश की बात कर रहे हैं, इसकी जो विशेषताएं हैं, जो समूलास है, जैसे कि आप लोगों ने कहा 14 समूलास माने कि अध्याय है, और प्रारंभिक अध्यायों में ईश्वर, वेद, शिक्षा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ जीवन और धर्म के सिद्धांतों का वर्णन है, तो आप कृपया इसके बारे में और बताएं।
0: हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। स्वामी जी ने प्रारंभ के 10 समूलासों में लगभग सारे विषय दिए हैं स्वामी जी ने। मैं यदि कहूँ कि पहले समूलास में ईश्वर के नामों की चर्चा, आज ये बहुत बड़ा जनता जनार्दन में मति भ्रम हो रहा है कि भगवान विष्णु भी है, शंकर भी है, लक्ष्मी भी है, सरस्वती भी है, गणेश भी है, रुद्र भी है, विराट भी है, विष्णु भी है, तो क्या ये अलग अलग हैं सारे? तो स्वामी जी का कहना है नहीं, ये एक ही ईश्वर के सारे गुणवाचक नाम है।
1: ईश्वर एक है,
0: ईश्वर एक है, उनके गुण कर्म स्वभाव अनेक होने के कारण से नाम अनेक होते हैं। जैसे मान लीजिए शंकर क्यों कहा, तो कहते हैं प्राणी मात्र का कल्याण करता है। महादेव क्यों कहा कि सबसे बड़ा है वो। रुद्र क्यों कहा, तो सबको न्याय दिलाने वाला है। तो इसलिए पहला समोल्लास देखें,

0: दूसरे समोल्लास में शिक्षा के बारे में इतने विस्तार से स्वामी जी ने वर्णन किया है, तीसरे समोल्लास में अध्ययन अध्यापन, ये टीचिंग कैसे होना चाहिए, मेथड ऑफ टीचिंग, क्या क्या पढ़ाना चाहिए, ये भी स्वामी दयानंद ने इसके अंदर दिया है। भौतिक विद्याएं भी सीखनी चाहिए, उसके साथ साथ जो हमारी प्राचीन विद्याएं हैं उनको भी सीखना चाहिए। ये नहीं है कि प्राचीन जो चीज़ है वो सारी ही बड़ बेकार है या निष्फल, ऐसा नहीं है। स्वामी जी का मानना था कि प्राचीन शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा को भी हमें जरूर अपनाना चाहिए। उसके बाद जब ब्रह्मचर्य जीवन समाप्त होता है तो स्वामी जी ने चौथे समोल्लास में गृहस्थ आश्रम के लिए बातें बताई कि गृहस्थ में किसको जाना चाहिए, कौन गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें। तो स्वामी जी कहते हैं भौतिक विद्या को तो पढ़ो ही पढ़ो, उसके साथ साथ अध्यात्म विद्या को भी जरूर पढ़ करके गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए, ताकि आपको वहाँ आपके कर्तव्यों का बोध हो, पत्नी के क्या कर्तव्य, पति के क्या है, बच्चों के क्या है, ये जो हमारा हमारी ऊपर जिम्मेवारी है इसका रियलाइजेशन, इसका नॉलेज कैसे हो सकता है, ये चतुर्थ समोल्लास में बताया। पाँचवें समोल्लास में स्वामी जी ने फिर ब्रह्मचर्य को ही सर्वस्व नहीं मानना चाहिए, वानप्रस्थ और संन्यास क्या होता है, जीवन के अंतिम पड़ाव में हमें क्या करना चाहिए। और मैं समझता हूँ छठे समोल्लास में तो स्वामी जी ने कमाल कर दिया कि विश्व का की जो शासन प्रणाली है वो कैसे होनी चाहिए पूरे देशों के अंदर, कि उसका राजा कैसा हो, उसका प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कैसे हो, क्या क्या गुण उसके अंदर होने चाहिए, हमारे देश के मंत्री कैसे हों, राजा माने प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो किसी भी देश में, तो वो चुनाव प्रणाली कैसी होनी चाहिए किसी भी देश की, उसके बारे में बड़े विस्तार से उन्होंने वर्णन किया है। इसी तरह से सातवें समोल्लास में ईश्वर और वेद के बारे में, आज जो बहुत बड़ा भ्रम ईश्वर के बारे में चल रहा है, कोई अवतारवाद की बात करता है, कोई कहता है कि भगवान कृष्ण जो है अवतार लेते हैं और थोड़े से छोटे से कंस के वध के लिए, जरासंध के वध के लिए, तो स्वामी जी ने इन सब के खिलाफ आवाज़ उठाई और वो कहते हैं कि जरूरत नहीं है कि कृष्ण को जो है वो अवतार लेने की जरूरत पड़ी है, स्वामी जी ने ईश्वर के सच्चे स्वरूप का बोध कराया उसमें। सपर्यगा शुक्रम कायम अव्रणम स्नाविरम, परमात्मा शरीर से रहित है, वो नस नाड़ियों के बंधन में कभी नहीं आता, वो स्थूल और सूक्ष्म शरीर में कभी नहीं आता है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई आइडियल नहीं है, कोई उसका प्रतिमा नहीं हो सकती। ऐसे ही वेद के बारे में स्वामी जी ने बहुत बड़ा नारा दिया था, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक, जैसे आपने शुरू में ही कहा कि वेद को सर्वोपरि या सर्वोत्तम ज्ञान क्यों कहा, तो स्वामी जी का ये मंतव्य था कि मैं पुरजोर कहता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है, सारे ग्रंथों को पढ़ने के बाद स्वामी जी कहते हैं, उन्होंने एक नियम बना दिया 10 प्रिंसिपल्स, आर्य समाज के जो 10 सिद्धांत हैं उसमें तीसरा नियम दिया, वेद सब सत्य विद्याओं का, जितनी भी दुनिया में सत्य विद्याएँ हैं, असत्य नहीं, झूठ नहीं, सत्य विद्याओं का मूल स्रोत है वेद का पढ़ना पढ़ना और सुनना सुनाना, सब आर्यों का परम धर्म है। तो कितना कमाल किया इसके अंदर। आठवें समोल्लास के अंदर स्वामी जी सृष्टि के बारे में बताते हैं कि ये कॉस्मोलॉजी, ये यूनिवर्स, ब्रह्मांड कैसे बना, कैसे हम इस संसार के अंदर आए, मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या विकासवाद की थ्योरी को मानने वाले थे स्वामी जी, तो कहते हैं नहीं, स्वामी जी ने मैथुनी और अमैथुनी सृष्टि, सृष्टि के आदि में कौन लोग पैदा होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ सृष्टि की उत्पत्ति होती है, ये बड़ी विस्तार से बहुत वेदों के मंत्रों का प्रमाण दे करके बताया। और ऐसे ही नवम समोल्लास में विद्या क्या है, अविद्या क्या है, मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, बंधन क्या होता है जीवन के अंदर, जैसे दुख का बंधन है, सुख का बंधन है, जन्म का बंधन है, मृत्यु का बंधन है, इन बंधनों से हम कैसे उऋण हो सकते हैं ये बताया। 10वें समोल्लास में हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इसकी चर्चा है। और आगे के 4 समोल्लासों में अनेक मत मतांतरों के बारे में स्वामी जी ने विशद समीक्षा की है, विवेचना की है, और कहते हैं कि जो उसमें से अच्छी बातें हैं मैं उसको भी स्वीकार करता हूँ। तो इस तरह से देखा जाए तो सत्यार्थ प्रकाश एक दार्शनिक, एक बहुत जीवन का उपयोगी ग्रंथ है। इसको यदि हम पढ़ते हैं तो सत्य और असत्य का भेद हमको पता चलता है, और मनुष्य जीवन का पर्पज भी यही है कि हम विवेक को जाने, सत्य को जाने, असली ट्रुथ क्या है और जीवन का उद्देश्य क्या है। तो इस ग्रंथ को श्रोताओं जरूर पढ़ना चाहिए, ये मैं आपसे सबसे निवेदन करना चाहता हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। और हमारे जो कार्यक्रम है मंगलाचरण अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, जाते जाते रामधनी जी आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: बस हम यही मांग करेंगे पूरी जनता से कि यह ग्रंथ जो है सत्यार्थ प्रकाश

0: सत्य ज्ञान का मार्गदर्शन करता है और जीवन में हमें पढ़ने का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। और परिवार के लोगों से हम मांग करेंगे कि इसमें जो सत्य ज्ञान है अपने बच्चों अपने परिवार के लोगों में इसको स्थापित करने का पूर्ण प्रयत्न करें, इससे सबका कल्याण होगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, आज का यह मंगलाचरण कार्यक्रम समाप्त हो चला जो आर्य सभा मॉरिशस द्वारा प्रस्तुत किया गया। कोटि कोटि धन्यवाद आचार्य डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार शास्त्री जी जो दिल्ली से आए हैं, आपको भी श्रीमान हरिदेव रामधनी जी, साथ ही मंत्री वेद प्रचार समिति और पंडित श्याम देवू जी, और कोटि कोटि धन्यवाद आपको भी अंजू। तो बस चलते चलते महर्षि दयानंद सरस्वती जी का प्रसिद्ध संदेश था, कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, अर्थात पूरे विश्व को श्रेष्ठ और उन्नत बनाओ। सत्यार प्रकाश मास की आप सबको हार्दिक अभिवादन है, बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज का यह मंगलाचरण कार्यक्रम समाप्त हो चला। नीतूषा की ओर से प्रणाम, शुभ दिन।
2: शुभ दिन।
0: धन्यवाद।
2: धन्यवाद।

0: बार फिर से संक्षिप्त समाचार अभी उदय के साथ। नमस्कार आपको।
1: नमस्कार मनीषमा, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ। जनरल लिंक्स की तरफ से अनुष्का वरासोमी ने बजट 2026-2027 पर अपनी संतुष्टि जताई। उनका मानना है कि महिला के कल्याण में अपनी में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए और खासकर आबादी में वृद्धजनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मैटरनिटी लीव की अवधि को बढ़ाया गया है और महिलाओं को आसानी से लोन मिलने की सुविधाओं और अलग अलग क्षेत्रों में उनकी भागीदारी को बढ़ाने वाली पहलों की भी सराहना करती है।

0: 21 जून को पूरी दुनिया में संगीत दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन उन लोगों को समर्पित है जो हर रोज संगीत को अपनी जिंदगी बनाकर जीते हैं। देश की सांस्कृतिक समृद्धि में अपना योगदान देने की दिशा में आज गायकों, संगीतकारों, कंपोजर्स तथा स्टेज कलाकारों का सम्मान किया जा रहा है। और इस संगीत दिवस के मौके पर कलाकारों के पास खुशी होने की एक और बड़ी वजह है, क्योंकि बजट 2026-2027 में सांस्कृतिक क्षेत्र को बढ़ावा देने की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। सरकार रचनात्मक और सांस्कृतिक उद्योग को एक नई गति देना चाहती है, क्योंकि इसे निवेश और आर्थिक विकास के लिए एक बेहतरीन क्षेत्र माना जा रहा है। कल बंदरगाह पर MSC विगो नाम के एक मालवाहक जहाज से 3 किलो से ज्यादा गांजा जब्त किया गया। ये जहाज जर्मनी के झंडे तले चल रहा था और दक्षिण अफ्रीका के डर्बन शहर से आया था। जैसे ही हमारे समुद्री इलाके में आकर रुका, इसकी बारीकी से तलाशी ली गई। पुलिस की आजसु टीम और पुलिस की अन्य इकाइयों ने मिलकर ये ऑपरेशन चलाया, जिसमें उन्हें 3 संदिग्ध पैकेट्स भी प्राप्त हुए। जब्त किए गए ड्रग्स की कीमत लगभग 4.8 मिलियन रुपए की बताई जा रही है। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि गाजा में इजरायली हमलों में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 2 बच्चे और ब्रॉडकास्टर अल जजीरा का एक कैमरामैन भी शामिल थे। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इसराइल और चरमपंथी समूह हमास के बीच अक्टूबर में हुए संघर्ष विराम के बावजूद इस इलाके में लगभग रोजाना हमले हो रही हैं। इन हमलों में 1000 से ज्यादा फलिस्तीनी भी मारे जा चुके हैं। मंत्रालय के अनुसार शनिवार को तड़के करीब 2 बजे गाजा शहर में एक अपार्टमेंट पर पहला हमला हुआ। 2 बहनों, खासकर 4 साल की जीना और 14 साल का की लाना के शवों को शिफा अस्पताल में मुर्दा घर भेजा गया। तो ये थी अब तक की खबरें। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार। टेम्पल रोड रिवेज रोपोर में 70 साल की 70 years old की श्री कांता प्रसाद दुता, जिन्हें सब लोग सेकाओ के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनके अर्थे आज दिन के साढ़े दस बजे उनकी पत्नी श्रीमती माला दुता के घर टेम्पल रोड रिवेज रोपोर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए उत्तरीव रिवेज रोपोर की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10:30 AM। डिस्पेंसरी रोड ग्रांड साबल में 61 साल की 61 years old के श्री अजय कुमार दुखी, जिन्हें सब लोग अनुज शुफिया टैक्सी के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके बेटे श्री योगेश दुखी के घर डिस्पेंसरी रोड गांव साबल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

सुकून नाजिल होने की चीज़ है, इत्मीनान हासिल करने की चीज़ है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नल क़ुलूब, दिलों को इत्मीनान मिलता है। इसका तर्जुमा हम सुकून कर देते हैं, नहीं, इत्मीनान मिलता है अल्लाह के ज़िक्र से। लेकिन सुकून के लिए क्या, फ़अन्ज़लल्लाहु सकीनतहु, सुकून की जितनी भी आयतें हैं आप ख़ुद कुरान की आप तलाश करें, वहाँ पे नाजिल होने की आयतें आपको मिलेंगी। कुरान में जो भी आयतें सुकून की हैं वहाँ पे जो है अनज़ला ज़रूर होगा, नाजिल होने का, सुकून नाजिल होने का नाम है, पैदा करने का नहीं। मसलन मैं आपकी खिदमत में वैसे बहुत सारे कुरान के आयतें हैं, आप सूरह तौबा में भी तस्करा हुआ कि अल्लाह ने कहा कि हमने मोमिनीन पे सुकून नाजिल किया, सुकून नाजिल होने की चीज़ है, सुकून हासिल करने की चीज़ नहीं है, नाजिल होने की चीज़ खुदा की तरफ से है। सुकून जो है यानि सकीना, कुरान मजीद में बहुत सारी जगह पे ये आयतें मौजूद हैं। आप अगर कुरान मजीद के तरफ आप मुतालिया करें और आप देखें तो आपको पता चलेगा कि कुरान में सकीना का लफ्ज़ जो है बेपनाह जगह जो है इरशाद हुआ है खुदा की तरफ से कि हमने सुकून को मोमिनीन के लिए नाजिल किया। लेकिन है कि इत्मीनान हासिल करने की चीज़ है, इत्मीनान हासिल करने की चीज़, दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों के फ़र्क को समझने के लिए आप इतना मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि सुकून की आयतें नाजिल की हैं, इत्मीनान की हासिल की हैं, इसको कैसे समझें? इसको बिल्कुल ऐसे समझें कि जैसे एक परेशानी और बीमारी और पेट दर्द में जब आप रोते रहते हैं, जैसे डॉक्टर आता है तो खामोश हो जाते हैं, डॉक्टर को देखा और खामोश हो गए का मतलब क्या हुआ, डॉक्टर का आना सुकून है लेकिन अभी वो दर्द अंदर है। जब वो आता है तो कुछ दवाएँ लिख के देता है, आपने खाया कि ये सुबह खाओ, ये दोपहर खाओ, ये शाम में खाओ, और आपको इलाज हो गया, इत्मीनान अब हासिल हुआ। सुकून नाजिल होता है, इत्मीनान हासिल की जाती है। कुरान सुकून का सबब है क्योंकि कुरान नाजिल हुआ, कुरान सुकून का सबब है, लेकिन कुरान पे अमल इत्मीनान कहलाता है। सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में। इसको समझें कुरान की इस नज़ाकत को समझने की खुदा हमें तौफीक दे और हम इस चीज़ को समझ सकें कि कुरान हमारे लिए क्या कहना चाहता है, कुरान हमें कितना बड़ा दर्ज देता है। वैसे आप अगर देखना चाहें तो आप कुरान के सूरह फतह की आयत नंबर 4 को आप तिलावत, हुवल्लज़ी अनज़ला सकीनता फ़ी क़ुलूबिल मुमिनीना लियज़दादू ईमानन मा ईमानिहिम, वो वही अल्लाह है जिसने मोमिनीन के दिलों पर सुकून नाजिल किया ताकि उनके ईमान के साथ मज़ीद ईमान में इजाफ़ा हो। तो ये सूरह फतह की आयत नंबर 4 अर्ज कर रहा था कि इत्मीनान नाजिल नहीं होता, इत्मीनान के लिए हासिल करना पड़ता है। अल्लाह ताला ने मसलन कुरान नाजिल हुआ, कुरान सबब सुकून है, कुरान की तिलावत और कुरान को फॉलो करना इत्मीनान इससे हासिल होता है। अहल बैत अल्लाह ने पैदा किए भेजे, ये सबब सुकून हैं, जैसे डॉक्टर सुकून का सबब है, अहल बैत सबब सुकून हैं। अहल बैत की बातों पे अमल करना सबब इत्मीनान है। अब आइए, मैंने जिस आयत की तिलावत किया, अल्लाह इमाम हुसैन को नफ्स से मुतमईन कह रहा है। क्या मतलब, दुनिया में लोग हासिल करके मुतमईन नहीं हैं, हुसैन लुटा कर इत्मीनान में है, मुतमईन है, घर बार लुटा के मुतमईन। अल्लाह कहता लोग सब कुछ पा के राज़ी नहीं हैं फिर भी शिकायत है, हुसैन सब कुछ लुटा के खुदा उस पर राज़ी है कि जो तेरी मर्ज़ी है मैं उस पर राज़ी हूँ परवरदिगार। अल्लाह ने कहा आजा हुसैन, इर्जाई, आजा, पलट जा, बस है दुनिया में तेरी ज़िंदगी।

0: दी, तूने बहुत कुछ कुर्बानी दी है। अज़ीज़ाने गिरामी, मैं एक वाक़िया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत का, ज़िंदगी का आपको खिदमत में सुनाना चाहता हूँ। वो वाक़िया यह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ाती गिरामी जो है अज़ीम है। कहते हैं कि आपका एक बाग मदीने में था जो जिसके खजूर बहुत मीठे और बहुत अच्छे थे। ग़ुलामों ने, आपके असहाब और चाहने वालों ने ख्वाहिश की कि आका हम आपके खजूर बाग के खजूर खाना चाहते हैं। इमाम हुसैन ने अलैहिस्सलाम ने कहा चलो चलो। और जब ले के बाग के करीब पहुँचे तो जिसे बाड़ कहा जाता है, बाउंड्री जिसे कहा जाए, बाउंड्री के करीब इंट्री आपने बस एक कदम अंदर रखा और अचानक दूर पे निगाह पड़ी तो साफ़ी बैठे हुए खाना खा रहा है, सामने कुत्ता खड़ा हुआ है। इमाम ने उस चीज़ को देखा। हम लोग बहुत सी चीज़ें देखते हैं उससे इबरत हासिल नहीं करते, उसके अंदर पोशीदा पैगामात और जो मैसेज हैं उसको नहीं समझ पाते। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस मरहले को समझा। उसके बाद चाहने वालों से कहा ज़रा सा इस दरख्तों की आड़ में छुप जाओ और ये देखो हो क्या रहा है। इमाम हुसैन देखने लगे, वो भी देख रहे हैं, वो तो कुछ नहीं खाना खा रहा है। इमाम हुसैन सिर्फ खाना नहीं देख रहे हैं, उसके साथ कुछ और भी देख रहे हैं। जब उधर वो ख़ुद ही एक लुकमा खाता है, एक लुकमा कुत्ते को खिलाता है, एक लुकमा खुद खाता है, एक लुकमा कुत्ते को खिलाता है, और जब वो खाना खा चुका तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और उसके करीब आए तो पहले सब खत किया सलामुन अलैकुम। यहाँ रुकना चाहता हूँ। आज हमारे पास सलाम करने वालों की कमी है, हर एक जवाब देना चाहता है। समझते हैं कि सलाम करने में छोटापन है और जवाब देने में बड़ापन है। नहीं नहीं नहीं, ये हमारी गलत फहमी है। सलाम करने के लिए इमाम हुसैन सलाम फरमाते हैं, सलाम करने के टोटल सलाम और सलाम के जवाब में 70 नंबर हैं, 70 जज़ा हैं। सलाम करने वाले को 69 और जवाब देने वाले को एक। अब आप ये बताइए, जवाब देने में नंबर जब कम हैं तो आप 69 वाला काम करेंगे कि एक नंबर वाला करेंगे? बहरहाल इमाम हुसैन ने सलाम किया, उसके बाद आगे बढ़े और एक दूसरा जुमला, एक तो सलाम, एक नसीहत के बड़े बुज़ुर्ग अहले बैत आइम्मा इन्होंने सलाम सुना नहीं है, सलाम किया है। सिर्फ जवाब नहीं दिया, सलाम किया है। सलाम करने का सवाब ज़्यादा है, सबकत ले जाना चाहिए, अल्लाह इससे राज़ी होता है। उसके बाद दूसरा जुमला कहा साफ़ी माफ़ करना, मैं तेरे इजाज़त के बग़ैर बाग में दाखिल हो गया। साफ़ी परेशान हो गए, बोले आका कैसी बात करते हैं, बाग आपका है, आपको इजाज़त लेनी? नहीं नहीं, साफ़ी माफ़ करना, तेरी इजाज़त के बग़ैर आ गया। अच्छा खैर जाने दे, ये बता
1: कि तू अभी क्या कर रहा था,
0: तू अभी ये क्या कर रहा था? उसने कहा आका मैं कुत्ते को ग़िज़ा खिला रहा था, खुद भी खा रहा था। इमाम ने कहा भाई तू खुद भी खा रहा था, उसको भी खिला रहा था, आखिर ये किस तरह से हो रहा है? काका असल में ये बाग में दरख्तों की पानी देने का काम मैं करता हूँ, सिंचाई का काम, और ये जो छोटे छोटे पौधों को जानवर आके खा जाते हैं, उन जानवरों को ये भोंक कर दूर कर देता है। तो मुझे खाना खाते हुए यह याद आया, इस बाग में हम दो नौकर हैं, ये भी काम करता, मैं भी करता हूँ। आका के यहाँ से आने वाली ग़िज़ा में दोनों का हक़ बनता है, ये जानवर का भी और मेरा भी। इमाम रोने लगे, कहा कि साफ़ी माफ़, साफ़ी जा, मैंने तुझे राह खुदा में आज़ाद कर दिया। जैसे ही आज़ादी की बात सुनी, कहा आका आप मुझे अपनी खिदमत से मुझे आज़ाद कर रहे हैं, ठीक है आका, अगर ऐसा है तो मैं ये चाहूँगा कि आप जो है अब तक मुझे, मैं ग़ुलाम के उनवान से आपके पास रह के खिदमत करता था, आज के बाद ठीक है आप ग़ुलामी से हटा रहे हैं तो मैं आपके बागी में रहूँगा, मगर आज़ाद की तरह से मैं आपके यहाँ खिदमत करते रहूँगा। इमाम ने कहा किसके यहाँ खिदमत करेगा? कहा इस बाग में, आपके बाग में ही खिदमत करूँगा, आप अगर ग़ुलामी से अलग कर रहे हैं तो अब मैं आज़ाद रह के खिदमत। इमाम ने कहा किस बाग में? ये मेरे बाग में, ये मेरा कहाँ है? साफ़ी तू भूल गया, मैं आते ही सलाम के बाद मैंने तुझसे कहा कि माफ़ करना, तेरी इजाज़त के बग़ैर आ गया। साफ़ी तेरे इस अमल को देखा जब मैं वहाँ पे बाउंड्री पे दरख्त की आड़ में, तभी इरादा कर लिया था कि ये बाग मेरा नहीं है, साफ़ी को मैं आज तोहफे में दे दूँगा। आज

इसने एक जानवर के इस मेहनत का ख्याल किया, जानवर का ख्याल किया। अज़ीज़ाने गिरामी, साफ़िर रोने लगे, आखा कितने मेहरबान हो कि अगर मैंने जानवर के हक़ को समझ के एक लुक्मा खाना खिलाया तो आप मुझे इस पूरे बाग के दे देने की बात कर रहे हैं। और कमाल तो देखिए, इमाम हुसैन ने ये नहीं कहा दे दिया, ये कहा माफ़ करना, इजाज़त के बग़ैर आ गया, यानी इमाम हुसैन देने का लफ्ज़ भी नहीं, सीधे सीधे यूं ही दे दिया। और अज़ीज़ाने गिरामी, इमाम कहते हैं कि साफ़ी इन सब को गवाह बना के कह रहा हूँ, ये बाग तेरा है, अब हम तेरे बाग में खड़े हैं। वो रो रहा है, इमाम कहे जा रहे हैं साफ़ी तेरे बाग से थोड़े से खजूर खिला दी, ये नहीं कह रहे मेरे बाग से, हम तो कई चीज़ें देने के बाद भी ज़माने तक कहते हैं मैंने दिया। इमाम हुसैन कहते हैं साफ़ी ये तेरे बाग से कुछ खजूर कर खिला दी, ये लोग मेरे साथ आए हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, कसम से कितनी इबरतें भरी हुई हैं इस वाक़ियात में। इमाम ने एक जानवर के साथ सुलूक करने वाले को बाग दे दिया। अज़ीज़ाने गिरामी, हम पर हमारे भाइयों का कितना हक़ है, बहनों का, वालिदैन का। और आज एक आज इंसान होते हुए आज गज़ा की तबाही देखिए, दुनिया में क्या मुश्किलात हैं। आज एक इंसान इंसान को नहीं समझ रहा है, लेकिन ये वो सहाबी थे, ये वो चाहने वाले इमाम के थे जिन्होंने एक जानवर के हक़ को अदा किया था। इमाम ने बाग दे दिया, उधर फिर कह रहे हैं कि इस बाग से मुझे कुछ खजूर खिला दे, मगर साफ़ी भी इमाम का चाहने वाला, उसने कहा आखा ठीक है, आपने अपना काम कर दिया, अब मुझे भी अपना काम करने दीजिए। साफ़ी क्या काम है? आका मैं इन सब को गवाह बना के ये कह रहा हूँ, ये बाग आज से मेरा नहीं है, मैंने आपकी मोहब्बत में इसको वक्फ कर दिया है, दुनिया आए लोग आएँ इससे खजूर खा के जाएँ। ये थे वो चाहने वाले जिन्होंने दौलत को अहम नहीं समझा, इमाम की चाहत को और उनकी खिदमत को मुहिम समझा। आज़ादारा ने सैदुशहदा, ये थे वो मेरे आका इमाम हुसैन के, जिनके चाहने वालों की तरह तरह के कमालात हैं, लेकिन वही इमाम हुसैन के जिन्होंने बाग के बाग लुटा दिए, अपनी ज़िंदगी लोगों के लिए सर्फ कर दी, वो हुसैन अपने खानवादे के साथ। ये को तन्हा करबला में तपती रेत में तन्हा हैं, कोई पुरसान हाल नहीं है। अलमख्तसर ये है कि अब्बास जैसे भाई ने जब इजाज़त मांगी तो हुसैन सरता पैर देख के रोने लगे। खैर आखिर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जनाब अब्बास इजाज़त ले के मैदान में आए, मशकीदा भर के चलना चाहते हैं। उधर जनाब सकीना खुश हैं कि अब जाने वालों में कोई और नहीं है, मेरा चचा गया है, पानी ले के ज़रूर आएगा। आज़ादारा ने सैदुशहदा उधर मौला अब्बास ले के चले। तारीख ने लिखा कि जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम जब चल रहे थे तो करबला में आज भी वो निशानात मौजूद हैं कि आगे एक जालिम ने छुप कर आपके दाहिने हाथ पे वार किया तो दाहिना हाथ कलम हो गया। आपने मशकिज़े को दहन में दांतों में दबाया और दूसरे हाथ में अलम थामा, लेकिन जालिमों ने उस हाथ को भी कलम कर दिया, दोनों हाथ कलम हो चुके हैं, तीर चल रहे हैं, कुछ तीर आँखों पे आके लगे, सीने पे लगे, जिस्म पर लगे, लेकिन ये एक तीर जब आके मशकिज़े पे लगा जनाब अब्बास से संभला ना गया, आस टूट गई। इसी असना में पीछे से किसी जालिम ने सर पे गुर्ज मारा, घोड़े पे संभल ना सके। अब खैमे में जाने की आरज़ू ख़त्म हो गई, इसलिए कि मशकिज़ा ना रहा, हाथ भी नहीं, सर पे बाप के मिसल अली अलैहिस्सलाम को सर पे ज़रबत और बेटे को गुर्ज लगा था, और ज़मीन पे गिरे और मौला हुसैन भाई के लाशे पे आए और सर को जानू पे रखा और फरियाद करने लगे। उधर मौला ने वसीयत की, मौला अब्बास ने, आका मेरे लाशे को खैमे में ना ले जाएं, मैं सकीना से शर्मिंदा हूँ। आज़ादारों वह वक्त भी आया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब ये अलम ले करके खैमे की तरफ गए, उधर बच्चे रो रहे थे पानी पे, तो सकीना खुद नहीं रोते हुए बच्चों को तसल्ली दे रही थी, बच्चे अब तो ना रो, लाने वाला कोई और नहीं, मेरा चचा है, चचा पानी ले के ज़रूर आएगा। ये कहते हुए दरवाजे पे आए तो देखा आलम आ रहा है, बच्चे आ जाओ मेरा चचा आ रहा है। सकीना को नहीं पता कि आलम लाने वाला कोई और है, लेकिन आलम को ही देखती जा रही हैं, चचा आ रहा है। जैसे जैसे आलम करीब आया, खुश तो थी, मगर जब आलम को पकड़े हुए

0: हाथ पर देखा, वह अलम बाबा के हाथ पर है, कदमों पे गिरी, ए बाबा मुझे पानी नहीं, मुझे मेरा चचा चाहिए। सयालमुल्लज़ीना तलम अय्यमुन क़लबियन क़लब बारिलाह बहक़ ज़हरा व अबीहा व बालुहा। हमारे इस मख्तसर से ज़िक्र खलील को कबूल फरमा, कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।

सजदे से करबला को बंदगी मिल गई, सब्र से उम्मत को जिंदगी मिल गई, सजदे से करबला को बंदगी मिल गई, सब्र से उम्मत को जिंदगी मिल गई, एक चमन फातिमा का उजरा मगर सारे इस्लाम को जिंदगी मिल गई। सामईन कराम, गर्दिश अय्याम ने एक बार फिर हमें उस मुकद्दस महीने की दहलीज पर ला खड़ा किया है जिसे रब कायनात ने हुरमत और हिकमत का ताज अता फरमाया, मुहर्रमुल हराम, वो माह मुबारक जिसकी खामोश फजाओं में इबादत की चाशनी, दुआ की तासीर और तारीख की अजीम दास्तानें सुनाई देती हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह माह मुहर्रमुल हराम का पांचवा दिन है। आज की बज़्म अकीदत मैदान करबला के उन नुकूस कुदसिया के नाम जिनकी कुर्बानी रहती दुनिया तक के मुसलमानों के लिए मशगले राहें। आइए सामईन, महफिल का बाज़ाब्ता आगाज़ सूरा अन्नबा की तिलावत से करते हैं। बाग़ौर व अदब समात फरमाइए।

सामईन कराम, अभी आपने सूरा अन्नबा की तिलावत समात फरमाई। माहे मुहर्रमुल हराम हर साल हमें शहदाए करबला, ख़ास तौर पर सैयदुश्शुहदा नूर नबूवत आयनाए शुजात इमाम आली वक़ार हज़रत सैदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की याद दिलाता है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपने अहले बैत के साथ मैदान करबला में ऐसी तारीख़ रकम की जो रहती दुनिया तक इंसानियत को हक़ व बातिल का फ़र्क सिखाती रहेगी।

कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद हैं, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद हैं, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सामईन ज़ी वक़ार, मैदान करबला में इमाम आली वक़ार हज़रत सैदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु पर जान, माल, औलाद, भूख, प्यास, खौफ और तानेबाजी जैसी सब आजमाइशें आईं, मगर आप रदी अल्लाह तआला अन्हु सब्र व इस्तकामत का पहार बने रहे। रज़ा इलाही पर राज़ी रहते हुए ज़बान से हमद इलाही फरमाते रहे और उन जालिमों को बराबर नेकी की दावत और इस्लाम की तालीमात देते रहे।

मुअज़्ज़ज़ सामईन, करबला का हर लम्हा सिर्फ तारीख का एक वाकया नहीं बल्कि एक पैगाम है, कुर्बानी का, सब्र का और सबसे बढ़कर इबादत का। इमाम आली वक़ार हज़रत सैदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्ने किसी भी वक्त नमाज ना छोड़ी। ज़रा सोचे तो सही, वो कौन सा जज्बा था जो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्ने को सजदे से ना रोक सकी। वो अल्लाह से कुर्बत थी, नमाज का इश्क था, वो बंदगी का कमाल था। वाकया करबला हमें सिखाता है कि नमाज कोई रस्म नहीं, ये ईमान की रूह है। और जब इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन जैसा सरदार मैदान जंग में नमाज अदा कर सकता है, तो हम किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं।

सामईन कराम, करबला का पैगाम उन लोगों के लिए है जो रोज़ आजमाइशों में मुब्तला होते हैं। करबला हमें बताती है कि ईमान की राह में आजमाइशें आएंगी, कभी पानी रोका जाएगा, कभी खेमे जलेंगे, कभी अपने बिछड़ेंगे, मगर दिल में यकीन बाकी रहे तो जिंदा शिकस्त नहीं खाता। हम इंसान रोज़ दुख दर्द, मुश्किलात, गुर्बत, बीमारी या नाइंसाफ़ी से गुज़रते हैं, मगर उस वक्त करबला को याद कीजिए। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला ने दुखों की इंतहा में भी अल्लाह तबारक व ताला से रिश्ता नहीं तोड़ा, सजदा नहीं छोड़ा, सब्र का दामन न छोड़ा, हमेशा हक पर कायम रहे।

सजदे तो सब ने किए, तेरा नया अंदाज था। सजदे तो सब ने किए, तेरा नया अंदाज था। तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज था। सामईन कराम, बज़्म अक़ीदत का ये खूबसूरत सफ़र अब अपने अख्तिताम को पहुँचता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने माह मुहर्रमुल हराम के फ़ज़ाइल, बिलखुसूस उन हस्तियों का तज़किरा किया जिनकी ज़िंदगियाँ ईमान, सब्र, वफ़ा और कुर्बानी का रोशन मीनार हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुकद्दस महीने की बरकतों से हमें फैज़याब फरमाए और हमारे दिलों को नूरे ईमान से आबाद रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। सामईन, अब आपका मेज़बान निसार अख्तर इजाज़त का तलबगार है। दिले नादा को रुख्सत होना गवारा नहीं, मगर यही रस्म दुनिया है। इंशाअल्लाह ज़वजल अब हमारी मुलाकात अगले इतवार को होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, फ़ी अमानिल्लाह।

0: Number two.
1: Ip optamara isi yame bill.

0: Number one, number one.
1: Album Tully Pogre.

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: स्वर तरंग,
2: स्वर तरंग।

相信只有手中的那根烟还能体会我颤抖的双唇，怕就怕在我的心机如焚，怕就怕缘分尽了我还在奔，爱或许

719 किलोहर्ट्ज़ पर, रेडियो मॉरिशस। मौजिला गुजरात नो रंग रंगारंग एमबीसी रेडियो पर गुजराती गीतों नो प्रोग्राम रंगारंग रंगारंग।

नमस्कार श्रोतागण, घड़ी मिलाते चलिए, इस समय शाम के 4:13 हो चुके हैं। हम और आप कार्यक्रम में आप सभी का दिल से स्वागत करती हैं पूजा। संगीत के बिना जीवन नहीं, योग के बिना संतुलन नहीं, और प्रेम के बिना इंसान नहीं। आज का दिन बेहद ही खास है, क्योंकि आज हम दो ऐसे अनमोल उपहारों का उत्सव मना रहे हैं, संगीत और योग। कहते हैं जब शब्द छोड़ देते हैं तब ये संगीत ही बोलते हैं, और जब मन थक जाता है तब योग उसे फिर से जीना सिखाता है। सोचिए अगर हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में संगीत ना होता तो क्या होता? ना लोहड़ी होती, ना शादी की शहनाई, ना त्योहारों की रौनक, ना फिल्मों के यादगार गीत। संगीत हमारे जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव तक हमारे साथ चलता है, और हम और आप जुड़े हुए हैं संगीत के ही माध्यम से। संगीत ना होता, ये रेडियो ना होता, तो शायद आप लोगों से पहचान भी नहीं होता। मैं तो बस एक आवाज हूँ। इसी आवाज के साथ कितने साल बीत गए आप लोगों से रिश्ता जोड़ते जोड़ते, और आज हम कितने पास भी हो गए हैं संगीत के कारण ही। ना केवल मैं, परंतु मेरी सभी

0: रेडियो मॉरिशस के स्टाफ रोशनी दीदी, रत्ना, अभी भाई, रोज आप लोगों से बातें होती हैं, संगीत द्वारा आप सभी के मनोरंजन हम करते हैं, इसी कारण आप लोगों के दिल के पास ही पहुंच जाते हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे, हम और आप कार्यक्रम में अपना अनुभव बांटिए, हमसे बात कीजिए, संगीत आपके लिए क्या है, योग आपके लिए क्या है, और ये संगीत ही जीवन में खुशी लेकर आती है। तो आइए लाइन पर कुछ लोग जो हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनको सुनते हैं कि उनके पास बोलने के लिए, बांटने के लिए क्या है। हेलो,
1: नमस्कार पूजा जी।
0: नमस्कार हरीश जी, कैसे हैं आप?
1: हैप्पी म्यूजिक डे।
0: आपको भी संगीत दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: आपको भी और सभी लिसनर्स के लिए हैप्पी म्यूजिक डे, जो हमेशा भाग लेते हैं आपके प्रोग्राम में। तो मेरे लिए संगीत इज पार्ट ऑफ माई, पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई लाइफ। बिना संगीत के ये जीवन अधूरा हो जाएगा और न जाने क्या होगा। लेकिन संगीत है हमारे जीवन में, म्यूजिक इज इन माई ब्लड। और मैं आज एक्सेप्शनली आपसे इजाजत मांगूंगा पूजा जी,
0: अवश्य।
1: मेरा पैगाम, मेरा विचार एक गाना के द्वारा आपको पेश करता हूँ, प्लीज। ओके,
0: अवश्य।
1: वो कौन सी मुश्किल है जो न हो सके आसान, वो कौन सी मुश्किल है जो न हो सके आसान, हिम्मत है तेरे साथ, हिम्मत है तेरे साथ, तो फिर साथ है भगवान। वो कौन सी मुश्किल है जो काम है किए जा, पर तो कभी मिलेगा, आज अगर कांटे कल फूल भी खिलेगा, समय पे कर भरोसा, समय है बड़ा बलवान, समय पे कर भरोसा, समय है बड़ा बलवान। वो कौन सी मुश्किल है जो न हो सके आसान, वो कौन सी मुश्किल है पूजा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत सुंदर और प्रेरणादायक आपने जो गीत गाए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी, कितने सुंदर से आपने गाया वो, थैंक यू सो मच। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और भी लोग हैं, आइए उनको भी हम सुनते हैं कि उनके क्या विचार हैं। हेलो हेलो।
2: हाँ, जय माता दी।
0: जय माता दी, आपका शुभ नाम?
2: रमीला जी।
0: रमीला जी, आपका स्वागत है हम और आप कार्यक्रम में।
2: संगीत का संगीत अभिनंदन,
0: आपको
2: अभिनंदन,
0: आपको भी।
2: संगीत हमारा स्वर है, और संगीत है और प्रेम है, हमारा आधार है, और संगीत के बिना न रामायण ठीक है, न गाना, न भजन, सब कुछ संगीत से है, सबसे बड़ा है संगीत। और कंठ में बैठो सरस्वती, हृदय में बसो महेश, भोला अचोक प्रकाश कीजिए, गौरी को पुत्र गणेश, सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश। जय संगीत देवता, आपको सत सत नमन। धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपको भी। आइए एक और श्रोता को हम सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। हेलो।
3: हेलो, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, कैसे हैं आप?
3: ठीक बना पूजा जी?
0: ठीक ठीक, बहुत बहुत ठीक। विजय जी,
3: विजय बंसल बोल रहे काबिज से
0: जी।
3: और कैसे बात, समाचार सब अच्छा बना?
0: सब कुछ ठीक, आप कैसे हैं?
3: सब ठीक बा, इंतजार कर सका भाई प्रोग्राम लेके आई भाई सनम के। जितना जना सुना था हमने की, जितना जनता बामने की, जितना दोस्त सब के प्रणाम बोलते हैं, और संगीत दिवस मुबारक, और योगा दिवस भी मुबारक। हाँ, कैसे बोला, संगीत एगो जीवन में चला, सबके जीवन में चला संगीत है। हमारे लिए संगीत बहुत एगो विस्तार की जा, संगीत सगरो सुना देवेला, देखे ला चिड़ाई भी गावेला था संगीत, समुन्दर जेबा, नदी जेबा, झरना के पानी गिरेला समुन्दर। आर एगो एगो एगो एगो एगो फिल्मो देखबा, फिल्मो में

0: म्यूजिकवा संगीतवा बोल देवेला का होई फिल्म में वो फिल्म देखत हो तो जान जी बा कौन छे हो था कौन आक्षों बा कहाँ रोवे के बा तो संगीत हमने के जीवन में बहुत एगो एगो बहुत काम कैला धले हमने के इधर को एगो दवाई के थे हमने काम कैला जीवन में। हाँ संगीत पास के देखे ना कैसे हमने के रजुबे नहीं डाला सदा बुझा एक दिन राजू को एमबीसी से डाल एक दिन टूट जाता नहीं अच्छा लगेगा हमने के बुझा था कुछ कुछ पेड़ दियो नहीं सन कुछ नहीं अच्छा लगा था डे मैं ऐसा ना संगीत हर समय की सांसों में बसा बस संगीत के संगीत से प्यार नहीं करे लटे भाई भाई दिवसवा जे जे रख ले बाद हम हमारा हमारे विचार से कला इमो का भरतवे में रख ले हम जाइला भाई लेने में रख ले भाई संगीत दिवस बाकी की सबके जीवन में संगीत बटे संगीत से हमके बहुत खुशी मिले लटे और कैसे बन के रेडियो के आवाज के ना कितन कोई दे प्रोग्राम मिला कोई दे गाना मिले लटे आज सुनवार आगे के दिखब तो आगे के फिल्म में बनने के बतलावे ना सके चीज ना वो लंबी चीज कोई सुन जी सुनवे तो तोड़ दिल खुश हो जाएगा डे
1: रिसर्च है बात था
0: कितना थकान लगेला कितना प्रॉब्लम बा एक जब गजवा के लेकर लगे वो संगीत में थे वो गाना मिला था तो बोल बा हां तेरी थकान वा चल गल हम ये हमर विचार से इसे संगीत सबके जीवन में चाह रही कि आज जीवन में बहुत खुशी लेके आवेला और योग भी चाह हम ये करेंगे बस बता देखने के बड़ा आदमी बहुत बहुत अगाड़ी से गया अभी तो हम जाते सब भी थोड़ा दिन से बोल से योगा से बकाया बहुत भारत में बहुत दिन से इला है योगा बाटे हई तो धले हमने के लासाते के लिए हमने के जीवन में बहुत खुशी लेके आवे लटे हई हई आर जितना जना ही है योग कर लटे योगा कर लटे हई जति ढेर मलादी के वो हटा देवे लटे हमने के स्ट्रेस हटा देवे लटे मैं हई एगो बहुत एगो एगो एगो एगो दिन दुगो दिन ऐसा रखल बा हमने के जीवन में बहुत अच्छा बा पूजा जी बहुत बहुत धन्यवाद बोते हैं कोई के मौका दे बोते बतियाई के बहुत धन्यवाद बोते हैं जितना जान सो सबके प्रणाम कैसे हमने के एक दो दो बालों के बोल रहे हैं कैसे हमने के बाद चित्रा बहन बागोर का प्रणाम नवीन भाई नवीन लक्ष्मण बाटे और ऐसा जानू बा आज जितना जाना बस सबके नाम सब ले सबके बोलने प्रणाम और शुभ दिवस सबके आपको भी
1: शुभ संध्या आपको भी विजय जी और बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ और आपके मैसेजेस के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपको आप रोज मुझे भेजते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद
0: धन्यवाद धन्यवाद
1: अच्छा जी नमस्ते। चलिए एक और श्रोता को हम सुनते हैं। आप लोग थोड़ा थोड़ा सा बात कर लीजिए ताकि मैं सभी को जो है अवसर दे पाऊँ। नमस्कार इंदिरा जी।
2: नमस्ते पूजा जी।
1: नमस्ते जी, कैसी हैं आप?
2: कैसे हैं?
1: मैं ठीक हूँ।
2: हैप्पी हैप्पी हैप्पी म्यूजिक डे, हैप्पी योगा डे।
1: आपको भी
2: खुशहाली मनाने के लिए चला चल दिन चलावे ना हम लोगों को पकड़ने के लिए जो है म्यूजिक डे है, योगा है, उसका उसका हक जो होते हैं वो चले आते हैं हम लोगों के साथ, हम उन लोगों के साथ बिता देते हैं। और जैसे कि एक भजन भी है, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम भी चले ना हनुमान के बिना, ठीक है ना। और ऐसा ही तो चलते हैं सभी सारी जिंदगी तो गुजर भी जाते हैं
1: जी।
2: कोई मांगते हैं, कोई गाते हैं, कोई उसमें उसमें लावी भी है, ऐसा है ना। ओके अरे ठीक है, ओके बाय।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इंदिरा जी, शुभ संध्या आपको। आइए एक और श्रोता को हम जो है अवसर देते हैं, आइए उनको सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते जी, प्रणाम।
3: नमस्ते, कैसे? ठीक है ना?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं और आपका शुभ नाम?
3: माधुरी।
1: माधुरी जी, चलिए बताइए आपका क्या कहना है संगीत दिवस और योग पर।
3: जब संगीत दिवस पर विचार हो रही ना, प्रोग्राम हो रही है, तो हमारे मन बहुत गदगद हो जाती है। हाँ, क्योंकि मैं इतनी उम्र में है, अभी तक हमारा सीखना समाप्त नहीं हुई है
1: जी।
3: अभी तक ले हमारे गुरुवर दाईबू और भाई ईश्वर दाईबू सब हमें सिखाते हैं अभी तक ले, और हम सीखते हैं। और जानते बहन जी, एक है रेडियो, एक है टेलीविजन, सबसे हमारे बड़ा मित्र यही है। हाँ, क्योंकि हम जब तक रेडियो नहीं डालते हैं सुबह, तो हमारे काम ही नहीं चलते हैं
1: जी।
3: हम रेडियो सुनते हैं, टेलीविजन देखते हैं और संगीत में भी भाग लेते हैं, सब कुछ करते हैं। संगीत दिवस सबसे बड़ा दवा ये है, सबसे बड़ा दवा। कोई भी बीमार रहे, टेलीविजन डाल दे या रेडियो डाल दे,

0: गीत सुनते हैं उसका जो दुख है वो समाप्त हो जाते हैं
1: जी।
0: हाँ बहुत धन्यवाद मुझे मौका दिया,
1: धन्यवाद।
0: नमस्ते,
1: नमस्ते।
0: शुभ रात्रि
1: और शुभ संध्या आपको। आइए एक और श्रोता है लाइन पर, उनको भी हम सुनते हैं। हेलो
2: हेलो, नमस्ते पूजा जी।
1: नमस्ते जी, कैसी हैं आप?
2: शुभ है, सब कुशल मंगल है। मैं शुभ दिवस अभिनंदन करती हूँ सभी मॉरिशियन भाई बहनों को और सभी जो एम्बेसी टीम वालों के लिए, सभी टीचर्स, सभी संस्कृत, सभी हिंदी टीचर्स के को भी, सभी गुरु जी को प्रणाम करती हूँ
1: जी।
2: और हैप्पी म्यूजिक डे,
1: बाय बाय। नमस्ते आपको। आइए एक और श्रोता है लाइन पर, उनको हम सुनते हैं। हेलो
3: हेलो
1: हेलो जी,
3: पूजा जी।
1: नमस्कार जी, कैसी हैं आप?
3: हम ठीक है, हम संगीत है, हम संगीता है।
1: संगीता जी आपका स्वागत है। चलिए बताइए संगीता जी। आपका नाम जो है संगीता है, संगीत से जुड़ा संगीता।
3: संगीत बहुत प्यार कर दिया, संगीत से प्रेम प्यार बहुत अच्छा लगेगा। गीत है सब में जस्ती रही जाने ला, ये सब में रब इस तरह से नहीं हुई मलाद नहीं रब ये सब भजन कीर्तन मैं खुशी रही ला बहुत। हाँ तो ऐसे तो अभी सब कोई दिखा था चलता लड़का लोग स्कूल में तैयार करता सब, हमने छोटा छोटा लड़का लोग सब डांस डांस सब में लड़का लोग करा था बतलावे लन सके से कैसे हम जिए बहुत से। हाँ हाँ सब कुछ अच्छा बा। हाँ तो हम एक वो छोटा भजन गा दे ला, एगो गीत एगो कत में फिल्म में वो गीत गा दे ला।
1: चलो गाओ।
3: दुनिया में हम आई है तुझी नहीं पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम

0: गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेगी, जल जाए मगर आज पे चलते ही रहेगी। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेगी, जल जाए मगर आज तो आए रहेगी। गम जिसने दिए वो गम दूर करेगा, गम जिसने दिए है वही गम दूर करेगा। दुनिया में हम आई है तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा।
1: क्या बात है संगीता जी, आपने सारा गा लिया, बहुत सुंदर गा लिया, और बहुत बहुत धन्यवाद इस गीत के लिए। सच में हम आए हैं यहाँ पर तो दुख सह सह कर हमें जीना चाहिए, बस
0: हाँ,
1: मुस्कान के साथ।
0: सहना हमने के दुख सुख सब करके जिए के
1: सब
0: का
1: करके
0: बोले ना,
1: जिए के, हाँ
0: सब
1: नीवन
0: कुछ
1: से
0: के
1: बोल।
0: भगवान हमने के शक्ति दे सब सहे के बा का बोले ना।
1: बहुत
0: हाँ
1: बहुत धन्यवाद।
0: अच्छा, नमस्कार, शुभ
1: नमस्ते, शुभ
0: संध्या
1: संध्या
0: पूजा
1: आपको
0: जी
1: भी। जी
0: आपको।
1: अच्छा जी, चलिए एक और श्रोता है लाइन पर, राधा जी को हम सुनते हैं। नमस्ते राधा जी,
0: हाँ
1: प्रणाम।
0: नमस्ते, हाँ प्रणाम आपको भी पूजा जी।
1: प्रणाम।
0: संगीत के बारे में तो हम जितना कहें वो कम है, लेकिन मैं एक लोकगीत गाकर अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करना चाहती हूँ,
1: अवश्य।
0: क्योंकि संगीत माँ सरस्वती जो संगीत के अधिष्ठात्री देवी है, उनके बिना ये अधूरा है। मैं गाती हूँ।

0: अहो सरस्वती, बैस हो मोरे कंधे अहो सरस्वती।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर राधा जी।
0: धन्यवाद। शुभ संध्या,
1: शुभ
0: शुभरात्रि
1: आपको भी,
0: सभी को संगीत दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: आपको भी, आपको भी
0: जी, आपको।
1: चलिए, बहुत ही सुंदर सा गीत जो है एक राधा जी ने गाई है, और ख़ास तौर पर जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए उनको सुनते हैं अभी जो है। हमारी प्यारी बसंती जी, नमस्ते बसंती जी,
2: नमस्ते,
1: कैसी हैं आप?
2: योग का दिवस और संगीत दिवस की शुभकामनाएं
1: आपको भी
2: जी। और जब हम योगा करते हैं ना, बहुत सी बीमारी से बचते हैं, और संगीत हमारा दिल को छू देता है। कुछ गाना गाती हैं तो आज मैं आपको एक दो लाइन गाकर सुनाऊंगी। मुझे तीन मिनट मिलेगा?
1: हाँ, मिलेगी मिलेगी। गाइए गाइए।

0: अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो।
1: क्या बात है बाबू बहुत
0: थैंक यू वेरी
1: सुंदर।
0: मच पूजा
1: ये लाइन मुझे भी बहुत पसंद है कि
0: जी। जी पूजा
1: जगने
0: जी,
1: छीना
0: इसमें कुछ
1: मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, मेरे साथ
0: जी
1: भी
0: जी
1: वैसे
0: पूजा
1: ही हुआ
0: जी
1: कोई बात नहीं, बहुत सुंदर दी जीत दिया
0: जी
1: आपने,
0: जी दिल को छू देता
1: बहुत
0: है ना
1: बहुत
0: जी।
1: बहुत
0: थैंक यू
1: बहुत
0: पूजा जी, थैंक यू वेरी मच।
1: बाय।
0: ये स्पेशली मैं रखी थी आज
1: हाँ
0: के
1: अच्छा
0: लिए
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एक और श्रोता है लाइन पर, आइए उनको सुनते हैं। नमस्ते दादी।
0: नमस्ते पूजा, हैप्पी
1: अच्छा हवा
0: हाँ हैप्पी निशिक डे।
1: आपको भी संगीत दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: हाँ बहुत बहुत बहुत धन्यवाद। एक सरस्वती के गीत गावा पूजा।
1: हाँ गाया गावा।
0: अपन सरस्वती के पान फूल चढ़ावा, अपन सरस्वती के पान फूल चढ़ावा, बिछावे फैला दे मोहर माला। आहो सरस्वती भवानी, बिछावे फैला दे मोहर माला। आहो सरस्वती भवानी, अपन सरस्वती के फैला चढ़ाइबा, अपन सरस्वती के नारियल चढ़ाइबा, बिछावे फैला दे मोहर माला। आहो सरस्वती भवानी, अपन सरस्वती के हरवा।

चढ़ाइबा अपन सरस्वती के हरुआ चढ़ाइबा बिछावे फैला दे मोहर माला आहो सरस्वती भवानी अपन सरस्वती के आरती उतारबा अपन

0: आहो सरस्वती भवानी बिछावे फैला दे मोहर माला, आहो सरस्वती भवानी, आहो सरस्वती भवानी, आहो सरस्वती भवानी। बहुत धन्यवाद पूजा।
1: धन्यवाद दादी, तोहर लोटा नहीं अनले हवर, तो चम्मच कहाँ बा?
0: नहीं नहीं कुछ नहीं बा, बाजा सब हिये बा।
1: सब ये बा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर दादी। और संगीत दिवस की एक बार फिर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं।
0: बहुत धन्यवाद पूजा तोरो, आप सभी के लिए, सब कोई के लिए
1: धन्यवाद।
0: शुभ
1: संध्या आपको भी। चला अभी एक और श्रोता बातें लाइन पर। हेलो
2: हेलो, नमस्ते पूजा जी,
1: नमस्ते आशा जी, कैसी हैं आप?
2: मैं अच्छी हूँ। और सबसे पहले तो मैं आपको, पूरी एमबीसी टीम को और समस्त संगीत प्रेमियों को संगीत दिवस एवं योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ।
1: आपको भी।
2: तो मैं ये कहूँगी पूजा जी, माँ शारदे का वरदान ईश्वर का अनमोल उपहार है संगीत। सोचने की बात है, यदि संगीत न होता तो जिंदगी कितनी अधूरी होती, घर कितना सूना होता। और यह जो संगीत है ना, यह केवल मानव जीवन के लिए सीमित नहीं है, अपितु ये झरने, नदियाँ, फूल, पत्तियाँ, पशु, पक्षी, इन सब, ये सब भी संगीत से वंचित नहीं है। फूलों से तो बहारें आती हैं जो प्रकृति का श्रृंगार होता है, बस संगीत से तो आत्मा का श्रृंगार होता है। जीवन के हर रस में संगीत ही तो होता है, तो एक दवा के, जब उदास मन उदास होता है तो एक दवा का काम करती है। मन खुश होता है, प्रसन्न होता है, तो आनंद की अनमोल वर्षा करती है यह संगीत। और संगीत में जो ये सात सुर होते हैं, सात सुरों के सरगम से जब संगीत बनता है, उसमें अनेकों गीत जन्म लेते हैं। इन मधुर गीतों के ताल से ताल पर हम नृत्य भी करते हैं। तो कहने का अर्थ यही निकलता है पूजा जी, संगीत जीवन है, जीवन ही तो संगीत है। जीवन संगीत का अर्थ ये भी होता है कि ये नहीं कि यानी कि हम चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, एक दर्द भरा गाना सुन लेते हैं तो उसमें हमें अपनी कहानी दर्शाती है। और ईश्वर की प्राप्ति के लिए भी हम संगीत ही का सहारा लेते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, भजन वो जरिया है जो साथ साथ हमें ईश्वर का चिंतन मनन करने से यानी कि प्रेरणा करती है, हमें ईश्वर की प्राप्ति कराती है। और संगीत के मधुर धुन से जीवन में प्रेम होता है, यानी कि घर में, अगर परिवार में, रिश्तों में यदि क्लेश भी होता है तो इस संगीत वो ही वो माध्यम है जिससे हम अपनों रुचे हुए को बना सकते हैं। तो यही पर समाप्त करती हूँ पूजा जी, क्योंकि मुझे पता है सभी लोग कुछ ना कुछ कहना चाहेंगे। तो फिर से कहूंगी, यदि आपके जीवन में उदासी है तो उदासी को छोड़कर आप संगीत को अपना अमृत बना लीजिए, देखिएगा आपके जीवन में जरूर खुशियाँ आएंगी।
1: जी ओके, धन्यवाद आशा जी इस विचार के लिए। और आपको कहेंगे शुभ संध्या। आइए एक और श्रोता है लाइन पर, उनको हम सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बस आप लोगों से धैर्य की मांग है, प्लीज आप लोग धैर्य लीजिए, मैं सभी को अवसर दूंगी। हेलो
3: हेलो, प्रणाम।
1: प्रणाम
3: सभी लोगों
1: जी।
3: को आशीर्वाद। हाँ, मैं बोलती हूँ कि संगीत ऐसी चीज है जो मरते हुए आदमी का भी प्राण बचा सकता है। मैंने बचपन में पढ़ा था और मुझे संगीत से बहुत प्रेम है, क्योंकि जब हम रेडियो सुनते हैं, गीत सुनते हैं, तो हमें शक्ति मिलती है। हाँ, तो मैं एक छोटा सा गीत गाना चाहती हूँ जो बचपन से मुझे प्यारा है।

जल से सभी को सींचा, ये है प्रभु का बगीचा, ये है प्रभु।

0: जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे, क्या जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे।
1: बहुत
0: आप
1: बहुत
0: धन्यवाद
1: धन्यवाद आपको भी। आइए उनको हम सुनते हैं, एक और श्रोता है लाइन पर। हेलो,
2: हाँ बेटी,
1: प्रणाम नानी जी, कैसी हैं आप?
2: आशीर्वाद बेटी, हम सबके आशीर्वाद देवत है संगीत दिवस के,
1: बहुत बहुत सब कुछ
2: सबके शुभकामना
1: आपको भी, आपको भी।
2: हाँ बहुत अच्छा बा, बहुत अच्छा भाग से संगीत के दिवस मिलल बा, बड़ी भाग से। और सत्संग के लाभ चाहे लड़ेवी के कहे सत्संग नियर चीज, पहले बिना सत्संग के विवेक न होवे कबो नहीं हो। रामायण में सब लिखल बा, सब लिखले हमन राम। हाँ एगो पीति सन भजन बल देवत है, एक लाइन। सत्संग वाली नगरी में चल रहे

0: के गंगा सतंग वाली नगरी में, प्रेम के गंगा जो भी नहाए हो जाए चंगा, जो भी नहाए हो जाए चंगा। सतंग वाली नगरी में चल रे मनवा, सतंग वाली नगरी में श्री प्रभु प्यार के जल रे मनवा, श्री प्रभु प्यार की जल रे मनवा। सतंग वाली नगरी में चल रे मनवा, सतंग वाली नगरी में चल रे मनवा। ई मन के चाहेला संहारे के अच्छा अच्छा जगह में, ई मन के चाहेला अपन अथी देवे के सत्संग में। कभी नहीं मिली बेटी, जब तक मिला था कहाँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद नानी जी, प्रणाम। और एक और श्रोता है लाइन पर, आइए उनको हम सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। हेलो,
2: नमस्ते पूजा जी।
1: नमस्ते देवी जी, कैसी हैं आप?

0: ठीक है। और आप?
1: मैं भी ठीक हूँ। आइए बताइए, आपको क्या कहना है?
0: तो सबसे पहले मैं कुछ गाकर सुनाती हूँ।
1: गाइए।
0: जो दिल से निकले वो है गीत, जो दिल को छूले वो है गीत, जिसे सुन के दिल पिघले वो है गीत।

0: ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, फिर से नहीं गा
1: बहुत
0: पाई
1: बहुत
0: लेकिन बहुत अच्छा
1: धन्यवाद।
0: लगता है। ओके, संगीत तो हमारा जीवन है। हाँ, दुख सुख का साथी है संगीत। अगर एक गाना को ध्यान से सुनेंगे तभी उसका मतलब समझेंगे ना। ध्यान से फोकस करेंगे उस पर तब हमें वो गाना पसंद आ जाता है। उसे दिल, हमारा इमोशनल दिल को छू लेते हैं, वही गाना सच्चा गाना है। ओके, शुभ संध्या पूजा जी।
1: शुभ संध्या आपको भी। देवी जी इतनी हंस हंस के बात करती है, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपको
1: अच्छा
0: भी।
1: धन्यवाद। आइए एक और श्रोता है लाइन पर, उनको हम सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। हेलो धनी जी, नमस्ते।
2: नमस्कार पूजा जी,
1: नमस्कार, कैसे हैं आप?
2: आप अच्छी है?
1: जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
2: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने देखा आपने बिरयानी अकेले खा लिया।
1: बिरयानी। जी वो
2: अच्छा छोड़िए, संगीत के बारे में बोलते हैं एक दो बार।
1: जी
2: पूजा जी, संगीत एक मरीज के लिए बहुत काम आता है
1: जी
2: जी। एक औषध की तरह, कुछ कुछ एक औषध की तरह उसे तसल्ली मिलती है गीत सुनकर। कोई गीत ही सुनकर उसे बहुत तसल्ली होती है। कोई हम देखिए, बहुत से लोग अकेले जीते हैं तो उनके लिए बहुत काम आता है रेडियो। मुझे तो रेडियो जब जाग जाता हूँ, सवेरे उठ जाता हूँ, तो मेरे रेडियो मेरे पॉकेट में रहता है, मेरी ट्रांसिस्टर।
1: जी
2: और रात को भी जब सुनहरे पल मिलता है तो मैं सुनता हूँ गीत, बहुत अच्छा लगता है पुराने गीत सुनकर। तो यही कहता हूँ कि संगीत बहुत महान है, क्योंकि एक अलग सा हमारे लिए एक मनोरंजन होता है जी। टेलीविजन देखकर, रेडियो सुनकर, अन्य गायकों को सुनकर तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। ये एक दोस्त की तरह है, एक साथी, एक दोस्त की जैसे हमारे जीवन में, उदासीपन में जी बहुत सहारा आता है। यही कहूंगा, धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद धनी जी इस इन विचारों के लिए। आइए एक और श्रोता है लाइन पर, उनको हम सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। और सभी को मैं अवसर दूंगी, बस धैर्य की मांग है आप सभी से।
0: हेलो
1: हेलो,
0: पूजा जी, ठीक
1: हेलो, नमस्कार जी, कैसी हैं आप?
0: हूँ, आप कैसे हैं?
1: मैं भी ठीक हूँ।
0: आपकी बिरयानी तो बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार लगा। हाँ, कटहर डाल करके बहुत अच्छा लगा, बहुत
1: धन्यवाद।
0: बहुत। हाँ, और ही है संगीत दिवस में आप सभी को ढेर सारा प्यार।
1: धन्यवाद।
0: हाँ, गीत संगीत के कभी भुलाना नहीं चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आदि अंत से चला आ रहा है, चाहे मंदिर में गाना है, चाहे कोई के किसी दुख में, वो कोई के रोवा देता है, कोई के हंसा देता है। गीत गीत ऐसा है कि सभी गीत को मोह लेता है, मन मन मोह लेता है। हम भी एक लाइन गा देते हैं,
1: गाइए।
0: मन

सरस्वती मुझको वरदान दे माता सरस्वती मन के मंदिर।

0: धन्यवाद पूजा जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी कमला जी। आइए नवीन जी को हम सुनते हैं। शुभ नमस्कार आपको नवीन जी।
2: शुभ नमस्कार पूजा जी।
1: कैसे हैं आप?
2: ईश्वर की कृपा है, मैं चंगा हूँ, मैं ठीक हूँ और आपसे बात करने को तैयार हूँ।
1: और चाची जी भी ठीक हैं।
2: यदि पथ पर होते न सूर तो जीवन का आभास न होता, मंजिल मंजिल रह जाती, मानव का इतिहास न बनता। जो कुछ बोलना है संगीत में बोलो पूजा जी। तो आपने मौका दिया, मैं संगीत का कुछ महत्व बनाने की चेष्टा करता हूँ। देखिए कभी कभी हम शब्दों में अपना संदेश नहीं कह पाते, पर एक छोटी सी धुन हमारी परेशानी, हमारे मन की बात या उदासी को समझ लेती है और हमें सुकून देती है। एक छोटी सी धुन। संगीत को एक सजीव साथी के रूप में देखना चाहिए। संगीत हमें आनंदित करता ही है, यह एक उपचार भी है आत्मा के लिए। आत्मा को शांत प्रदान करने का माध्यम संगीत है। जैसे शुरुआत में मैंने कहा, जो कुछ बोलना है संगीत में बोलो, यह वाक्यांश मैं बहुत दिनों से मैंने सुना है। तो मैंने सोचा तो संगीत में बोलता, संगीत दिवस का दिन है ना, अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस। तो कहना चाहता, मैं यह कहना चाहता हूँ कि शब्दों में शक्ति है। यह वाक्यांश जो कुछ बोलना है संगीत में बोल जाए, कितना अगर हम एक मधुर शब्द बोले, यानी किसी को हम एक मधुर शब्द हम किसी को आकर्षित कर सकते हैं। जैसे कहे कोई आया घर पे या कोई है, आइए आइए कैसे हैं, उनको यानी मधुरता से बोले और अगर ये आओ आओ आओ आओ मैं निकल रहा हूँ तो इत्यादि। ये तो ये शब्द का जो भाव है, जो शक्ति है, वो खो देते हैं। हम किसी की हम यानी कि जो आदमी आए हम हमारे पास हमको भगा रहे, ऐसा होता है आजकल के जीवन में। हाँ मौसी तो वो बिना हाथ जोड़े नमस्ते करते हैं, नमस्ते नमस्ते इत्यादि, अभी हम निकल रहे हैं। तो अगर हम संगीत में बोले, भाव से बोले, मधुरता से बोले, मधुर वाणी से बोले, तो हम एक साथ हो सकते हैं। मैं कहूंगा कि ये संगीत हमारे जीवन का अभिन्न अभिन्न अंग है, इसे सीखें और जो कुछ बोले संगीत में बोले। पूरी उलझन पढ़ लेती है ये। मैं तो कहूंगा बस आज के लिए, पर आज कुछ पल अपने लिए निकालें और मन की भाषा संगीत को सुने। जो कुछ बोलना है संगीत में बोलो पूजा जी। धन्यवाद आपने मुझे मौका दिया और मिलेंगे गरम गरम नाश्ता के दिन शुक्रवार।
1: जी अवश्य, और बहुत बहुत धन्यवाद इन प्रश्नों के लिए।
2: धन्यवाद, शुभ संध्या, नमस्कार छोटी सी दुनिया में फिर कभी।
1: नमस्कार आपको भी। आइए एक और श्रोता है लाइन पर, उनको सुनते हैं कि उनका क्या कहना। हेलो।
3: हेलो पूजा जी, नमस्ते।
1: नमस्ते जी, कैसी हैं आप?
3: ठीक हूँ पूजा जी। मैं संगीत के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ और एक थोड़ा सा गाना भी गा दूँ।
1: चलिए गाइए गाइए गाइए।

पहचान है गर याद रहे। और मैं बोलती हूँ, जो म्यूजिक है ना और गाना है, कभी रुलाता है, कभी खुश कर देता है, अभी कभी नचा भी देता है। और संगीत ना होता तो कैसा होता ये दुनिया, अंधेरा ही अंधेरा रहता। और जो सब परेशानी होते हैं,

0: गाना सुनते हैं, थोड़ी सी दिल की तसल्ली मिल जाती है संगीत
1: अजगीत, और बहुत बहुत
0: सुनकर।
1: धन्यवाद इस गीत के लिए। मैं इस गीत को बहुत पसंद करती हूँ। मैं भी अभी यही गीत गाने वाली थी, पर कोई बात नहीं, आपने गा लिया, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।
0: बात नहीं, आप भी गा दीजिए, हम सुनने
1: हाँ,
0: वाले
1: मैं भी गाऊंगी
0: सुनेंगे। हाँ,
1: जी। और
0: हैप्पी
1: ये
0: म्यूजिक डे सबको।
1: आपको भी हैप्पी म्यूजिक दे, और
0: हाँ,
1: शुभ संध्या आपको।
0: आपको भी पूजा जी, मुझे लाइन मिल गई, खुश हो गई,
1: लॉटरी मिल गई। अच्छा
0: लॉटरी
1: जी,
0: मिल गई।
1: धन्यवाद।
0: अच्छा, बाय
1: बाय बाय। यूं ही
0: बाय।
1: हंसती और खिलखिलाती रहे, बस यही दुआ करते हैं। और
0: हाँ,
1: धन्यवाद आपको।
0: आपको भी बाय।
1: बाय बाय। या ये हम सुनते हैं हमारी प्यारी कमला जी से। हेलो हेलो,
0: हेलो पूजा जी,
1: नमस्ते कमला जी, कैसे हैं आप?
0: ठीक हूँ ठीक हूँ। आप हंस हंस के बात कर रही है ना, तो मुझे भी हंसी हंस हंस हंस के मैं भी आपसे बात कर
1: जी
0: रही हूँ। चाचा ने
1: चलिए।
0: बहुत हंसा दिया, चाचा लक्ष्मण ने बहुत हंसा दिया।
1: जी
0: हाँ, आपका बिरयानी बहुत मजेदार था, बनाया
1: धन्यवाद।
0: आपने, खाए हमने।
1: जी जी
0: हाँ,
1: धन्यवाद।
0: अच्छा, तो मैं म्यूजिक डे के शुभ अवसर पर सबको विश करती हूँ, गुड विशेस भेज रही हूँ। और हमारा तो जीवन ही है, गीत ही है ना, संगीत। गीत नहीं होगा तो हमारा तो जीवन फीका पड़ जाएगा।
1: ये तो है।
0: जब मैं सवेरे सवेरे जागती हूँ, मैं 4 बजे जाग जाती हूँ सुबह में, तो सबसे पहले मैं नहाने जाती हूँ। फिर मैं अपना रेडियो, अपनी भक्ति, अपना दिन की शुरुआत करती हूँ भक्ति गानों से। मैं अपना मोबाइल डाटा ऑन करती हूँ, उसमें गाने रोते हैं, मैं अपना ऑन रेडियो करती हूँ, और मुझे भक्ति गाना, माँ काली के सभी गाने, मुझे दुर्गा माँ के गाने से शुरुआत करती हूँ, अच्छा लगता है। मंदिर साफ करते करते मैं झाड़ू लगाती हूँ, पोछा करती हूँ, भगवान को सजाती हूँ, चराग सब धोती हूँ, उनको मैं बहुत रेस्पेक्ट देती हूँ अपने मंदिर में भगवान को।
1: मान लीजिए
0: फिर
1: गीत
0: हाँ,
1: सुन
0: फिर
1: सुन के आप सारा
0: सुन
1: काम
0: सुन
1: निपट जाता
0: के,
1: है।
0: हाँ, वो 4 से 6 बज जाता है, मैं अपने भक्ति गीतों ही में लीन रहती हूँ, सुनती हूँ। फिर बच्चे को भी, आरोही को भी मैंने आदत डाली है, उठ के नहा के पूजा करना, तुलसी माँ को, सूर्य देवता को जल देना, सब ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, कितना अच्छा लगता है सुबह सुबह ये गाना सुनने को न्या पूजा जी। हाँ, और ये कितना अच्छा लगेगा है सब गाने सुन सुन के। तब फिर किचन में जाती हूँ, चाय पानी वगैरह ये सब सुन सुन के, म्यूजिक ही में मेरा जीवन गुजरता है। इसीलिए कहते हैं कि संगीत संगीत हमारे संग दिन भर रहता है, हमारे रग रग में, हमारे दिल में, हमारी धड़कन में, हमारी हम ही ने समाया हुआ है ये संगीत। चाहे
1: जी
0: वो खुशी का मौका हो, चाहे वो दुख की घड़ी हो, अप एंड डाउन हो जिंदगी में, सब में संगीत, हर तरह के संगीत। मुझे संगीत बहुत प्यारा लगता है, पसंद है, मैं बचपन से रेडियो पसंद करती हूँ, मुझे गाने बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं आपको आपको विश कर रही हूँ, सबको, सभी सुनने वालों को विश करती हूँ हैप्पी म्यूजिक डे, हैप्पी योगा डे, और शुभ संध्या आपको।
1: शुभ संध्या आपको भी, और आपके इस विचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कमला जी।
0: धन्यवाद पूजा जी।
1: धन्यवाद आपको भी। आइए, कौन श्रोता है लाइन पर, उनको सुनते हैं। हेलो,
2: हेलो, नमस्ते।
1: नमस्ते बादिला जी, कैसे हैं आप?
2: सब चल रहा है? ठीक से चल रहा है?
1: चल रहा है
2: धीरे धीरे
1: टकाटक।
2: बोल, धीरे धीरे चल।
1: जी बोलिए
2: सब
1: बोलिए बोलिए।
2: छोटा लोग के नमस्ते करत है। तनी तार देर से आईली है, और अच्छा नहीं मिला था। और
1: हाँ,
2: भाई अचिक मजे भाई, म्यूजिक हा, फूड फूड ऑफ लव एंड लाइफ, शेक्सपियर लिख ले बा, हमने बोलते हैं शेक्सपियर लिख ले बा, ओकर कोटेशन में
1: हाँ
2: ट्वेल्थ नाइट में मुको हाई।
1: हाँ
2: एगो फिल्म में जब एगो अच्छी नहीं रही तक मुझे ला म्यूजिक नहीं रही धरला कुछो नहीं बा, धरला एगो बिरयानी पका से तो ओकर में एगो एगो एगो अच्छी नहीं बा, मुझे एगो स्वाद नहीं बा। हाई दुखी दुखी मोहतिया में जब अच्छी नहीं रही एगो स्वाद नहीं बा। बाजा बोले पीस ऑफ माइंड, और ला म्यूजिक सब ले अच्छी देखुबे करे अच्छी लॉन्ग लेते, और लामेरिक है एका लोग अमेजोन में कर ले रहा सब में है, अंगले लोग लेके

0: निमन से अथी कर दिलन सक मोडर्निजे कर दिलन सब और एगो सैबुल अजंता का एलोरा केव में लो अथी में लैंड में तो बहुत सैबुल अथी के लामिजिक के कनी कितना बरीसन अथी से हो मतलब और हम लामिजिक के गो बहुत दिन से कुछ रहला एगो स्वसंता हो गल तमने के घरे हमेशा लामिजिक रहेला तो हम एगो अथी तरह का एगो अथी सुनाव एगो सच्चे है एगो जाफे से हो कि हमने लगे लामिजिक चलते रहला था एगो चिराय को मजे जहां बैठा रहला ते अपन एगो खोटा बना देले बा मजे चिरैवा मुकास अच्छी सुदेला और भारतनाट्यम में होल बहैला और सेट मिल आ सोलोंगास बा ले मोन में अप्रोक्सीमेटली ते अपन अपन भाषा में है अच्छी डाले लन लामिजिक आई ट्रेडिशनल रह लागे तभी मॉडर्न हो गल बा लाफाचिक रबा काम धाम करके तब अच्छी करबा सब अच्छी चल जला लाफाचिक चल जला और सब कोई के नमस्ते करते है चोरो हम निहाय अच्छी करी ला सा कुमार जहर जिमोस के आटान करी ला सा है मीठा मीठा वादी हम अदला
1: धन्यवाद
0: सब कोई के को नमस्ते करते है और वो एगो सौते दे दिया खा ले पी ले दुनिया में तो है ये बा खा ले काम कर खा ले पी ले बाई सोना नोयन के और सब कोई के अच्छी करते है कुमार जहर नमस्ते
1: नमस्ते आपको भी चलो एगो और श्रोता बाती चलो एगो हमनी सुनब सा हेलो
2: हेलो उषा जी पूजा जी
1: नमस्ते जी नमस्ते मैं पूजा हूँ उषा नहीं बोलिए
2: खुशी में नाम ही मुझे बदल कर निकल जाती है
1: चलिए कोई बात नहीं
2: संदी संगीत दिवस की सभी को शुभकामना अभिनंदन और खुश संगीत थी में मग्न रहे यही हमारे दवा है हाँ तो मैं साथ साथ माँ सरस्वती से ये प्रार्थना करती हूँ सभी के लिए जो हम लोगों को दे रहे हैं सिखा रहे हैं उसकी देन है माँ सरस्वती को एक धन्यवाद के रूप में एक प्रार्थना
1: बोलिए।

0: पूजा जी,
1: हम्म,
0: माँ सरस्वती ने हम लोगों को संगीत के रूप में बहुत कुछ दे दिया है। वही हमारे जिंदगी का सबसे अनमोल रत्न है, जो हम लोगों को कितने दुख में रह कर भी संगीत जब सुनते हैं तो मन खुश हो जाता है, मन का चैन मिल जाता है। तो मैं सभी को संगीत दिवस की अभिनंदन शुभकामना करती हूँ। मग्न रहे, खुश न रहे, धन्यवाद। आपको भी
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: धन्यवाद
1: आपको,
0: पूजा जी, जो मुझे लाइन मिली।
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद, शुभ
1: धन्यवाद,
0: शांति, शुभ सप्ताह, शुभ रात्रि।
1: शुभ संध्या आपको। चलिए एक और श्रोता को हम जो है अवसर देते हैं और फिर हम बढ़ेंगे त्योहार पसंद कार्यक्रम की ओर। प्रणाम श्यामा जी।
2: प्रणाम जी, संगीत दिवस आपके लिए मंगलमय हो,
1: आपको
2: शुभकामनाएं हैं, बधाइयों हैं।
1: भी।
2: देर हो गई, क्यों देर हो गई आपको तो पता है, मेरे भाई बहन विदेश में रहते हैं, इसी समय उनको फोन करना था। तो कैसे कहते हैं, हवा हेलना तो नहीं कर सकती हूँ ना।
1: जी
2: तो मेरा कहना ये है, जो संगीत है ना वो जीवन है, जो हमें भगवान की ओर से मिला हुआ एक वरदान है। जैसे हम दर्द के सुर में भी गाते हैं, खुश होते हैं तब भी गाते हैं, गम के अवसर में भी गाते हैं। हाँ, तो संगीत जीने की कला है पूजा। हाँ, जैसे कि प्रकृति हमेशा संगीतमय है, हमेशा से संगीतमय है, हवा की लहर लहर में, धरती की कण कण में संगीत है, जिधर भी सुनो संगीत है, पंछी के पंचम स्वरों में संगीत है। हाँ, गीत सुनकर पैर छिड़क उठते हैं, जैसे कि जो नृत्य करते हैं वो तो गीत सुनकर चुपचाप नहीं रहते हैं ना। अब बंसरी की तान ही सुनकर पशु पक्षी मुग्ध हो जाते हैं, आपको
1: हाँ
2: पता है।
1: जी,
2: हाँ, तो संगीत में इतनी जादू है, इतने कर्ण प्रिय है, मन भावन है कि रहा नहीं जाता है, और हमें दुख सुख सब में काम आता है संगीत। जब हम दुख में होते हैं तब भी हम गीत गाते हैं, सुख में भी होते तो गीत गाते हैं, उस प्रकार के गीत होते हैं ना। हाँ, तो मैं एक टुकड़ा सुना देती हूँ।
1: जी सुनाइए।
2: दिल छेड़ कोई ऐसा

0: नहीं, बस मेरे लिए पूजा, क्योंकि बहुत दिनों से ये गाना मैंने नहीं सुना है, फरमाइश करती हूँ तब भी नहीं मिलता है। ये हमारे समाज के गाने हैं ना, अब कहाँ ऐसे से गाने मिलते हैं।
1: नहीं मिलेंगे, जब मैं अगले शुक्रवार को आऊंगी तो मैं अवश्य आपके लिए ये चलाऊंगी, ठीक है?
0: अच्छा, खुद का वो फिल्म है इंस्पेक्टर,
1: इंस्पेक्टर। चलिए मैं आपको,
0: तो हेमंत कुमार का गाना हुआ है, गाया हुआ है, तो अगर हो सके तो आप चला देना। ऐसे से तो बहुत से गाने हैं गीत पर, लेकिन अवसर नहीं मिलता है कभी फरमाइश करने को। और कभी देखिए ना, मैंने हर बार अपने भाई बहनों से कहा है कि 4 बजे के लगभग शनिवार और रविवार को मुझे फोन मत करना। बता कर मेरी बहन ने केवल 4 ही बजे मुझे फोन किया, तो मैं तो कैसे हृदय महसूस कर रह गया मेरा।
1: नहीं कोई बात नहीं, और एक बार फिर से आपको जो है संगीत दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: आपको बराबर है, हम संगीत से संगीत में जीते हैं, संगीत लेकर उठते हैं और जीते भी हैं
1: जी।
0: ये हमारे जीवन में बहुत काम आता है, आपको पता है, हम जीना सीख जाते हैं इससे। तो इसी से हम जीते हैं ना, वो कहते हैं ना, हम दर्द में भी गाते हैं और खुशी होकर भी गाते हैं, सब में गाते हैं। जब हम बचपन में थे ना, तो संगीत कैसे गाते थे, संगीत में गाते थे, तो सबसे पहले तो हम मंत्रों का उच्चारण करते थे, क्योंकि हमारे समय में तो फिल्मी गाने उतने नहीं थे ना।
1: नहीं थे जी।
0: हाँ, तो पिताजी ने क्या सिखाया था, ये रघुपति राघव राजा राम ये वाला, और वो वचन वाला जिसे कहते हैं राम वाला जो वचन की बात है, ये सिखाते थे। और वो था त्वमेव माता च पिता त्वमेव। अभी हम पलंग ही पर थे तो हम बचपन ही से हमने गाना सीखा अपने पिताजी से। तो जब हम सोचते हैं संगीत के बारे में, तो हम तो बचपन ही से कण कण में हमारे शरीर में ये सब भरा हुआ है। तो पुराने समय को तो हम नहीं भूल, हमारे समय तो रेडियो नहीं था, आपको पता है ना, हम तो ग्रामोफोन द्वारा गाने सुनते थे उस समय के गाने। शमशाद बेगम के गाने, सुरैया के गाने, नूरजहां के गाने, अब कहां नूरजहां के गाने हैं। एक बात अगर मैं कहूंगी तो शायद आपको नहीं पता है, एक गाना है सुरैया नूरजहां का, सुन

0: ऐसे से गाने कहाँ मिलता है पूजा,
1: नहीं
0: नहीं मिलता
1: मिलता,
0: है।
1: नहीं है
0: हाँ,
1: मिलता।
0: दिल छूने वाली बात है ना। ये बंसुरी की तान है, ये बांसुरी के पर गाने बहुत से थे उस समय के, ढोलक पर गाने थे बहुत उस समय के ना, अभी नहीं है ये सब। तो बहुत धन्यवाद आपने मुझे मौका दिया, नहीं
1: धन्यवाद
0: तो मौका नहीं मिला कहाँ आपको पता चलता हम। हाँ,
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद
0: ओके, धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: हर पल का साथी, हर दिल की आवाज, खुशियों का रंग और यादों का साज, हंसी हो या गम ये रहता है साथ, संगीत से ही महकती है जीवन की हर एक बात। हैप्पी म्यूजिक डे फ्रॉम MBC रेडियो।
1: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम पैसे कमाने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि खुद के लिए समय निकालना भूल गए हैं। लेकिन याद रखिए, जिस शरीर ने आपको सारी जिंदगी साथ देना है, अगर आप उसी का ख्याल नहीं करेंगे तो सफर भी अधूरी रह जाएगी, तो सफलता भी अधूरी रह जाएगी। रोज सिर्फ 20 मिनट योग और कुछ पल अपने पसंदीदा संगीत के साथ बताइए।

देखिए आपकी सोच और आपका आत्मविश्वास और आपके मुस्कान कैसे बदलने में बदल जाती है। जिन जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी प्रमिला जी हैं काठोबोन से, अपनी पिताजी को बहुत याद कर रही हैं और कह रही हैं कि उनके पिताजी भी बहुत गाते थे, गुनगुनाते थे। तो चलिए, जो है संगीत के साथ हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। और हम भी जो हैं आरजेज के जीवन भी आप सभी से जुड़ी हुई हैं इन्हीं गीतों के साथ। और माला जी हैं पिचित खित से, और गीत की फरमाइश कर रही है। तो चलिए, आप सभी के नाम एक गीत भविष्य में चलाऊंगी। और इसी के साथ हम और आप कार्यक्रम के अंत तक आ पहुँचे हैं। मैं भी यही कहूँगी, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, अगर याद रहे।

0: ए संजू, ए बिच्चू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ।
1: ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला
0: ऐसे नहीं, बोलो मैं।

ऐसे ही गुनगुनाते रहिए। काहे कि अब हम निबर हफ्सा त्योहार प्रसिद्ध कार्यक्रम में सबको के नमस्ते और प्रणाम। त्योहार प्रसिद्ध कार्यक्रम में सबको के स्वागत बाते। तो चला अभी तनी सुन गमट कर हफ्सा, काहे कि भोजपुरी गीत में सुने के बड़ी अच्छा लगेला और गमट के गीत नाचे के मजबूर कर देवेला, है ना। अभी सब कोई तो जैसे हमनी जानी ना सा दिमाग के दिन बा, सब कोई पकावत हवन सा, तब पकाते पकाते नाच। हाँ चला अभी बाई दिला जी बोलना ना, खाले पीले जिले भैया जिंदगी में कौन सी बार कुछ होने बाते। चला ओकर नाम और जितना कोई हमनी संगे जुड़ल हवन जा, सब कोई के बुलाब जा, तो हर स्वागत बाते कहाँ परी तो हर पसंद कार्यक्रम में।

अरे का बा है ये तबा, खाले पीले जिले भैया। चला अब ये गौर गीत हमनी सुनब सा, और गीत वा के मांग कर ले बाते माला जरूरी जी अपन बेटा जो है दीपक, बेटी रीमा और पति हवन ईश्वर, और पिछले से वो हमनी के सुनत हवन और बोलत हवन आज तक गमट हुए गमट होई। तो चला अभी हमनी सुनब सा बड़का मामा।

अब तक खाली सास बहू के ही कहानी चलेला, जहाँ देखबा सास बहू के ही कहानी। अभी जोन हाँ आज खाली संगीत दिवस नहीं बाते, आज तो योगा दिवस भी बाते। जितना कसरत करबा उतना तो हर स्वास्थ्य खातिर बहुत अच्छा हो। सुबह सुबह उठ के तनी सुन चाहेला कसरत करे के, तबे तो नीमन स्वास्थ्य मिली। ये तो हमनी के बिस्वानी जी जोन हाँ गैले बाते ना जुम्बा। आजकल के जेबा जहाँ परी जिम में जेबा तो ढेर कोई जुम्बा करेला, है ना? कहूँ द्वात कहूँ गोस, जैसे चाहेला तनी सुन कसरत करे के। तो चला ये गीतवा के मांग कर ले बाते कमला दीनू जी मदावा से, और प्यारी आरोही सीता रिहांच और उकर सभी दीनू और रामधनी परिवार के नाम, और साथ में यही गीतवा के मांग कर ले बाते गीता जी पोफिया से, बनपति रोहित, प्यारी जानवी, आदित्य आरव और उकर सब परिवार लैका लोग खातिर, और जितना कोई हमनी के सुनत हवन जा चाहेला जुम्बा करे के। ए देखा पकाईते पकाईते जुम्बा कर। हमनी के संगे जुड़गल हवन जा बिस्वानी दीपवा जी, हमरा सुनत हवन तो ओकरा बोला प्रणाम।

अभी खूबे जुम्बा करला, बड़ी अच्छा। अभी थकान होल ना, अभी चला अभी हमनी सुनब जा गीता गजादर जी के गीत समधी के लगल हिचकी। हिचकी लगी तो हमनी के दादी लोग एगो एगो धागा से डालत रहलन जाना मुँह में कि कपार में, जब मैं हिचकिवा थम जाए ना, तो हमनी के एगो दादी बाते उ सच में एगो हिचकी है। वो डाल दिए हमार गीत सुनत है और ये गीतवा के मांग कर ले बाते शांता दादी, और बड़ी डांट डांट के हमरा बोले बाते हमार गीतवा डाल दिए हैं। तो ये गीतवा और सब परिवार खातिर जपत रोय पंचम और ओकर सब फावेश और सब लैका लोग खातिर जितना कोई हमनी के सुनत हवन जा। तो चला है गीतवा हमनी सुन अब सर शांता जी के देने से।

अब ये गौर गीत हमी सुनब सब और है गीतवा के मांग कर ले बाते अनीता जी त्रियोले से अभी जोन है तारल भात पकावत हवन जीरी प्रिय पकावत हवन जा और ये जोन है बता धोगे धोगे आवत हैं अभी तो हर पसीन सुने के एगो गीत के मांग करे के और है गीतवा खास तौर पर दमाद वेद बेटी अंजू पूजा और सचिन खातिर और ओकर एगो छोटी बेटी बाते नातिनियन बाते सिया खातिर तो चला है गीतवा हमनी सुनाब सा लन्ना के एगो गीत है।

सबसे बड़ा सुंदर तोहर मन बाटे, काहे कि जितना मीठा मीठा बोलब, जितना निमन से आदमी संगे रहब, तब ये तो सब कोई तोहरा पसंद करी ना। तो चला अभी तोहर पसंद हुए के गीत हमनी अभी चलावत हैं जा, और अभी शोभा जी जुन्हा पॉम्पले मुझ से हवन और बोलत हवन, 20 में बैठ के तोरा सुनत हैं, हमारे को गीत डाल दिया, बड़ा मन बाते है गीतवा सुने के, काहे दिलवा लगाई ल, नहीं चाहे ना दिल लगाए के, चाहे ना इसने हुए रहे के, है ना, चाहे ना सब में प्यार बांटे के। तो चला सुभा जी तोहर खातिर खास तौर पर, और बोला था वन आज तो बिरयानी पकड़ ली बाते, चला तोरा बुरब जा सुभार, और जितना कोई अभी खाना खात हो जा, भोजन करत हो जा, बोलब जा सुभार।

तौर पर रेहाना जी नोथदाम से और उकर दोनों संगतिया हवन जासुरेखा और माला फाउदा जी दमाद से उकर बड़ा शिकायत बातें

0: बात बोला। चला अभी हैप्पी बर्थडे मानव देने से और मानव और विव्यान के जन्मदिन के अवसर पर रोकर पत्नी अंजलि, मयूर बातों कर भाई या लक्ष्मी और प्रेम दत्त जी कर पापा और ये गीत के मांग कर ले बातें विश्वानी जी पुदो आमलेट से।
1: और जितना कोई आज अपन जन्मदिन मनावा था वंजा पूरे एमबीसी टीम में देने से हैप्पी बर्थडे जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।

ये हवन हमने के सुना था वन जा हाउ आर यू गुड मॉर्निंग बाना काम बेबी हाउ आर चित्रा जी खातिर विजय बंदन जी और साथ में नवीन लक्ष्मण जी प्यारी चाची चित्रा जी श्यामा रघुनंदन जी और साथ में हैं वीना रामपुल जी नमस्ते आशा जानू जी हवन कर्म।

तो चला मीठा मीठा बोल और गीत के मांग कर ले बातें इंदिरा लौटन जी मदर बिया से सभी ओकर परिवार खातिर साथ में बातें शोभा जी वकवा से अनुषा रवि और ओकर सभी पुरन परिवार के नाम

संगे हमनी कार्यक्रम के अंतक चलाल हैं जान टीम गीत नानी सुखलाल जी खातिर और साथ में धनी जी बुआशेगी से सुनत हमन जा और लक्ष्मी जी बॉम्बू से बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने खातिर और देवे खातिर एक संगे पूजा का अनुमति दा हमार दिने से सब कोई के नमस्ते स्वस्थ रहिए सुरक्षित रहिए।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिलाते चलिए, शाम के ठीक 6 बजे हैं।

रविवार 21 जून 2026 के सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। संगीत के वह सुरों और ताल का मेल नहीं बल्कि आत्मा की वह अनकही भाषा है जो हर दिल को गहराई से जोड़ देती है। ये एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो सीमाओं, भाषाओं, समय की दीवारों को पार कर मानवता को एक सूत्र में पिरो देती है। विश्व संगीत दिवस के इस अवसर पर दो युवा कलाकार अपनी प्रतिभा और समर्पण से इस अमूल्य विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज दुनिया भर में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। कुद्दो में आयोजित विशेष योग सत्र में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। मॉरिशस में भी योग के प्रति लोगों का आकर्षण लगातार बढ़ रहा है। इस अवसर पर योग प्रशिक्षक उर्मिला और उनके विद्यार्थियों ने योग के लाभ, लचीलापन और तनाव प्रबंधन पर अपने अनुभव साझा किए। मॉरिशस में मानसिक धर्म अवकाश यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल सहित

0: नई सामाजिक नीतियों ने जनता का ध्यान आकर्षित किया है। इस प्रस्ताव के समर्थन में पिछले 10 वर्षों से संघर्ष कर रही प्रिसिला मोती ने बजट भाषण को टेलीविजन पर देखा। बंदरगाह में बड़ी ड्रग बरामदगी, एमएससी वीगो जहाज से 48 लाख रुपए की संदिग्ध कैनबिस जब्त। आजसू की संयुक्त कार्रवाई में दक्षिण अफ्रीका से आए मालवाहक जहाज पर मादक पदार्थों की तस्करी की साजिश का खुलासा। रिजवी ओक्टावी में सनातन सांस्कृतिक सम्मेलन का भव्य आयोजन, शिक्षा, सनातन मूल्य और नशा विरोध पर गहन विमर्श। भारत मॉरिशस सांस्कृतिक संबंधों को नई मजबूती, भारतीय विद्वानों की उपस्थिति से कार्यक्रम को मिली अंतर्राष्ट्रीय गरिमा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और ईरान के बीच प्रत्यक्ष वार्ता का नया दौर आज स्विट्जरलैंड में शुरू होने वाला है। इस बीच ईरान ने इजरायली हमलों के जवाब में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से बंद करने का दावा किया है तथा योग दिवस 2026 पर वैश्विक संदेश, स्वास्थ्य, शांति और संतुलन की ओर एक कदम। श्री नरेंद्र मोदी ने योग को जीवन की शांति, मानसिक स्थिरता और आत्मिक विकास का आधार बताया। वसुदेव कुटुंबकम की भावना के साथ योग ने दुनिया को एकता और कल्याण का संदेश दिया। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। आज का दिन सुरों और साधना की एक अनोखी सौगात लेकर आया है। कहीं संगीत की मधुर लहरियां दिलों को छू रही हैं, तो कहीं योग की शांत ऊर्जा तन और मन को संतुलित कर रही है। 21 जून का ये पावन अवसर हमें याद दिलाता है कि जब सुर और साधना साथ चलते हैं तो जीवन में शांति, स्वास्थ्य और आनंद स्वतः ही खिल उठते हैं। इसी भावना के साथ आप सभी को योग व संगीत दिवस की शुभकामना। और आज 21 जून 2026 को विश्व भर में विश्व संगीत दिवस और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। संगीत और योग दोनों ही मानव जीवन में शांति, संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने वाले महत्वपूर्ण माध्यम हैं। विश्व संगीत दिवस के अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों, संगीत प्रस्तुतियों और जागरूकता अभियानों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का आयोजन योगा फॉर हेल्दी एजिंग यानी कि स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग विषय के साथ किया जा रहा है। दुनिया भर में लाखों लोग योगाभ्यास, ध्यान और स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों में भाग लेकर योग के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों को अपना रहे हैं। आज इसी संदर्भ में बात करते हैं योग के बारे में विस्तार से। ये एक प्राचीन विधा है जो मॉरिशस में भी तेजी से लोकप्रिय हो रही है, लेकिन क्या योग करने के लिए अत्यधिक लचीलापन होना जरूरी है? कल्याण, लचीलापन और तनाव प्रबंधन के बीच हमारी टीम ने योग प्रशिक्षक उर्मिला से मुलाकात की, जिन्होंने योग को अपना पेशा बनाया है, साथ ही उनके विद्यार्थियों से भी बातचीत की। अंजुराम लगन की रिपोर्ट पर विधिमा सिबुरन का विवरण।
1: कमल के आसन में बैठी ये महिला उर्मिला है। वो 56 साल की है, लेकिन उन्हें देखकर आसानी से उनकी उम्र 10 से 15 साल कम बताई जा सकती है। योग की ओर उनका झुकाव इसलिए हुआ क्योंकि वे उम्र की परवाह किए बिना अपने शरीर और मन में अच्छा महसूस करना चाहती थी।
2: De nos jours, tout le monde est stressé, tout le monde est émotionné, mais il existe nos besoins qu'on gère. Et je pense que le yoga aide beaucoup pour ça.
1: Pull, Shirshasan, Side Plank, kya yoga karne ke liye ek sarkande ki tarah lachila aur jhukne wala hona zaruri hai?
2: Faites tout le monde qu'à faire yoga, mais nos besoins qu'on écoute nous les corps, nous travaillons d'après nos capacités, d'après nous la force, d'après nos flexibilités. Les cas d'une classe simple, les classes comme maman, on fait une classe 2h30.
1: वैसे भी जिन्हें हम थोड़े जटिल आसन कहते हैं वे किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं होते, बल्कि सेहत और भलाई की दृष्टि से उन सभी का अपना एक विशेष महत्व होता है।
2: Ce qui m'ont remarqué, c'est beaucoup de monde en souffert les dos, souffert les reins, les coudes, ça. Et comment faire ma fusion plutôt, c'est pas du type yoga traditionnel. On travaille un petit peu plus le balance, mais c'est aide nous pour concentrer et les tonifier nos bas muscles en plus. Et après, on travaille beaucoup le corps muscles.
1: यदि उसके छात्र योग करते हैं,

0: तो वो तनाव और दर्द को दूर भगाने के लिए है। योग जोड़ों और मांसपेशियों के लिए WD-40 लुब्रिकेंट जैसा काम करता है।
1: Moi, je suis super contente de faire randonner. Depuis qu'il m'a vu une classe avec Miss, ben, moi, je vais une randonnée très longue et je ne vais pas de douleur musculaire. Et aussi, me trouver l'aide aussi sur la santé mentale.
2: Moi, si je travaille une journée et de là, je vais avoir une douleur et tout ça. Et quand je commence à faire yoga, tout ça, je vais arrêter.
0: Yoga, que liye, aapko इलास्टिक मैन या इलास्टिक वुमन बनने की ज़रूरत नहीं है और न ही किसी आसन के लिए अपने पैरों को गर्दन के चारों ओर लपेटना ज़रूरी है। बस अपने जूते एक तरफ रखने, गहरी सांस लेने और खुद के सबसे ज़रूरी पहलू से फिर से जुड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी यात्रा वो होती है जो हम अपने भीतर करते हैं।
3: संगीत जो केवल सुरों और तालों का मेल नहीं बल्कि आत्मा की अनकही भाषा है, एक ऐसी दिव्य अनुभूति जो शब्दों से परे जाकर दिलों को जोड़ती है। ये वह शक्ति है जो सीमाओं, भाषाओं और समय की दीवारों को लांघकर सीधे मन के सबसे कोमल कोणों तक पहुंच जाती है। विश्व संगीत दिवस के इस अवसर पर हम आपको मिलवाते हैं दो ऐसे युवा कलाकारों से जो अपनी साधना, प्रतिभा और समर्पण के माध्यम से संगीत की इस अमूल्य विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचा रही हैं।
4: सारंगी, भारतीय शास्त्रीय संगीत की आत्मा कही जाने वाली वह अद्भुत वाद्य ध्वनि जिसकी करुण, मधुर और भावपूर्ण स्वर लहरियां सुनकर मानो समय स्वयं ठहर जाता है। युवा सारंगी वादक हंसली अश्विन विलियन इसी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को अपने सुरों के माध्यम से जीवंत बनाए हुए हैं। उनकी उंगलियों से निकलने वाली हर धुन केवल संगीत नहीं रचती बल्कि भावनाओं की एक ऐसी यात्रा पर ले जाती है जहां शब्दों की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। इसकी प्रत्येक तार जैसे मानवीय भावनाओं के अनगिनत रंगों को अपने भीतर समेटे हुए है, कभी विरह, कभी प्रेम, कभी शांति और कभी भक्ति।
5: सौ रंग, सौ कुलिया, सौ जीविल भी, ये पे From beginning to end.
6: सौ रंग यानी सौ रंगों वाला। शुरुआत में इस वाद्य में सौ तार हुआ करते थे, पर समय के साथ इसको 39 तारों के साथ बनाया गया। इन्हीं तारों के माध्यम से हम उन सौ रंगों तक पहुंचते हैं। गायन व मनुष्य वाणी के सबसे करीब केवल सारंगी वाद्य ही है। बहुत धैर्य तथा रियाज के साथ ये वाद्य बजाना सीखा जाता है और जिस प्रकार से आप इन तारों को छेड़ते हैं, आप किसी को रुला भी सकते हैं और हंसा भी सकते हैं। यही तो है इस वाद्य का सौंदर्य।
5: इनफ को मेरे संजीव पे कुटू फासों क्यों पेज वेली मौका फेली एंड स्टील की काफे वो रिये मैं कुमार से मुंह भी होशी मौका फेली प्लोगे अवेकली सादे सामे से सामे से बूटी की ना।

जहाँ एक ओर सारंगी के सुर आत्मा को स्पर्श करते हैं, वहीं दूसरी ओर भक्ति संगीत मनुष्य को ईश्वर से जोड़ने का माध्यम बनता है। केवल 16 वर्ष की छोटी सी आयु में तविश शर्मा देवी देन अपने भजनों के माध्यम से वैष्णव परंपरा, आध्यात्मिक मूल्यों और सनातन संस्कृति का संदेश जन जन तक पहुंचा रही हैं।

0: विचारों में अद्भुत परिपक्वता। तविश के लिए संगीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि भक्ति का मार्ग है। उनके भजनों में श्रद्धा की मिठास, संस्कृति की सुगंध और आध्यात्मिकता की गहराई की अनुभूति की जाती है।
1: Como Krishna incomos jouer ce flûte, tu vas go mata incomos approcher, tu vas sakis, tu vas gopi.

जिसे श्री कृष्ण बंसी बजाना शुरू करती हैं, गौ माताएं, सखियां तथा गोपियां सभी मग्न होकर कृष्ण के चारों ओर रासलीला में झूम उठते हैं। अति मनभावन रूप से ये वर्णित भी है कि हमारे जीवन में भक्ति व संगीत का कितना महत्व है। संगीत केवल कला नहीं बल्कि तनाव को दूर करने का माध्यम है तथा आत्मा का परमात्मा से मिलने का एक साधन है।

एक ओर सारंगी के शाश्वत सुर, दूसरी ओर भक्ति की मधुर स्वर लहरियां। दोनों कलाकार अलग अलग माध्यमों से एक ही संदेश दे रहे हैं। संगीत केवल सुना नहीं जाता, उसे महसूस किया जाता है। संगीत केवल कला नहीं बल्कि आत्मा।

0: और कुद्दू में आज सुबह सैकड़ों योग प्रेमी 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एकत्र हुए। इस वर्ष की थीम यानी विषय स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग रखी गई है। जनसंख्या में वृद्ध होने के मुद्दे को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी देश महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियां जनसंख्या बदलावों के अनुरूप ढलने के लिए तैयार हों।
1: सुबह की शुरुआत ध्यान और विश्राम की तकनीकों के साथ हुई, जिसके बाद लचीलापन, ताकत और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए शारीरिक मुद्राएं की गईं। युवा हो या अधिक उम्र के, वहां मौजूद सभी लोग योग के फायदों की सराहना कर रहे हैं। ये एक ऐसा अनुशासन है जिसका उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा में सामंजस्य स्थापित करना है।
2: Moi, je fais yoga depuis 5 ans, 6 ans par là. Et il y en a beaucoup bien fait, like me devient plus flexible, more healthy and I'm very grateful for that.
3: Lever bonnet tous les jours, ça veut dire 30 minutes yoga et quand fait ça yoga là, la journée passe bien smoothly.
1: इस वर्ष का विषय है स्वस्थ तरीके से उम्र बढ़ने के लिए योग।
4: योगा ली पास जिस फिजिकल ली मोरल ऐसी ए ली बेनिफिशियल फॉर नेपोट की मालाजी पुनु लीजिए पुनु लाते पुनु कोलेस्टेरॉल पुनु डायबेट पुनु कोलोन वर्टेब्रल पुनु एवरीथिंग।
5: योगा सी पास जस्ट पोस्चर, योगा सी एन साइंस। नो अप्रेंड कमा मैंजे कमा नो अप्रेंड कमा लिव इन हार्मनी अप्रेंड कमा लिव इन हार्मनी विद द नेचर विद द यूनिवर्स।
1: इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी मौजूद थी। मॉरिशस में भारत के उच्चायुक्त अनुराग श्रीवास्तवा के अनुसार कुद्दू में आयुष उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण मॉरिशस में योग और आयुर्वेद चिकित्सा की परंपरा को कायम रखने में मदद करेगा।
6: दिस इज अ प्रोजेक्ट व्हिच होल्ड्स स्पेशल सिग्निफिकेंस टू बोथ आवर कंट्रीज एंड दिस प्रोजेक्ट विल हेल्प ब्रिंग द बेनिफिट्स of yoga and ayurveda to future generations.
1: Dr. Naveen Ramgulam ne is baat par zor diya ki badhti umr ki abadi ke sath nivarak dekhbhal ek avashyakta hai, isliye desh ke pratyek ilakai aspatal mein ek geriatric ikai ki shuruaat ki ja rahi hai.
7: According to the World Health Organization, between 2015 and 2050 the proportion of the world's population over 60 years will nearly double from 12% to 22%. As such, all countries we face major challenges to ensure that their health and social systems are ready to adapt to the demographic shifts.
1: मंत्री अनिल बेचू ने कहा कि योग मॉरिशस की स्वास्थ्य नीति का एक अभिन्न अंग है। उनके अनुसार देश भर के 71 सामुदायिक केंद्रों में योग कक्षाएं प्रदान की जा रही हैं। कार्यक्रम में योग प्रदर्शन भी शामिल थे।

0: प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी ने इसके बाद एक प्रदर्शनी का दौरा किया जिसमें भारतीय पारंपरिक चिकित्सा को प्रदर्शित किया गया है।
1: बजट 2026-2027 से जुड़ी घोषणाओं के बाद कुछ उत्पादों के दामों में बदलाव देखने को मिला है। शराब और तंबाकू जैसे उत्पादों की कीमतों में 20 जून से 10% की वृद्धि पहले ही लागू हो चुकी है। हालांकि वाइन और बियर के दामों में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई है। इसके अलावा कुछ अन्य श्रेणियों पर मूल्य वर्धित कर यानी VAT समाप्त कर दिया गया है। इनमें विशेष रूप से सौर पैनल प्रणालियां और नवीनकरणीय ऊर्जा उत्पादों को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखा गया है। मॉरिशस में घोषित विभिन्न उपायों में मेंस्ट्रुअल लीव ने विशेष रूप से लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। हमारी टीम कल दोपहर प्रिसिला मोती के घर पहुंची जो पिछले 10 वर्षों से इस सुविधा को वास्तविकता बनाने के लिए संघर्ष कर रही हैं और उस समय वह बजट भाषण टेलीविजन पर सुन रही थी। इस अवसर पर मैटरनिटी लीव और पैटरनिटी लीव सहित अन्य कई उपायों का भी उल्लेख किया गया है।
0: रिमोट में नई बैटरी डाल दी गई है, एंटीना और कान खड़े हो गए हैं, बजट भाषण शुरू हो गया है, चर्चा हो रही है, नोट्स लिए जा रहे हैं। दिलशा और प्रिशिला दो बहनें हैं, एक प्राइवेट सेक्टर में काम करती हैं और दूसरी सरकारी क्षेत्र में। दिलशा निर्माण सेक्टर में काम करती हैं और संस्कृति से संबंधित उपायों में भी उसकी रुचि है। विरासत स्थलों में निवेश पर चर्चा की गई, साथ ही नेशनल हेरिटेज ट्रस्ट फंड पर फिर से गौर करने की बात की गई जो महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारी राष्ट्रीय पहचान है। दूसरी बात हाउसिंग थी। घोषणाएं आ रही हैं, उपाय एक एक करके सामने रखे जा रहे हैं। प्रिशिला उस चीज का इंतजार कर रही हैं जिसके लिए वो एक दशक से संघर्ष कर रही थी, मासिक धर्म अवकाश यानी मेंस्ट्रुअल लीव। बजट भाषण के दौरान इसकी घोषणा नहीं की जाएगी लेकिन ये कदम परिशिष्ट में शामिल होगा। उसने जो लड़ाई लड़ी थी वो अब हकीकत बन गई है। एक सकारात्मक बिंदु मेंस्ट्रुअल लीव है जिसे मंजूरी दी गई है। 10 सालों से इसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे, हमने जेंडर इक्वालिटी पर भी जोर दिया, यानी 12 महीने का मैटरनिटी लीव जबकि पैटरनिटी लीव 4 सप्ताह से 6 सप्ताह तक बढ़ाई जा रही है। सांसद जोआना बेरांजे का भी मानना है कि पेरेंटल लीव पर भी चर्चा होनी चाहिए थी। पेरेंटल लीव गायब हो गया है, ये 1 साल का मैटरनिटी लीव हो गया है। मैं पेरेंटल लीव के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ क्योंकि ये एक गेम चेंजर होगा
2: l'accessibilité à l'emploi pour bonnes femmes. Parce que si bonnes femmes et bonnes hommes gagnent même congé, c'est-à-dire un congé parentalité, ils sont capables de décider en eux qui s'en a pour prendre combien.
0: पिज्जा आ गया है और बातचीत अब उपभोग पर केंद्रित हो गई है। बहुत से लोग कठिन स्थितियों में जी रहे हैं, इन लोगों की मदद के लिए अन्य विकल्प होने चाहिए थे। दिलशा, प्रिशिला और मॉरिशस के लोग अब ये देखने के लिए उत्सुक हैं कि ये उपाय व्यावहारिक रूप से उनके दैनिक जीवन में कैसे लागू होंगे।
1: जैसे कि आपको बता रही थी कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा यूनाइटेड नेशन ने 11 सितंबर 2014 को की थी। ये प्रस्ताव भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद 21 जून को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया और पहला योग दिवस 21 जून 2015 को विश्व भर में आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का आयोजन योगा फॉर हेल्दी एजिंग स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग विषय के साथ किया जा रहा है। इसके साथ दुनिया भर में लाखों लोग योगाभ्यास, ध्यान और स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों में भाग लेकर योग के

0: शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक लाभों को अपना रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 योग दिवस 21 जून 2026 के अवसर पर श्री नरेंद्र मोदी ने योग को मानव जीवन के लिए शांति, स्वास्थ्य और संतुलन का आधार बताया। उन्होंने कहा कि योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं बल्कि मानसिक स्थिरता और आत्मिक विकास का मार्ग है। प्रधानमंत्री ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने और इसे वैश्विक एकता का माध्यम बनाने का आग्रह किया। इस अवसर पर देश विदेश में योग कार्यक्रमों के माध्यम से वसुधैव कुटुंबकम की भावना को भी प्रोत्साहन मिला है।
1: और धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सरकाते हुए शरीर के पास सिर के ऊपर लेके जाइए, दोनों हाथ के साइड थे के ऊपर नीचे जान।
2: जीवन योग है चाहे इसका बोध हो या ना हो, महर्षि औरोबिंदो ये कहते थे। इसका हवाला देते हुए श्री नरेंद्र मोदी ने भीड़ को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि योग जब स्वभाव में आता है तो वो मानवीय एकता का आधार बन जाता है। ये दिवस हमें यही याद दिलाता है कि योग केवल शारीरिक लाभ के लिए नहीं बल्कि योग किसी आयु के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में योग मानव के जीवन का चेतना और ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। हजारों लोगों ने 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लिया जिसका विषय योगा फॉर हेल्थी एजिंग रखा गया, यानी उम्र बढ़ने पर भी योग से स्वस्थ रह सकते हैं, ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रेरणादायक तरीके से इस दिवस में भाग लिया।
3: योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध, ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है, इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। इसलिए योग आज केवल हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है इतना ही नहीं है, योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता भी है।
2: जबलपुर मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी एक वृहद योग सत्र में हिस्सा लिया। उन्होंने लोगों से योग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की हिम्मत दी।
4: सक्रिय सभी योग साधकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज हम यहाँ भारत की उस महान परंपरा का उत्सव मना रहे हैं जिसने मानवता को स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाया। योग शब्दों का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना, ये व्यक्ति को स्वयं से, समाज को प्रकृति से तथा संपूर्ण मानवता को व्यापक विश्व चेतना से जोड़ने का सशक्त माध्यम। भारत सरकार योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए योग शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा जन जागरण के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रहे हैं।
2: जबलपुर में ही जल मलखंभ किया गया। योग दिवस को मनाने के लिए एथलीटों ने योग आसन किए, संतुलन एवं क्षमता के बेहतरीन उदाहरण दिए। इन्हें देखने के लिए हजारों पुरस्कारों की भागीदारी रही।
0: मॉरिशस कल्चरल काउंसिल ने रिजवी ओक्टावी में एक सनातन सांस्कृतिक सम्मेलन का आयोजन किया था जिसके दौरान कई महत्वपूर्ण विषयों पर शोध पत्र प्रस्तुत की गई। इनमें शिक्षा, सनातन धर्म के मूल्य तथा ड्रग के खिलाफ संघर्ष शामिल हैं। इस सम्मेलन में भारत के कई विद्वान आए हुए थे जहां पर भारत और मॉरिशस के मजबूत संबंधों पर जोर दिया गया। अभी उदय
5: वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा पर आधारित इस अंतर्राष्ट्रीय सनातन सांस्कृतिक सम्मेलन में कई विषयों पर चर्चा की गई। भारत और मॉरिशस के विद्वानों ने शिक्षा, सनातन धर्म के मूल्य, ड्रग्स के खिलाफ संघर्ष जैसे विषयों पर शोध पत्र प्रस्तुत किए गए।
6: L'objectif de Barmans est comme c'est pour réunir et promouvoir le Sanatan Dharma pour réunir tout le monde du monde, surtout les jeunes, parce que de nos jours, on a beaucoup d'influence sociale. Je vais choisir Maurice, parce que Maurice, c'est un pays qui a beaucoup d'opportunités.
5: इस सनातन सांस्कृतिक सम्मेलन के दौरान भारत और मॉरिशस दोनों का एक ही उद्देश्य रहा, सनातन मूल्यों तथा संस्कृति से मॉरिशस की धरती को समृद्ध करना। भारत खासकर विश्व महासंघ ट्रस्ट काशी के ब्रह्मराष्ट्र एकम के विद्वान परम पूज्य डॉक्टर सचिंद्रनाथ जी महा

0: राज जी ने अपने वक्तव्य के माध्यम से नौजवानों को प्रेरित किया।
1: क्या हमने कभी सोचा है कि इस बीच में हमने अपने जीवन को कहां ध्यान लगाया, क्या हमने किया? अभी गौतम जी ने बताया कि जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, ऋषि का मतलब होता था कि जो शोध करते थे, जो लगातार बेहतर जीवन जीने के लिए शोध किया करते थे, और जो मुनि होते थे वो मनन करते थे उसके बारे में।
0: इस सम्मेलन में कई छात्रों ने संस्कृत भाषा में मंत्रोच्चारण भी किया।

0: यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्वानीतिर्मतिर्मम। ये एक मंत्र है जो मेरा पूरा फीलिंग बोल सकता है।
1: कार्यक्रम सांस्कृतिक सद्भाव को मजबूत करने, सनातन मूल्यों को बढ़ावा देने तथा भारत व मॉरिशस के बीच ऐतिहासिक एवं आध्यात्मिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में यह सनातन सांस्कृतिक सम्मेलन सफल रहा।

0: रेजी त्रियांग में मुंशी सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन की ओर से बहुत जल्द सनातन वाटिका कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कार्य आरंभ होने वाला है। इस संदर्भ में आज रविवार 21 जून के शुभ अवसर पर शिलान्यास विधि व भूमि पूजा का भव्य आयोजन किया गया। सनातन धर्म के हितधारक व अनुयायियों ने इस धार्मिक समारोह में भाग लिया। सनातन वाटिका कन्वेंशन सेंटर निर्माण कार्य 2 बीघा जमीन व 1500 स्क्वायर फीट पर विस्तृत होगा। करुणा लालू।
1: रेजू में सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के परिसर में 2 बीघा जमीन पर सनातन वाटिका कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा। 15,000 वर्ग फुट का एक बृहद हॉल जहां फेडरेशन की गतिविधियां चलाई जाएंगी। भवन के निर्माण कार्य की शुरुआत से पहले आज भूमि पूजा की गई। इसका मुख्य उद्देश्य निर्माण स्थल को शुभ बनाना और कार्य की सफलतापूर्वक पूर्णता के लिए आशीर्वाद प्राप्त करना रहा। भूमि पूजन से पूर्व मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत रूप से यज्ञ भी किया गया। इसमें गुरुकुल के छात्र छात्राओं ने भाग लिया अवसर पर कई महानुभाव उपस्थित रहे। सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के अध्यक्ष ने कहा, सनातन वाटिका की योजना वर्तमान कार्यकाल के पूर्ण होने से पहले साकार कर दी जाएगी। भोजराज गुड़बिन ने इस वास्ते सभी लोगों के सहयोग एवं समर्थन की मांग की।
2: तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चाहूं और वशीकरण एक मंत्र है, तजिदे वचन कठोर। जो वचन हम लोगों ने लिए थे, हमारी टीम मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के टीम ने जो वचन लिए थे, आज हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। ये हॉल 100% ये हॉल बनेगा 2029 से पहले। ये हॉल हमारा लक्ष्य है, ये बनना ही हमारे चाहिए।
1: मुख्य अतिथियों में भारत से आए डॉक्टर श्री राजर्षि भूपेंद्र मुल्दी जी उपस्थित रहे, जिन्होंने सभी हिंदुओं को संगठित होने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने छात्रों को धार्मिक पुस्तकें भी भेंट की।
0: पुचराफे में 63 वर्षीय सुभावती जगेसर की मौत से जुड़े मामले में इस रविवार को 30 वर्षीय एक संदिग्ध गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किया गया व्यक्ति भी पुचराफे का ही निवासी है। ये गिरफ्तारी फील्ड इंटेलिजेंस और नॉर्दर्न डिवीजन की सीआईडी के अधिकारियों द्वारा किए गए विस्तृत जमीनी काम के बाद की गई। गौरतलब है कि सुभावती जगेसर जो एक फैक्ट्री कर्मचारी थी और महात्मा गांधी रोड की

0: निवासी थी, शुक्रवार रात लगभग 9:25 पर अपने कमरे में बेहोश पाई गई थी। यूनाइटेड किंगडम के राजनीतिक भविष्य में आने वाले दिनों में एक बड़ा मोड़ आ सकता है। कई ब्रिटिश मीडिया रिपोर्टों के अनुसार प्रधानमंत्री सर कीर स्टार्मर अपने पद से इस्तीफा देने या सत्ता हस्तांतरण की समय सीमा स्पष्ट करने की घोषणा कर सकते हैं। ये स्थिति लेबर पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव और नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चल रही अटकलों के बीच सामने आई है। पार्टी में उनके उत्तराधिकारी को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई है। कल रात समुद्र में की गई एक बड़ी पुलिस कार्रवाई में 48 लाख रुपए मूल्य की मादक पदार्थों की खेप जब्त की गई है। ये बरामदगी जर्मन ध्वज वाले मालवाहक जहाज MSC विगो से की गई जो डर्बन से आ रहा था। ये ऑपरेशन आत्सू के नेतृत्व में और कई विशेष इकाइयों के सहयोग से संचालित किया गया।
1: पुलिस ने विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर समुद्र में एक बड़ा अभियान चलाया। डर्बन दक्षिण अफ्रीका से आ रहे मालवाहक जहाज MSC विगो को बीच समुद्र में रोका गया और फिर उस पर धावा बोला गया। इस बोर्डिंग ऑपरेशन में कई विशिष्ट इकाइयों को शामिल किया गया था, आत्सू, मॉकस, हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन और MRA। जहाज की गहन तलाशी के बाद 4.8 मिलियन मॉरिशस रुपए मूल्य के नशीले पदार्थ, जो संभवतः कैनाबिस के 3 पैकेट, बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। ये एक बड़ी सफलता है जो मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए किए जा रहे सुरक्षा अभियानों की गंभीरता को दर्शाती है। जहाज के चालक दल से पूछताछ की जा रही है। जांच अधिकारी इस अवैध खेप के सटीक स्रोत और गंतव्य का पता लगाने के साथ साथ इस तस्करी के प्रयास में शामिल लोगों की पहचान करने में जुटे हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से MSC विगो जहाज को एक सुरक्षित क्षेत्र में ले जाया गया है और वो बंदरगाह क्षेत्र के निकट तट रक्षक बल की कड़ी निगरानी में है।
0: विदेश से प्राप्त समाचारों के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच प्रत्यक्ष वार्ता का नया दौर स्विट्जरलैंड में शुरू होने वाला है। हालांकि ईरानी सेना ने दावा किया है कि दक्षिण लेबनान पर इजरायली हमलों के जवाब में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। ईरान ने यह भी कहा है कि तेहरान और अमरीका के बीच युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से हुए समझौते के उल्लंघन के कारण ये कदम उठाया गया है। अमरीका के राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति जेरी वैंस आज तड़के स्विट्जरलैंड पहुंच गए। वार्ता का नया दौर दिन के दौरान शुरू होने की संभावना थी। ईरानी प्रतिनिधिमंडल, जिसमें संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबाग और विदेश मंत्री अब्बास अराजची शामिल हैं, शनिवार शाम स्विट्जरलैंड पहुंच चुके हैं।
1: स्पेन और सऊदी अरब रविवार को अटलांटा में रात 8 बजे ग्रुप एच के दूसरे दौर के मुकाबले में आमने सामने होंगे, मौजूदा यूरोपीय चैंपियन और फीफा विश्व रैंकिंग।
0: बात करें अब वर्ल्ड विश्व कप के बारे में, फुटबॉल विश्व कप के बारे में आपको चलती चलती याद दिला देते हैं कि ग्रुप ई और एफ के दूसरे दिन के मुकाबलों में रोमांचक प्रदर्शन देखने को मिला है और कई टीमों ने अगले दौर की ओर मजबूत कदम उठाए हैं। जर्मनी नेशनल फुटबॉल टीम ने लगातार दूसरी जीत दर्ज करते हुए राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह पक्की कर ली है और वहीं नेदरलैंड नेशनल फुटबॉल टीम ने भी अपने अभियान की पहली जीत हासिल की है। अब बात करें, आज रात 8 बजे स्पेन नेशनल फुटबॉल टीम अपना दूसरा ग्रुप मैच खेलेगी। पहले मुकाबले में केप वर्डी के खिलाफ ड्रॉ के बाद अब सऊदी अरेबिया नेशनल फुटबॉल टीम से भिड़ेगी और जीत की तलाश में मैदान पर उतरेगी। इसके साथ एक और अहम मुकाबले में बेल्जियम नेशनल फुटबॉल टीम को ईरान के खिलाफ हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी, क्योंकि पहले मैच में बेल्जियम भी ड्रॉ खेलकर अंक गंवा चुका है। ज्यादा जानकारी इस रिपोर्ट में।
1: स्पेन और सऊदी अरब रविवार को अटलांटा में रात 8 बजे ग्रुप एच के दूसरे दौर के मुकाबले में आमने सामने होंगे, मौजूदा यूरोपीय चैंपियन और फीफा विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर मौजूद लाहौजा को कप वेद के खिलाफ निराशाजनक 0-0 के ड्रॉ के बाद जीत हासिल करना अनिवार्य है। वहीं उनके प्रतिद्वंद्वी सऊदी अरब, जिन्हें ग्रीन फाल्कन्स के नाम से जाना जाता है, उरुग्वे के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ खेलने के बाद एक अंक लेकर मैदान में उतरेंगी। ग्रुप की चारों टीमें फिलहाल 1-1 अंक के साथ बराबरी पर हैं, जिससे स्पेन और सऊदी अरब के बीच का ये मुकाबला दोनों देशों के क्वालिफिकेशन की उम्मीदों के लिए बेहद निर्णायक बन गया है। इस रविवार रात 11 बजे बेल्जियम का मुकाबला ईरान

जापान से होगा। यूरोपीय और एशियाई दिग्गजों के बीच ये मुकाबला ग्रुप जी के सफर का आधा पड़ाव होगा। लगातार चौथा विश्व कप खेल रहा बेल्जियम सीटल में मिस्र के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ खेलकर अपने अभियान की शुरुआत की थी। वहीं 2014 के ब्राजील विश्व कप से हर संस्करण में हिस्सा ले रहा ईरान लॉस एंजलिस में अपना लगातार दूसरा मैच खेलने के लिए तैयार है, जहां उद्घाटन मुकाबले में

0: कल सुबह 2 बजे एमबीसी टेलीविजन आपके लिए उरुग्वे और कप वेर्द के बीच मुकाबले का सीधा प्रसारण लेकर आ रहा है। 2 बार की विश्व कप विजेता उरुग्वे मियामी में ग्रुप एच के अपने दूसरे मैच में विश्व कप में पहली बार भाग ले रही टीम कप वेर्द का सामना करेगी। अपने लगातार 5वें फीफा विश्व कप में हिस्सा ले रही उरुग्वे की टीम ने अपने अभियान की शुरुआत सऊदी अरब के खिलाफ 1-1 के ड्रॉ के साथ की थी। दूसरी ओर कप वेर्द ने विश्व कप में अपने पहले ही मैच में प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोककर पूरी दुनिया से वाहवाही बटोरी है। उरुग्वे और कप वेर्द के बीच ये रोमांचक मुकाबला सोमवार सुबह 2 बजे एमबीसी 11 पर लाइव देखना न भूलें।
1: इसके साथ बढ़ते हैं हम मौसम के हाल की ओर विधिमा सिबोरन के साथ।
0: मॉरिशस में ऊंची लहरें उठने की चेतावनी जारी है जो सोमवार 22 जून को रात 10 बजे तक लागू रहेगी। मस्करिंस के दक्षिण पश्चिम पर पाए जाने वाले जोरदार एंटी साइक्लोन की वजह से हमारे इलाके पर सामान्य और ठंडी हवा की लहर बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान है कि आज रात और कल सुबह बादल घिरे रहेंगे और हवाई ढलानों पर हल्की बरसात होगी। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 14 से 16 डिग्री सेल्सियस, तटवर्ती इलाकों पर 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान ऊंचाइयों पर 21 से 23, अन्य इलाकों पर 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा दक्षिण की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाल रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और दक्षिण पश्चिम के समुद्र में 4 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। मछुआरों, नाविकों और आम जनता से सख्त मांग की जाती है कि वे समुद्र में न जाएं और समुद्र तट न जाएं। कल सुबह 7:45 बजे सूरज उगेगा और शाम 5:39 पर सूरज ढल जाएगा।
1: इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसकी तैयारी में पूरे समाचार डेस्क का सहयोग प्राप्त हुआ है और कंसल पर हमारे सहयोगी युदोविक का भी, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहिए, सुन पाएंगे शुभ समाचार। गांधी रोड पिछड़ाफ्रे में 62 साल की श्रीमती सुभावती जागेसर पैदाशी नाम अनाचलम और जिन्हें ललिता के नाम से लोग ज़्यादा जानती थी और जो हमारे सहयोगी दिया बिजलाल की माँ थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सोमवार 22 जून को दिन के 1 बजे उनके बेटे संजू जागेसर के घर महात्मा गांधी रोड पुचिगाफे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोमास्काल पुचिगाफे की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुमारो एट 1 PM। आर्य मंदिर रोड गुडलैंड्स में 75 साल की श्रीमती घनवंती सिगोलन पैदाश्याम लुलमान और जिन्हें सुभावती के नाम से लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 11 बजे उनकी बेटी साइलेश सिगोलन के घर गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बागोज गुडलैंड्स की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 11 AM। बिसुंदयाल लेन ओसिनाल में 66 साल के श्री राजलाल दीना जिन्हें माइकल के नाम से लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके भाई यमराज दीना के घर ओसिनाल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तेमिनिस्की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। पायलट स्ट्रीट जुबॉय में 74 साल के श्री धनपत पांड्या जिन्हें धन के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 9 बजे उनके घर जुबॉय से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाहक शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 9 AM। ओफ्रेलेन मेबर्ग में 93 साल की श्रीमती फुलमत ललित पैदाशी नाम टीपू और जिन्हें फुलमत के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 2 बजे उनकी बेटी सीता ललित के घर में

मेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोम्बो लेन मेबर्ग शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो 2 PM। लामारी रोड 15 कांटों वाकवा में, लामारी रोड 15 कांटों वाकवा में 48 साल की 48 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती नाताशा हरनंगी जिन्हें ताशा के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल 11 बजे उनके घर 15 कांटों वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए औंगेता वाकवा शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो 11 AM। डॉक्टर फेरियर स्ट्रीट ट्रेफल रोजिल में, डॉक्टर फेरियर स्ट्रीट ट्रेफल रोजिल में 73 साल के 73 ईयर्स ओल्ड के श्री दयानंद दिबदियाल जिन्हें दया के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल 11 बजे उनके बेटे अंजय दिबदियाल के घर ट्रेफल रोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉलोनी शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो 11 AM। नंबर 9 रूद बासें कैट्रबोन में, नंबर 9 रूद बासें कैट्रबोन में 97 साल के 97 ईयर्स ओल्ड के श्री इस्नू देव जी जिन्हें गौसों के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल 1:30 बजे उनके घर रुदबासें कैट्रबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमार्ग शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 1:30 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

0: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
1: गायत्री जयंती के संदर्भ में वेद माता गायत्री शक्ति पीठ सोमवार 22 जून को सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक वाल्टों गायत्री माता मंदिर में अखंड जाप का आयोजन कर रहा है। सत्यार्थ प्रकाश मास के उपलक्ष में आर्य सभा मॉरिशस सोमवार 22 जून को बेल रोज आर्य समाज ऑल मोका रोड शाम के 4 बजे एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, जिसमें भारत से आए हुए प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार शास्त्री सत्यार्थ प्रकाश पर प्रवचन देंगे।
2: 819kHz耶和radio Mauritius。马里斯广播电台听众朋友您好，欢迎来到晚风歌单。当一天慢慢走向夜色，风变得柔软，心也开始松下来。周日的傍晚适合回顾，适合想念，也适合把一些没来得及说出的话交给音乐。今晚的第一首歌《爱琴海》送给您。

0: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर।
1: बजले प्रभु का नाम, सभी सुनने वालों का हम हार्दिक अभिवादन करते हैं इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारा सादर प्रणाम आपको। भजले प्रभु का नाम इस कार्यक्रम में चंद भक्ति गीत आपकी सेवा में। तो चलिए श्रोताओं, इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं इस शुभ विचार के साथ। कहते हैं, भक्ति मन को विनम्र बनाती है और शक्ति जीवन को दृढ़ बनाती है। तो चलिए, आपके लाए हैं गणेश वंदना इस कार्यक्रम की शुरुआत में।

भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे। श्रोताओं, श्रद्धा और भक्ति से प्राप्त शक्ति हर कठिनाई को सरल बना देती है। ईश्वर का नाम ही वह शक्ति है जो टूटे हुए मन को भी संभाल लेती है। तो चलिए अगले गाने की ओर बढ़ेंगे। अगला भक्ति गान जो है आप जरूर गाइए, गुनगुनाइए हमारे साथ।

जारी रखते हुए अगले भक्ति गान की ओर हम बढ़ेंगे। श्रोताओ, बहुत ही प्यारा सा भक्ति गान है, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप इन भजनों को पसंद कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओ, भक्ति में समर्पण है और समर्पण में अपार शक्ति छिपी होती है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है उनके जीवन में आशा और विश्वास कभी कम नहीं होती। तो चलिए इसी

श्रोताओं, भजले प्रभु का नाम, इसे हम जारी रखेंगे। कहते हैं, सच्ची शक्ति बाहरी बल में नहीं बल्कि ईश्वर के प्रति अटूट भक्ति में होती है। भक्ति से मन को शांति और आत्मा को नई ऊर्जा प्राप्त होती है। जब मन प्रभु के चरणों में जुड़ जाता है, तब जीवन में शक्ति और संतुलन स्वतः आ जाती है।

प्यारे श्रोताओं, जीवन की असली शक्ति धन या पद में नहीं बल्कि उस भक्ति में छिपी है जो हमें हर पल ईश्वर से जोड़कर रखती है। तो चलिए, कार्यक्रम का समापन हम कर रहे हैं। साथ निभाने के लिए धन्यवाद। हमारे तकनीकी सहायक फैजन को धन्यवाद देंगे। आप सभी को हम कहेंगे शुभ

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स तौबा करता है वो ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। मुहर्रम का महीना तौबा और रुजू इलाही का बेहतरीन मौका है। आशुरा का रोज़ा इंसान के गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बनता है, इसलिए सच्ची तौबा करनी चाहिए। सामीन कराम, महफिल शब प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुँच रहा है। खुदा से दुआ है कि वो हमें आज की हदीसों पर अमल करने की तौफीक और ताकत अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। आइए महफिल शब के आखिर में रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सलाम का नजाना पेश करते हैं। अगली मुलाकात तक समीर को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ
1: 819 किलोहर्ट्ज ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: कंटिन्यूअस म्यूजिक
3: OM3
4: भोजपुरी तड़का

सब संगतियों के अर्जय प्रताप सिंह की ओर से प्यार भरा नमस्ते और सलाम। यह तो हर मनपसंद रेडियो चैनल, जी हाँ, यह रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन रात के 9 बजे था। और आज दिवस की रात 21 जून साल 2026, तो सबको के स्वागत करते हैं जा एमबीसी रेडियो पर। अभी से लेके रात के 11 बजे ले तो हर पसंदीदा प्रोग्राम भोजपुरी तड़का। और आज के तारीख एकदम खास है, क्या है कि आज दुगो इवेंट मनावत है सर। एगो है संगीत दिवस म्यूजिक डे और दूसरा है योगा डे यानी कि योग दिवस। सो हैप्पी म्यूजिक डे, संगीत दिवस अभिनंदन हो सब कोई के, और योग दिवस हैप्पी योगा डे ऑल ऑफ यू। सब संगतिया लोग के बोलब स आज नाचब स गावब स झूमब स, कहा कि आज संगीत दिवस बा। रोज की तो नचती गईती रही रह सब, पर आज की धमाल थोड़ा सुन एक्स्ट्रा रही। और आज हम एगो कहानी भी अन लें तो लोग खातिर ढेर कुछ भाई प्रोग्राम में। अभी से लेके रात के 11 बजे ले टेलीफोन वहाँ के नंबर पता का जगह दे विद सैंक पर। तो संगतिया लोग चला भी सुनब जा भोजपुरी तड़का के पहली पेशकश। लबाकार सितुर की खसिया भागता भैया, कहाँ भागता है संगीत दिवस में, सब कोई नाचता गावता खस खोसी जो न रसी तुर के भागता। भाप भाई खोसी के पकड़े के बेज बा खसिया लबाकार सितुर के भागता। चलो शुरू कर लिया जा भोजपुरी तड़का प्रोग्राम के है गीतों के साथ बस हंसू बोल के आवाज़ में खसिया।

है खसिया लबका रसी तुर के भाग गल भापरी बाप कहीं पर ही नहीं यार कहाँ गल बा भैया काज नहीं कहाँ जाके लुकल बा। और यहाँ पर ही हमने इस भोजपुरीतर का प्रोग्राम नहीं सत लोग खातिर जान सत लोग की प्रोग्राम बड़ी पसंद रहेला। और म्यूजिक डे तो आज म्यूजिक डे मनावत है सब फ्रांस में शुरू हो रहा 1982 में उस दिन से लेके आज ले हमने म्यूजिक डे मनाते आ रही सर। और आज के दिन ढेर मना देश में म्यूजिकल कंसर्ट होला और संगीतकार लोग एक साथ मिलेला बातचीत होला कहूँ कहूँ पर बड़का बड़का वार्तालाप होला कोजगी होला। और आज के दिन तो चेला खूबे नाचे के गावे के झूमे के कह के आज के दिन सब संगीत

कार लोग के है, गीतकार लोग के है, गायक लोग के है, ढोलकिया लोग के है। तो लोग में से ढेर कोई गीत गावे है ना, गावे ऐसा गीत गावे ऐसा नाचे ऐसा गीत लिखे ऐसा संगीत तैयार करे ऐसा, ताई संगीत दिवस हमने सब कोई के है। तो एमबीसी की पूरी टीम की ओर से सब कोई के बनफेदर म्यूजिक संगीत दिवस अभिनंदन। तो चलो हमने नाच अब से गाओ अब से तो लोग के संगे संगे भी रात के 11 बजे ले। और सुफेर बाबू बहुत ही प्यारा सन गाना है, ये तो हमने चलावा थे ये सब संगतिया लोग के नाम जो हमने के साथ जुड़ल हवन जा। और आप हवन जा साइलेंट की ओर से गीत छली कर पत्नी रानी बेटी परी माँ रीता के नाम राविश मंधु है कि तोर कति तोहर पापा तोहर मामा तोहर भाई भौजी और सब मंधु परिवार के नाम प्रीति और रेशमा माथा बदल रोजबेल सेवन मामा इंद्रानी पापा सुरेश और सब माथा बदल परिवार के नाम हिरीश नारायण हवन है मिडलैंड से है गीत हिरीश नारायण खातिर और सब संगत्यार परिवार के नाम। चला गीतवा सुने सुफेर बाबू के कहानी।

सफर बाबूलोक से बुलब से धीरे धीरे गाड़ी चलाई के ढेर जोर से गाड़ी नहीं चलाइया। आज 21 जून के वैंते के हमनी आर्गो पर्व मनावती सर योग दिवस योगा डे और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूएन असेंबली के सहयोग से दिसंबर 2014 से योग दिवस शुरू हो रहा दुनिया में और आज हमने योग दिवस मनाया सत। योग साधना कौन सी है? वह मेडिटेशन। और जब योग की बात की जा सकते तो अष्टांगिका योगा है, 8 प्रकार के योगा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। और बाबा रामदेव जो है वो टेलीविजन पर अक्सर उनकी बतावेला कैसे चहला है योग करके कपाल भाती, अनुलोम विलोम। जब योगा करब तोहर स्वास्थ्य ठीक रही, बतावेला कैसे सांस लेके कैसे सांस छोड़े के और बॉडीली पोस्चर्स। तो आज जो है योगा करे के दिन हर इसी तो दिखबा तो रोज के चाहे योगा करे के, अगर चाहते हो तो स्वास्थ्य हमेशा ठीक रही तो योगा रोज के चाहना करे के, रोज के योग साधना करबा। और ब्रह्म मुहूर्त में फजर के 3 बजे से 5 बजे ले ओके ब्रह्म मुहूर्त बुला ला, उस समय अगर मेडिटेशन करब योगा करब तो हर शरीर एकदम तैयार रही है, फिट फॉर ड्यूटी। देखेला बाबा रामदेव के शरीर कैसे रहेगा ना, ऑलवेज फिट एंड फाइन। तो योग साधना करते रहिए, मेडिटेशन करिए, एक्सरसाइज करिए, अपन स्वास्थ्य पर ध्यान दिया। अगला गीत संगे संगे, बहुत ही प्यारा संगीत है संगे संगे। और है गीतवा गायले हवन रेवन कुमार और है गीतवा हमने चलावती इस खासम खास निर्पल झरी के नाम आप रहलन ब्रितानिया इंदिरा लौतन मेबर्ग से कमला दिनू मोहताबा से कर चीज़ों फारोही खाते चित्रा और ज्ञान विश्राम सब विश्राम परिवार हवन जा मौदालबे से अनिता लाल जी हवन मौदालबे से और अनिता फ्री कॉम्फ्लैक्स से है गीत लोग के नाम भी। तो चलता है गीत तो सुनब जा संगे संगे। अब संगे संगे कौन सी होता, चल एक साथ सुनब जा।

हमने तो लोग संगे संगे ही सभी रात के 11 बजे ले रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर और तो लोगों हमने के संगे संगे रह जा हमने के साथ दिया जा और हमने तो लोग साथ दिया था यही और बेशक रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर रेडियो मॉरिशस के फ्रीक्वेंस जाने लेना 819 किलोहर्ट्ज़ और रेडियो मनोरंजन के फ्रीक्वेंस 94.95 MHz 98.2 MHz पर। और जब हमने संगीत के बारे में बात किया था तो MBC रेडियो हमेशा से संगीत से जुड़ल बा। जब पहला MBC रहा तो के बुलाता है MBSN की मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, तब बाद में वो बनल MRBC, और बाद में वो बनल मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन फॉर अ साइड में एडिसा, और फॉर अ साइड से निकल के तब एडिसा यहाँ मौका अभी MBC मौका में बा। MBC के बाद में जो TV और रेडियो के है वो मौका में है, तो पहले फॉर अ साइड में रहीसा MBC और बेशक और वहाँ पर ही जब सब प्रोग्राम और ढेर मना चैनल रह रेडियो राजो मोरिस रेडियो मॉरिशस शुगर FM और पहला FM रेडियो रहल शुगर FM शुरू हो रहल और बेशक फिर कुल FM FM संसार वन वर्ल्ड FM बेस FM कुल FM RM1 RM2 RM3 और अब रेडियो मनोरंजन रेडियो मस्ती रेडियो मॉरिशस तई सब राजो जो है गति गति बोलिए होल। और पहला जैसे हम बोलिए हमने कि पहला FM जो मॉरिशस के रहल तो वो रहल शुगर FM और शुगर FM के प्रोग्राम शुरू होता है दिन के 11 बजे 11 बजे से 3 बजे ले, फिर 3 बजे से सांझ के 6 बजे के आधा ले यूरोपियन भाषा में FM मोड पर चलता है और सांझ के 6 बजे के आधा से रात के 8 बजे ले शुगर FM पर हिंदी प्रोग्राम चलता है। फिर बाद में सब सांझे हो धीरे धीरे धीरे और आज ले हमने यहाँ आई नहीं सर। और MBC के जो है ना रेडियो के पियोनियर अलन सर पहला प्रेजेंटर कबो नहीं भुलाब जा जैसे भाई अब्दुल सलाम अहमदी शीला लिमचन रानी बहन रोमा वीरू चंदानी नोबिन दीपक नोबिन पामेला पातन मारी मिशेल एचेन हरि नारायण महावीर ये सब हमने के पियोनियर हल राजो के ये लोग के आवाज़ सुन सुन के हमने बड़ा हुई दी सर कॉलेज गई थी सर हाँ कि नहीं। और आगे जब सिकुन आवा हल तई सब अनुमाते के हमने सुनाता दी सर तई लोग शुरू करन सर MBC रेडियो और TV में भी भाग काम करन सर ढेर बरिस ले और आज जाके MBC इतना खूबसूरत बनल बा। तो बेशक संगीत दिवस बा तो आज हमने सोचा था इस सब लोगन के बारे में जो कोई MBC के प्रोग्राम करे के शुरू करक रेडियो में और वो लोग की आवाज़ आज भी हमने याद करी रहा सर हमेशा याद करती रह सर जब ले हमने जी अब जा। तो संगीत दिवस बा हैप्पी म्यूजिक डे संगीत दिवस अभिनंदन। अभी तो रात के समय बा अपनी जानी ना सब बड़ी ठंडा कर कल रात से हवा हवा कर लग बा जोरदार हवा बहता ओहो इतना ठंडा करता थोड़ा सुन गरम काफ़ी या गरम चाय या गरम दूध बना के पिए और हमने के साथ रात के 11 बजे ले भोजपुरी दर का प्रोग्राम में। और अगला गीत जो है फट फटवा आई गीत तो चलाओ जैसे गुरुदेव माना खातिर और सब परिवार के नाम राजमन्ना जिमी दुखिया कवि दुखिया और परिवार शास्त्री बनमाली है गीत तोहर पत्नी तोहर बेटा विवेक तोहर बेटी दामाद है गीत नानो चिबुग लोंग राजा स्टीव श्याम मंगल और राजा खातिर। और जितना कोई अभी हमने सुना था रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर है गीत लोग के नाम भी फटफटवा। अब फटफटवा के फटफटवा किन लगभग कहाँ फटफटवा लेके जाता चल सुनम जा व्यास पाव सिन्हा के साथ

0: हर पल का साथी, हर दिल की आवाज, खुशियों का रंग और यादों का साज, हंसी हो या गम ये रहता है साथ। संगीत से ही महकती है जीवन की हर एक बात। हैप्पी म्यूजिक डे फ्रॉम MBC रेडियो।
1: और म्यूजिक डे अभी फिनी नहीं हो पाया, अभी वेंटेंस है, फिनी वेंटेंस है, फिनी हो रात के 12 बजे। और अब हमने एक कहानी, हम आज को कहानी लिख रहे हैं, तो लोग खातिर हम ही लिख रहे हैं कहानियाँ। कहानियाँ के शीर्षक है झगड़ालू पति और पत्नी, झगड़ालू पति पत्नी कहानी के शीर्षक है। तो ध्यान से सुनिए कहानी। रमेश और राधा के शादी के 20 साल हो रहल। ये 20 साल में रोज रमेश और राधा मैं तू तू मैं होवल करे, भजे सांझ पति पत्नी में खाली झगड़ा होता है। गांव में सब कोई जाने लगा कि रमेश और राधा बड़े ही झगड़ालू रलन सर। और रमेश एगो डॉक्टर रहल और राधा जो है वो हाउसवाइफ रहल, यानी कि गृहिणी रहल। और रोज के रमेश जब काम करके घरे आई तो वो जो है हमेशा अपन पत्नी से लड़ाई करे, झगड़ा करे, और इतना झगड़ा करे कि का बोलबा भैया है पर ये झगड़ा करत हल। तो जब झगड़ा करे तो सब कोई बोलत हल, देखा कैसे झगड़ा करे लन से, लोग रात दिन झगड़ते रहे लन सा, हाँ कि नहीं। तो सबको जानत हल कि ये लोग जो है ये लोग कबो निमन से नहीं रहें, कहे ये लोग रात दिन खाली झगड़ा करते रहेला। और ऐसे रोज के चलते रहे झगड़ा, अब रोज के महाभारत हुई घर में। तो एक दिन का हो, राधा इस सबसे उब गल और राधा हमेशा बोलत हल रमेश से, कहे तो मसे झगड़ा करे ला, पर रमेश हमेशा बोले तू पारे

होवे तो घर के काम नहीं करे ले खाली बैठल रहे ले। और बेशक राधा सुनते सुनते जुन उब गल आई रोज के घर के महाभारत सुनते सुनते। तो एक दिन राधा का करलक, राधा जुन बहुत गुस्सा में घर छोड़ के चल गल अपन मायका अपन माँ लगे चल गल। तो अपन माँ लगे राधा गल और वहाँ से तलाक के पापी विदा करलक, डाइवोर्स के पेपर अपन पति के यहाँ बोलक डिवोर्स के पापी से करे के। तो जब रमेश के तलाक के पापी मिलल तो वो शोके हो गल है, वो अचरज हो गल कि इतना लोग के लड़ाई होता कि अब कोई नहीं सकेला एक संगे रहे। तो नया तान कर ले रहा कि जोन कर पत्नियों की तलाक दे। तो बहुत हिम्मत लेके रमेश गल राधा के घर और राधा से बोला क्योंकि माफ़ कर देकर वापस घर चले गई। राधा बोला कि वापस घर नहीं जाए काहे कि रमेश ओकर से रोज़ के रोज रोज झगड़ा करेला और ओके बात बात पर ताना देवेला। तब राधा के माँ बाप राधा के समझेला कि ये स्वाभाविक बात है कि पति पत्नी के बीच में नोक झोंक होला, सब कुप में सब दाम्पत्य में ये सब होला पति पत्नी में, पर एकर मतलब नहीं है कि छाना जीवोस दे के। तब माँ बाप लोग राधा के कितना समझेलक, तब जाके राधा अपन घर जाए के राजी होल। उस दिन से राधा और रमेश कभो झगड़ा नहीं करलन सा। वो लोग के एहसास होल कि पति पत्नी एगो गाड़ी के चार गो पहिया के समान है, पति के बिना पत्नी अधूरा बा और पत्नी के बिना पति अधूरा। तो लोग के एगो सीख मिलल इतना झगड़ा करतलन सर बात तलाक ले चलाल, पर फिलहाल में कौन सी होल कि पति देव के ओके एहसास होल कि वो सच्चे के गलती करते हल, बात बात में अपन पत्नी की कोसत हल, ताना देवत हल, गाड़ी देवत हल। तो ये सबसे उब के ओकर पत्नी ओके खुद लग तलाक दे के, पर जब तलाक के बात आल तब पति महोदय डर गल। तो उस दिन से है दोनों पति पत्नी कबू झगड़ा नहीं करन सर। तो कहानी की सीख ई है कि हमनी के जीवन में भी हमनी पति पत्नी है से हमनी की दाम्पत्य जीवन में जो न होला कबू कबू पति को बात बोल दे तो पत्नी नाराज़ हो जाए या पत्नी को बात बोल पति नाराज़ हो जाए। पर ये जो नाराज़गी है कि ढेर समय लेने चाह रखे कि जब रोज कैसे होई रोज के घर में झगड़ा होई महाभारत होई तो ही एक दिन तलाक बन जाला हो कि नहीं। तो हमने तो ये आशा करब सर कि सब कोई के जोड़ी हमेशा बनल रही और तो लोग की जोड़ी सलामत रही। और ऐसा में सुनब जाए को प्यार सन गीत नमस्ते बोलेला सुनितानंद को के गावल गीत है। गीत चाचा आत्मा राम, चाची ललिता कुशल थ्रियोले से, चाची प्रभावती नोवेल फ्रांसे, कलकतिया हरकू परिवार, जिराकन परिवार हवन जा थ्रियोले से, भाई धनी हवन नाफलवा से उनके सुनत हवन बहुत बहुत प्यार के साथ। सुनन चितंकी है गीत थोड़ो का तीर बहुत बहुत प्यार के साथ नमस्ते बोले ला हो। हाँ तो नमस्ते बोलिया, झगड़ा नहीं करिया है सब कोई की नमस्ते बोलिया। सुनितानंद को के सुनब जा

0: और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर। एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर।
1: आज दिमाग की रात बात यहाँ और हमने तो लोग संगे संगे आई जा और बेशक हमने के अच्छा लगा था कि तो लोग भी उनके साथ दे हुआ था उनके संगे संगे संगीत दिवस मनावा था और ऐसे ही उनके साथ देते रहे गमटवा होते रही और बोला सा कि जब ले जहाँ ले सकबर चेहरा पढ़ते रहे के जैसे कि अभी बड़ा बड़ा कलाकार बजे से महादेवी वर्मा जयशंकर प्रसाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मुंशी प्रेमचंद तो ये सब जो हिंदी लेखक है लोग उपन्यास लिखेलन स कहानी सब लिखेलन स तो चेहरा कोनो चीज पढ़े के कहे कि जब पढ़बत तो लोग के ज्ञान के भंडार बढ़ेला वरना स्थाचिक वजह से एक खातिर चेहरा कोनो चीज पढ़ते रहे कविता कहानी उपन्यास या नाटक हाँ कि नहीं तो चेहरा पढ़े के लड़का लोग के हमेशा बोला सा बड़ा आदमी लोग के भी बोला सा सब के चेहरा कोनो चीज पढ़ते रहे कि कैसे तुहर वोकैबुलरी बढ़ेला तुहर घाम अच्छा होला और तो स्टाइल ऑफ राइटिंग भी अच्छा बनेला। तो अगला गीत जो हमने सुनब स गोरिया ओ गोरिया गोरिया ओ गोरिया गीत खासम खास चलावब स रोजिदा खातिर जो हाईलैंड रहेलन हाई रोजिदा आफेज हवन सैम्पिया से स्वीट स्वीट आफेज खातिर महजबीन हवन पोट्री से इब्राहिम पोट्री से फातमा न्यूग्रोव से राफिक मोहित हवन तायाक से और रिहाना की ओर से बैन साइदा जैला खातिर और नथोदाम के बैन खातिर भी है गीत चली बहुत बहुत प्यार के साथ और ये गीत तो हमने चलावत इस उस सब लोगन खातिर जो जबकि खांसी सर्दी जुकाम लगे हम जानी ना सही जो ठंडा हवा का उठल बा का रात से ढेर कोई कैसे प्रभावित होल बा और ढेर कोई के सर्दी खांसी जुकाम होकर बा तो गरम गरम दूध हल्दी डाल के पी लिया या जितने पिया में सीथों पे ऐसे करके व्यागामुट पे ऐसे करके पी लिया तो हर खोंखी सर्दी सब भाग जाए। गोरिया ओ गोरिया चला अभी नाचब सा ललिता पुनीत के संगे संगे चला नाचे।

गोरिया हो गोरिया, गोरिया हो गोरिया, बहुत ही प्यारा सन गाना रहल। आशा करते गीता तोल के पसीना होई। हमने की देश जुन है।

अधिक खूबसूरत देश है कि देश एगो टापू है, हिंद महासागर के सितारा है, एगो पेल है हमने के देश जैमे चारों बगल समुंदर के पानी, बीच में मॉरिशस। और यहाँ पर ये अनेक प्रकार के जानवर बा, जैसे कि हरिंग बा, घोड़ा बा, कुत्ता बा, बिल्ली, तोहो, बैल, गाय, ये सब बा। पर हमने के देश में वो सब जानवर नहीं बा, जैसे कि रेना, लुलू, भालू, जहरीला सांप, कंगारू। और जब कंगारू की बात करी जा सकता, कंगारू एक किसी न कोई जानवर है जो कर पेट में एगो पोस्ट रहेला, तो वो अपन बच्चा के अपन पोस्ट में लेवेला। तो कंगारू कहाँ लौकी, वो लौकी ऑस्ट्रेलिया में। एक दिन थोड़ा लोकाजा मिली जाए के घूमे के, तो जइए ऑस्ट्रेलिया। वहाँ पर ऐसा जोरी जोरी कंगारू बा, ऐसे छटक छटक के आवेलन सर। और कंगारू जो है अपन बच्चा के अपन पोस्ट में दले रहेला। ऐसा जो लोग किला कंगारू के सबन दू गोर में छटक ले आवेला। अब देखो सोचे रहते प्रताप जी कंगारू सब सब मोरिस में पोसे नहीं, ओकर तो फिर अच्छा चाहेला, जैसे ऑस्ट्रेलिया में टेम्परेचर 40-45 डिग्री ले करेला, तब कंगारू के चाहेला औसत तो फिर अच्छा, तब उसे की वहाँ के जिए। अब ओके कंगारू के मोरिशस में आंदे बताओ कहाँ जी भैया हो कि नहीं। तो एक दिन लोग आजम इधर जइया है ऑस्ट्रेलिया, वहाँ के घूमिया, वहाँ पर ही ऑस्ट्रेलिया बड़ी जोरी बा, और मॉरिशस भी जोरी बा, ऑस्ट्रेलिया भी जोरी बा। अगला गीत है मुस्कुरा के, रेखा नक्षत्री गीत गए दे हवन। और है गीत हमने खास हम खास चलावते सर संगीता मिरन के नाम, आप रहन लागोजा, फिर ओकर भाई दान आजी, ओकर माँ रहन कस्तेल, ओकर दुगो बहिन बा हेमा, शांति, वंशिका, रक्षिता, और ओकर सब अमीरन और मोहन परिवार के नाम गीत चली। और रही गीत शालिनी हीरो के ओर से ओकर पति विशाल, ओकर दुगो बेटी भाई कृष्णा जोन रहे लंथियोले, और लाफलोहा के सब हीरो परिवार के नाम है गीत चली। मुस्कुरा के ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला, बहुत ही प्यारा संगीत। चला गीत हम सुनब जा।

सच है कि जिंदगी को समझौता है, वो कॉन्सेशन है, कॉम्प्रोमी है, जो चीज खोजब सा वो सब नहीं मिली, पर जितना कुछ मिल बा ओके मुस्कुरा के चेहरा हमने के अपनाए के वरना धीर करके हयू नहीं मिलल बा का कर भैया, कोनो चीज पाफी नहीं बा धरती पर। ये दुनिया में कोई कोई के नहीं बा, ना बाप बेटा के, ना पति पत्नी के, सब कोई खाली पैसा पैसा पैसा। जब ले पैसा बा तोहर लगे सब कोई तोहर आगे पीछे घूमी, जो दिन पैसा समाप्त हो भैया तो जाने लग कौन हाल होला। बाप बोले बेटा तू, मुकेश यदि के अब गीत चली और बहुत ही प्यारा सन गीत है। अरी बखत तू सुना था भोजपुरी तरह का प्रोग्राम अजय प्रताप सिंह सितालू के साथ रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर। अब ढेर कोई बोलता है रेडियो है कहाँ पर, रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस और बता पहली बार सुन लिया का हो है राजो, इतना दिन से चले था बता फॉर्म एफ सुन लिया हुआ ये राजो है एम बी सी के, एम बी सी जो कर बातचीमो बा मौका में तभी मौका से अपनी बात कर रहे थे सर एम बी सी मौका से। और यहाँ पर ये हवा तो बड़ा जोर बहता भैया, बड़ी ठंडा कर रहता यूँ पर ही है मोताई नहीं रहता उड़िया देती सर और बोला सके उम्र के साथ साथ हमने के जो शरीर के जो ऑर्गन रहला वो कमज़ोर होते जाला और ढेर कोई के शिकायत रहला कि लोग के हड्डी हड्डी में दर्द होला, हाथ के हड्डी में, गोर के हड्डी में। तो मोरे अनुसार हई हड्डी के दर्द मिठाई खातिर छाला लालो खाई के भिंडी, लालू के शकबत सलाद बनाए, लालू भुंजल खाए लालू मसाला में, तो लालू के सलाद भी बने लाओ के बुई करके गोल गोल काट के प्याज या दाल के शकबत खाए। और जब कैल्शियम कैल्शियम की कमी रहे रहा हमने के शरीर में तब भी हमने के हड्डी हड्डी दुखाला, तो शकबत कैल्शियम भी ले या और दूध छाना पिए कर, गाय के दूध अगर मिल जाए तो क्या बात है। तो लालो खाइए, गाय के दूध पिया और अपन शरीर के स्वस्थ बनाइए। और ऐसे में सुनब जा मुकेश जी के है गीत, प्यारा संगीत है ये गीत, तो हमने चलावा थे इस डॉक्टर पूनम की और सकर बेटी खातिर हरी लाल दिनों है गीत और खातिर उदयदानी राम की बजपोत से किशन गुड़िया केशव अबिलक अश्विन बच्चन प्रीतम राज मिला है गीत और खातिर है गीत चलावती स अश्विना की ओर से राजेश के नाम। और जितना कोई अभी रात के हमने के सुना था अभी धीर कोई गाड़ी चलावत हम स कहूँ जात हम स अब तो उनसे हे प्रताप भाई रेडियो वरवा ए हे इतमर संगतिया है इतमर दोस्त है हम तुम दोस्त गैरी स कौ दोस्त खैदी स खरगोश हो गए पिके ततानोस बाजी ने करते नहीं। तो जब गाड़ी चलावत हुआ तो हाँ सकबा तो सुन लाबुआ तो सुन जोर डाल दी।

जोर से नींद आ जाए, रात के समय भी कोई जाके कॉम्प्लेन कर दी था का करवा। हाँ तबीयत बन बता सुन जोर से मन बा डाले के तब सीमान देखिए आए हमने यहाँ पर ही सा एम बी सी भीतरे में ही सर, तो लोग रास्ता पर रहो सर, धीरे धीरे गाड़ी चलाइए और हमने के साथ देते रहिए। तो जितना सफ़ेर भाई लोग हमने के सुनाता, जितना पासाजी लोग सुनाता, अभी अभी कहूँ जाता हो या कहूँ से आवते तो गीत तो लोग के नाम और गीतवा के बोल है बाप बाप बोले बेटा तू, बाप बेटा के क्या बोलता है, चल एक साथ सुने।

जी हाँ, तो अंदाज लगा लेला गीतवा नहीं हा बाप बोले बेटा तू गीतवा हा चला चला मोरिस घूमे गीतवा गई ले वन स्वयं मुकेश चेदी जी गीतवा के मजाला

0: और ही मस्ती प्रताप सिंह के संग एमबीसी रेडियो पर। एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संग एमबीसी रेडियो पर।
1: भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा।
2: हर पल का साथी, हर दिल की आवाज, खुशियों का रंग और यादों का साज, हंसी हो या गम ये रहता है साथ। संगीत से ही महकती है जीवन की हर एक बात। हैप्पी म्यूजिक डे फ्रॉम एमबीसी रेडियो।
3: रात के 10:12 तो जुड़ा हुआ रेडियो वर्सेस रेडियो मनोरंजन के साथ और जी प्रताप सिंह ऑन द मिक्स। जी हाँ, हम हैं इन दिलों के संगे संगे। रात के 9 बजे से शुरू करें प्रोग्राम, अभी रात के 11 बजे ले प्रोग्राम चलाओ अब सर भोजपुरी तड़का। और बेशक हमने के साथ देखा थे, बहुत बहुत धन्यवाद। जितना कोई हमने के सुनाता थे, कोई घर पे बा, ढेर कोई घर से बाहर, ढेर कोई अपन को देते हैं के जरिए सुनाता, ढेर कोई मोबाइल फ़ोन के जरिए, ढेर कोई लैपटॉप के जरिए, तो ढेर कोई इंटरनेट पर हमने के सुनाता। तो इंटरनेट पर सुनने के फासिल है, टाइप करिए www.mpcradio.tv, फिर क्लिक करिए लिसन रेडियो मॉरिशस या लिसन रेडियो मनोरंजन। तो दुगो चैनल पर एक प्रोग्राम चलता रात के 11 बजे ले। और संगतिया लोग, अब हम बात करब से थोड़ा सुन चिड़ें के बारे में। बोले से चिड़ें बोनिया है, शुभ है, है? अब ढेर कहते चिड़ें बा, जैसे गौरैया, लालमुनिया, काटोवे, पिक पिक, मौतें, पीजों। तब बोले से जब चिड़ें के तू खाए की देवत हो तो घर में पैसा आवेला। और शुभ मानल जला चिड़ें जब तुम्हारे द्वारी में आए और उनके चार देवत हो खाए के भात देवत हो तो वो आशीर्वाद देवेला। और ढेर कोई मच्छी के भी खाए के देवेला और फिर गाय के भी अपन हाथ से तो खाए के देवा रोटी या मच्छी के पानी में डाला तो खाए के और चिड़ें लोग के। तो ये बहुत शुभ मानल जला, कहे कि वो लोग दिल से आशीर्वाद देवेला और हमने की मनोकामना पूरा होला। सोचने वाली बात है। तब बेशक यहाँ पर यहीं से हमने दिलों के साथ देख खातिर और ढेर कोई अभी अभी रेडियो दल लग पा दले हुआ जा। तब पूछा तो उनसे कौन रेडियो है भाई इतना

चकाचक प्रोग्राम चलेगा तो तुलुक के एमबीसी रेडियो है रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस ते थे कुछ तो ही मनोरंजन में कौन कहीं लैन के राजू है का नय हो है राजू आगे ताल एफ एम रहल अब रेडियो मनोरंजन हो गल बा और आगे के बेस एफ एम जुन रहल वो रेडियो मस्ती हो गल बा और जो रेडियो मॉरिशस रहल वो एम टू रेडियो मॉरिशस ही बा ठीक बा तो कॉन्फ्यूजन नहीं करिया है रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती एमबीसी के तीनों रेडियो हवन जा और बेशक अगला गीत माधुरी दिल तोर दिले है गीतवा गावत हवन राजेंद्र पोतिगादू और पोतिगादू गीतवा गावत हवन गीतवा पश्चिम कर ले हवन ईश्वर सुभन गीत चलिए कर घरोली कर बेटी दामाद बेटा पतु खातिर युधिष सिउ है गीत तोहर खातिर तोहर माँ तोहर बहन खातिर और माधव जो है पन चाचा सैलेन से बहुत प्यार करेलन बोलन चाचा जान का भाई बमार लगे चाचा जान तो चाचा जान के जब समय मिली तब जरूर आइयन त माधव की ओर से चाचा जान सैलेन खातिर और चाची रानी खातिर और चाची से भी बतियाला बाबू जो है बहुत प्यार से अपन चाचा सैलेन और चाची रानी से बहुत प्यार करेला तो चाची रानी और चाचा सैलेन की ओर से माधव बाबू के ढेर माना प्यार और ढेर माना आशीर्वाद देव थे जा लड़का लोग रहेलन से क्यूट क्यूट प्यारा प्यारा हाँ कि नहीं और लड़का लोग किन सीब से लड़का लोग में भगवान बा दस इन बोंजी हाँ कि नहीं चले गीत सुने माधुरी दिल तोड़ दिले कोई दिल नहीं तोड़िया तो गीतवा गई हमने के संगे संगे

दुनिया भर में देखते ही सा कहूँ कहूँ खेज आलिमोतर खेज एनर्जेटिक तो कहूँ कहूँ झगड़ा होता दूसरे पे में खातिर चेहरा जब खेज आलिमोतर होता था चेहरा हमने के अपन हाथ से कोनो न कोनो चीज रोपे के ताकि हमनी सब से अपने आप पर निर्भर हो। अब मान लो काल के दुनिया में झगड़ा हुआ था अब कोनो पे अपन आटा नहीं विदा करी या कोनो चीज़ तो हमने कौन चीज़ खाप सा और हमने तो छोटा सा टापू ही से हमने के एता एंसिलिया बोला था ही कई साली मौतें से बच्चे खातिर चेहरा सब कोई के रोपे के देख माटी में काम कर ला शर्म के बात नहीं है। तू तो सकेला पढ़ा लिखा ला हुआ पी एच डी कर ले हुआ एम आ बी आ कर ले हुआ पर पेट के सवाल बात चेहरा कोनो न कोनो चीज़ पलौतेगी तो तोहर आंगन में तोहरा जगह हुई तो कोनो न कोनो चीज़ पलौतिया जैसे पोलामुन कारोत आलू प्याज पीमा कुतमिली बैगन ये सब चैनल पलौते के कितना किन बा भैया। और जब अभी एनकोती खेज एनर्जेटिक बा खेजारी मोते झगड़ा होता और अब सुना था एलनिनो आवा था तो एलनिनो कौन ची है वो एगो प्राकृतिक आपदा है वो जब आवेला तो कृषि के ढेर हानि होला कहूँ कहूँ पर दिबोदमो इनोदाशों सुखाते ही सब आए तो हमने के प्लांटेशन सब बर्बाद हो जाए तो ये खातिर हमने के आगे से जहाँ पागे रहे के और ये सब के फास करे के हमने के चहला कोनो न कोनो चीज़ प्लौते के तब प्लौते रोपिया भैया रोपे के चहला है पारिस नहीं बनिया मेहनत बनिया कमासूद बनिया प्लौतिया कोनो न कोनो चीज़ नहीं बोलिया लेता नहीं मिलेगा लेता मिलेगा जिसको टेक जाए के लेता मिलेगा नाच गाना करे के लेता नहीं मिलेगा प्लौते के यही सब बहाना है बहाना बहाना हो गल पुराना। ज़रूर अगर थोड़ा सुन माटी हो तो और घर के आंगन के आगे या पीछे तक कोनो न कोनो चीज़ ज़रूर रोपिया ठीक बा। अभी है ये गीत में बोलता है रोपा रोपा रोपा बीज माथी संपत बढ़ता सब कोई के कोनो न कोनो चीज़ पलौते के तो है गीत हमने खासम खास चलावब सा ही सब संगत्या लोग खाते जो नबी मिल के सुना था मन सा वीना कुपुसामी हवन मेबग से कर घरोला कर बेटा पतो बेटी दामाद और चीज़ों पर खातिर सुलमा दुखित की ओर से नबी हा खातिर गीत तो कर घरोला और को बेटी खातिर विश्वानी बाबूलाल हवन लाखोजा से है गीत तो कर पति देव बेटा पतो सब परिवार के नाम भाई परमानंद है गीत तोहर बेटी तोहर दुगो बेटी तोहर माता जी तोहर पत्नी के नाम भाई रघु है गीत तोहरों खातिर तिनसी है गीत तोहरों नाम मिसिस बंगरादू जो तेलुगु पर हावेलन बहुत बहुत प्यार से तो है गीत तोहरों नाम चली जी हाँ रोप रोप रोपे के चेहरा पारिस नहीं बनिया कमासुद बनिया मेहनत

तो संदेशवा तोरा मिले ना चेहरा कोनो ना कोनो चीज रोपे के बहाना नहीं बनैया कि लीतो नहीं मिलेगा लीतो चेहरा खोजे के। और यहाँ पर हमने है इस तो लोग के साथ दिवस है इस रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर। और आगे के जमाना में बहुत साल पहले के जमाना सेतु भारत में दुल्हन लोग डोली में चढ़ के जाते रहन से अपन दुल्हा लगे जहाँ तक के पालों के बहिला सर दुल्हन ओकर में पीछे बैठा रही और चार जनाओं के ढो के आगे में दुगो व्यक्ति पीछे में दुगो व्यक्ति दुल्हन अंदर तक चल के लोग जाते रहन से दुल्हा लगे। या कभी कभी दुल्हा राजा घोड़ा पर चढ़ के आवत दुल्हन के ले जाए। आजकल डोली नहीं रोकेला पालों के नहीं रोकेला न दुल्हा घोड़ा पर। तुम सोची रहा तो कैसे घोड़ा ऑंट्रेने होला कि कैसे चेहरा। हाँ तो घोड़ा ऑंट्रेने रही तब ना अब घोड़ा जो ऑंट्रेने नहीं रही अब दुल्हा के सीमा में पटक दे था नहीं छबा ना। हाँ तो सोचे वाली बात है कि घोड़ा तो कोई जानवर है और कोई इंसान बैठल बको पर

चाहता दुल्हन के आने। अब जो घोड़ा भागे लगल जाए घोड़ा दुल्हा के पटक दिलक सीमा में तका हुई थोड़ा हंसी लगा था। का करब भैया कब कब सोच के हंसी रहसे ना तो हंसे के अच्छा है तो स्वास्थ्य खातिर तो चल मजा कर ले मेरी जान फिर से ना होगा जवान। ओहो बुरा बुरा मत करो बुरा है शैतान फिर से मिलो डार्लिंग दिल में है तूफान। है गीतवा लाल गई रे वन मजा कर ले मेरी जान। और है गीतवा हमने चलावब से खास कर राधा शिवालक के नाम राधा जी बढ़िया बढ़िया पकवान और मिठाई तैयार करे रन। गीत तोहर खाती राधा जी तोहर बेटा प्रशांत तोहर बहू तोहर बेटी शिल्पा तोहर दामाद और सब तोहर परिवार के नाम देविका और चंपा रामगतिया है गीत तोहरों नाम वीना दोमा गीत तोहरों खातिर बहुत बहुत प्यार से। और जितना कोई अभी हमने सुना था गीत तोहरों के नाम भी मजा कर ले मेरी जान फिर से ना होगा जवान ए।

नचदे हमर संगीत जो नचदे। और बेशक रात के 10:30 हो गल बा, हमने के साथ देते हवा देते रहिए रात के 11 बजे ले। हाँ, भोजपुरी तर का प्रोग्राम चलता रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर। और संगतिया लोग बात करब से बॉलीवुड रिलीजर्स है। जून जुलाई के महीना में 4 गो फिल्म रिलीज हो के बाद हमने जानने से तो लोग खुशी से है बॉलीवुड की फिल्म देखे के। तो कौन कौन फिल्म रिलीज हो के बाद ध्यान से सुनिए। जून के महीना तक समाप्त होता, जुलाई के महीना में 4 गो फिल्म रिलीज हो जाए। फिल्मों के नाम है अल्फा, धमाल 4, द इंडिया स्टोरी और तेरा यार हूँ मैं है। 4 गो फिल्म रिलीज हुई जुलाई के महीना के अंत तक। पहला मूवी है अल्फा, ये 10 जुलाई के रिलीज हुआ था। ये फिल्म के मुख्य कलाकार में दिग्विजय आर्या भट्ट, शर्वरी और अनिल कपूर के, यशराज की फिल्म है। और कहानी एगो हाई एक्शन मिशन और जासूसी दुनिया के इर्द गिर्द घूमेला। खबरों के अनुसार एकर में ढेर आर्टिस्ट लोग बाई फिल्म में। दूसर का फिल्म जो रिलीज हुई उकर टाइटल रही धमाल 4, रिलीज हुई 10 जुलाई के। फिल्म के मुख्य कलाकार जो है अजय देवगन, अर्शद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी। ये पुरानी धमाल वाली कॉमेडी अफरा तफरी और एडवेंचर फिल्म रही। परिवार के साथ सगबाई फिल्म देखे, कॉमेडी से

बॉलीवुड फिल्म धमाल 4 फिल्म रिलीज हुई 10 जुलाई 2026 के। और फिर फिल्म द इंडिया स्टोरी, जी हाँ, है फिल्म रिलीज हुई 14 जुलाई के। ये फिल्म के मुख्य कलाकार रही काजल अग्रवाल और श्रेयस तलपड़े। और ये एगो सोशल पॉलिटिकल ड्रामा रही जेकर में रोजमर्रा के जीवन और खाद्य सुरक्षा जैसी विषय पर ध्यान देवल गल बा। फिर 31 जुलाई 31 के रिलीज हुई फिल्म तेरा यार हूँ मैं। हाई ये रिलीज डेट जो बतावल जाता कि फिल्म दोस्ती और भावनात्मक रिश्ता पर आधारित रही। तो इंतज़ार करब सही चार गो फिल्म के, नया नया फिल्म गर्मा गर्म फिल्म बन के आए और हमने सिनेमा घर में सकब से देखे। अल्फा फिल्म के नाम, दूसरा फिल्म रही धमाल 4, तीसरा द इंडिया स्टोरी और चौथा तेरा यार हूँ मैं। तो ऐसा फिल्म जुलाई के महीना ले तैयार हो जाए और सकबा जाए फिल्म आके देखे। अभी खातिर चल सुनब जा रोशन सरा सिंह के गावल गीत सुन सुना है गीत मंगले हवन आशा मितू का सब परिवार खातिर। फिर विशाल मंडप इटली में हवन और पत्नी और बेटी खातिर और मॉरिशस में ओकर परिवार लोग बाकर माँ और बहन खातिर सब मंडप परिवार के नाम। ऑस्ट्रेलिया में रहे उला अजय और पूनम चिंताराम है गीत तुलों के बेटा बाल गोपाल खातिर। तुलों के माँ इंदिरा, फिर तोहर भाई चंदन, भौजी प्रिया, बहन सलोनी खातिर है गीत चली रंभा जी के नाम आप हरन स्विट्जरलैंड है गीत तोहर खातिर। और दीपा तिवारी दुखित है तू कनाडा रहेलन गीतवा मंगले वन कर पति केविन कर बेटा और सब तिवारी परिवार के नाम। और खासम खास है गीत चलावब जा शकील प्रयाग सिंह, जी हाँ शकील प्रयाग सिंह के सासू माँ के जन्मदिन के अवसर पर को नाम है शैला राजकुमार रहेलन काटोबोन बधाई देवता बेटी पूनम विश्वा और लड़का लोग। गीत शकील प्रयाग सिंह के अवसर पर सासू माँ शैला राजकुमार के नाम भी ढेर माना प्यार और आशीर्वाद और जितना कोई के जन्मदिन बा है गीत तलो के नाम भी सुन सुना। अब रोशन सरा सिंह कौन सी सुनावा था चले एक साथ सुने।

संगतियाँ कुछ भी बोलो, आगे के ज़माना और अभी के ज़माना में ढेर अंतर बा। और आगे के ज़माना में ढेर फास रीते नहीं रहल। हमने के नानी दादी चाची लोग जब लड़का लोग के कपाल दुखाता है तब कोको तेल डाल दलन सा, कोको तेल कपड़वा में डाल के बांध दियन सा, जब गर्म के रितों में कोको तेल डाल दलन सा, और ठंडा के रितों में करवाते लड़का के कपाल में डाल दलन सा। और जब चिबाबू हुए कोची बाबा के जन्म हुए घर में तो दाई आवत हल, वो कोच करे वो लैकवा के जो रेसो रहेला लैकवा के सेंकत हलल, तो तिलवा लेके लैकवा के गोर हाथ ओकर शरीर के खूब मिशन ओकर नाक मुँह तक के लैकवा जोली हुई। तो आगे दाई लोग मिसत हल और पैसा भी करतरी से दाई के लैका के मिसे के। अब का जी आजकल लैका लोग के ऐसे मिसाल कि नहीं, पर आगे मॉरिशस में हमने देख लें सर गांव में सेतु जब को बाबू घर में आवे लैका के जन्म हुई तो दाई आवा था लैकवा के कितना दिन नहीं आवा था लैकवा के गोर हाथ मिसे, हाँ तब लैकवा जाके जोली हुई हों कि नहीं। अभी सब कुछ एआई बा भैया टेक्नोलॉजी के ज़माना, ताके दबाई बा था लुगा धोआता, ताके दबाई बा खाना पकाता, ताके दबाई बा था दरवाज़ा खुलाता, ताके दबाई बा था लोटो ऑन हो जाता। और आजकल कीलेस गाड़ी बा, कीलेस के मतलब कि थोड़ा लाकड़ी नहीं चाहे लाई के लोग दुआ में खाली वो बूतों बाद बूतों पेजे कर दे बा तब मशीन वा ऑन हो जाए। हम ऐसे भी को गाड़ी में चढ़ल रही हमको मौक नहीं बोलब फिर कबली पी बीसते कतई मशीनवा के बोलबा प्लीज पार्क माय कार। तो हाउ गाड़ीवा में एगो सेंसर है जो इलेक्ट्रिक है और हिब्रिड, तो थोड़ा बोली प्लीज रिमूव योर हैंड आई विल पार्क योर कार। जैसे अपन हाथ निकलबा गाड़ीवा ऑटोमेटिक में अपने से पार्क होला। ये गाड़ी बा मोड़ इसमें। और जब गाड़ीवा के बोलबा हे इट्स टू हॉट टुडे प्लीज लोअर द टेम्परेचर, तो मशीनवा में देखबा और एकोन बा एकोनवा बरेला। अब जो 3 डिग्री करता है तो 3 डिग्री से वैन का डिग्री चलाई। और जब मशीनवा के ऑन डलबा फजीर के लुतवा के जब खुलबा तो मशीनवा थोड़ा बोली गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैम। और रात के बकर जब जाता हुआ लुतवा ऑफ करे तो थोड़ा बोली गुड मॉर्निंग मैम या गुड नाइट मैम या गुड नाइट सर स्वीट ड्रीम्स। तो गाड़ी में के बचाला ओके एगो सेंसर बोला ला। टेक्नोलॉजी के ज़माना में भैया अभी थोड़ी देर में सुन बचा गाड़ी अभी सोलह से चली सोलह एनर्जी से सकेला के जाना था। जापों देखकर कितना इंटेलिजेंट हुआ सर, एगो आवियो जब सकेला उतना तुन लिसेंस लेके पसाजे लेके उड़े तो एगो गाड़ी नहीं सकी सोलह एनर्जी से चली सकेला। आगे दिन में आने वाला साल में 10-15 साल में जापान सकेला एगो ऐसा गाड़ी बनाए जो सोलह एनर्जी से चली। अभी तो लाइसेंस से चलेला

इब्रिद बा कुरान बा इलेक्ट्रिक कार बा, पर उस दिन देर नहीं भाए जब सोलर एनर्जी से चले वाला गाड़ी भी मार्केट में चलाई। क्या बात है एक बोला द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी ए आई। और अब सुनब जा गोप्यारा सन गाना सुंदर परी गिरीश रूपचंद गीतवा गैले हवन बहुत प्यार से। और गीतवा के मांग कर ले हवन प्रीतम है गीतों कर पत्नी ज्योति बेटी प्रियंका फिर दामाद राविश सिंह पूजा खातिर भी गीत चली संदेश के उसे गीत लता अंजलि और शिवानी खातिर और गौबे के रतन निहाल की ओर से कर पत्नी करुणा पापा विजय सब निहाल परिवार के नाम आशा जानू हवन कोटेज से है गीत चली कर्मा कुमारी फिर शुभम दीदी आरती जीजा जी और सब जानू परिवार के नाम। तो चला गीत सुने सुंदर परी।

जैसे से पैराडाइज अच्छे के हमने की देश को पाँच ही लिखा है यहाँ पर ही सबको ये शांति और सुकून से जी रहा सको बहु जातीय देश है जहाँ पर विभिन्न प्रकार की भाषा बोल जला और सब कल्चर एक साथ रही रहा सब प्यार से दोस्ती के साथ और बेशक हमने के देश के जो प्रकृति है बड़ी जोड़ी बा हमने के लामेय हमने के सागर सन सन एंड सी हमने के घामा हमने के बालू और हमने के जो समुंदर है बड़ी जोड़ी बा और हमने के देशवा तैसन जोड़ी बा भैया और कान के चारों बगर हरियाली हरियाली कान प्लौतल बा लेगिम बा और सीमा ऐसन जोड़ी से बनल बा मेट्रो बा हमने के देश में हर प्रकार के सुविधा बा हमने के देश में कॉलेज बा यूनिवर्सिटी बा एक और यूनिवर्सिटी नहीं कई कई गो यूनिवर्सिटी बा फिर कॉलेज लेकोल लीजिन सब कुछ बा हमने के देश में और जे कोई भी विदेश से आवेला और मॉरिशस घूमे लंसा बोले सर ए जो पेला एक्स्ट्रा सा है बिय जोड़ी मॉरिस एंड जोड़ी पाराजी तो ये गीतवा गैले हवन संजय हरिचंद मॉरिस व जोड़ी बा और ये गीतवा मंगले हवन खासम खास एविन गंगा आप रहेलन न्यू ग्रोव है गीत तोहर घरोली तोहर पिताजी तोहर माता जी सब गंगा परिवार के नाम भाई कालीचंद है गीत तोहर खातिर तोहर पत्नी तोहर लड़का सब कालीचंद परिवार खातिर अब कितना जल्दी बा हमने की देशवा चला गीतवा में सुनब जा संजय हरिचंद की जुबानी

अब जब अपन प्रेमिका के या पत्नी के कोनो कादो देब तब सोच समझ के कहे के पत्नी लोग प्रेमिका लोग कुचेरा जोरी जोरी कादो मंगा द 9 लाख के हरवा बाप रे बाप जन पत्नी अपन पति जी बोला था हंके अगर थोड़ा मन में कोनो कादो दे के 9 लाख के हरवा दिया 9 लाख वाला हार तो चमकी रहा बाप चमकी चमकी एकदम से तो जब गला में हरवा पहनी तब सबको बोली वाह ये पूछा था राजवारा खानदान से है कि ईगो बरादमी की मदाम है गुद्धनी करके महिला है इतना जोड़ी हार मांगा था तो देखिए कंजूसी नहीं करिया है तो उसे कादो मांगी तो 9 लाख के हरवा ज़रूर दिया और बिजुचे के बोलिया जोरी से हरवा बनाए के ताकि तुहर पत्नी जब कर गला में हरवा पहनई बा तो बोली बहुत बहुत धन्यवाद इतना जोड़ी हार के दे रहा अरे भाई शाहजहां अपन पत्नी खातिर ताजमहल बना दे रहा तो अपन पत्नी खातिर एगो हार नहीं सकत हो बनाए का हो इतना कंजूसी और एक गीत चली मंगा द 9 लाख के हरवा सुम्बावती धुमन गीतवा गई दे हवन और है गीतवा हमने चरावत ई श्रोता लोग के मांग पर पूर्णिमा फकीरा सब फकीरा परिवार के नाम संजय हरिचंद गीत और पत्नी संध्या तौरबीती हुबिश्का खातिर रोजबेल के संजय की ओर से गीतों का सब परिवार के नाम लाफलोहा के रोशन रंगलाल के नाम एक गीत चली सब रंगलाल परिवार के नाम और शुमे कन्या के तीना दीना के ओर से ओकर पति ओकर बेटी और सब दीना परिवार के नाम तो चले गीतवा सुनब जब मंगा द 9 लाख के

मंगादा मंगादा नौला के हरवा संभावती दुमन के गीत के बाद एक अंतिम गीत और सुनावजा किशोर खेमिया के जुबानी जलसा लालबा अभी गीतवा के संगे भोजपुरी तड़का प्रोग्राम यह पड़ी समाप्त हो जाए और रात के 11 बजे भोजपुरी तड़का प्रोग्राम समाप्त हो जाए। रात के 11 बजे सुनबजा सुनहरे पल प्रोग्राम और रात के 12 बजे से कल फजीर के 5 बजे नॉन स्टॉप फिल्मी तराने हमने की तो लोग की मुलाकात यहीं तक रहा। तो लोग के फ़ोन कॉल तो लोग के एस एम एस खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्यार से हमने की सुना जा शुक्रिया। हमने की तो लोग की मुलाकात होती रही रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर और एक मुलाकात तक हमने की इजाज़त दें। और जय प्रताप सिंह सितालू की ओर से सबको की प्यार भरा नमस्ते सलाम शुभरात्रि लव यू और गॉड ब्लेस नमस्ते।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: रेडियो मॉरिशस पर शुरू हो चुका है यादों का सिलसिला। जी हाँ दोस्तों, हर गीत के साथ एक नई कहानी और एक नया एहसास। ये है सुनहरे पल, पुराने बॉलीवुड गीतों की महक और यादों की खुशबू लेकर हम गिनिशा आ गए हैं आपका साथ देने के लिए इन योर सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस। तो बस तैयार हो जाइए एक सुहाने संगीतमय सफर तो बस तैयार हो जाइए एक सुहाने संगीतमय सफर के लिए।

दिल को सुकून देने वाले गीत, जी हाँ दोस्तों, और यादों से भरे लम्हे, बस इसी का नाम है सुनहरे पल। साथ रहिए रेडियो मॉरिशस के साथ। आज फिर बजेंगे वो गीत जो कभी हर घर की पहचान हुआ करते थे। बिल्कुल दोस्तों, हर सुर में प्यार, हर बोल में एहसास, पुराने बॉलीवुड गीतों का ये अनमोल सफर आपके लिए लेकर हाजिर हैं ऑन रेडियो मॉरिशस, आपके सुनहरे पल में।

वैसे आज की रात को यादगार बनाइए और उन गीतों के साथ जो आज भी दिलों पर राज करता है। ये है सुनहरे पल, यादों की किताब के कुछ खूबसूरत पन्ने आज फिर खुलने वाले हैं मेरी जान। जी हाँ, हम बस चाहते हैं कि आप खुश रहें, हमेशा आप मुस्कुराते रहें। और ये अगला गाना आपकी होंठों की मुस्कुराहट के लिए हमारी तरफ से आपके नाम।

संगीत का वो दौर जहां दिल से लिखे और दिल से गाए जाते थे, तो चलिए उसी दौर में चलते हैं सुनहरे पल के साथ। दोस्तों, हर गीत एक रिश्ता बनाता है और हर याद को जिंदा भी रखता है। आज उन्हीं यादों को फिर से महसूस करते हैं रेडियो मॉरिशस पर आपके सुनहरे पल में।

अगर आपको पुराने गीतों से मुहब्बत है मेरी जान, तो ये महफिल, बिल्कुल ये महफिल आप ही के लिए है। साथ रहिए और गीतों का मजा ले लीजिए। पुराने बॉलीवुड संगीत का जादू आज फिर बिखरने वाला है, सो दिल खोलकर सुनिए और यादों में खो जाइए, क्योंकि ये आपका सुनहरे पल हम इसलिए लेकर आते हैं ताकि हम आपके दिल को बहलाए और पुरानी यादों में फिर से खो जाने के लिए मजबूर कर देते हैं आपको।

जितने भी हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं, दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे साथ देने के लिए। तो बस यूं ही गिनिशा का साथ देते रहे। मुझे नहीं पता आप हमें कहां से सुन रहे हो, मॉरिशस में हो, मॉरिशस के बाहर हो, काम पे हो या घर पे हो, गाड़ी चला रहे हो, कहीं से भी मेरी जान आप साथ दे रहे हो। तो ये अगला नगमा स्ट्रेट अवे फ्रॉम माई हार्ट आपके दिल तक। तो चलिए ये आपके नाम है।

दोस्तों, वक्त बदलता है लेकिन कुछ गीत हमेशा जवान रहते हैं। बिल्कुल, हम भी इस बात को मानते हैं क्योंकि वो गीत तो हमारे दिल के इतने करीब होते हैं। और इन गीतों को सुनते सुनते फिलहाल के लिए इस वक्त होगी निशातू से गुड बाय। हम अभी तो जा रहे हैं लेकिन वापस आएंगे एक और सुनहरे पल के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

मैं हूँ एमबीसी रेडियो, वजह मुस्कुराने की।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो।
1: मेरा दिल, मेरी जान।